100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1948 आषाढ़ मास की 11वीं तिथि तदनुसार 2 जुलाई 2026 है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।
1: जीवन की आपाधापी के मध्य जब हमें सुकून, एकाग्रता और मन की शांति की खोज होती है, तो भक्ति की मार्ग उसे आसान बना देता है। जहां सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन के सत्य, प्रेम और करुणा के भाव को हम समझते हैं, भक्ति का मार्ग सरल बन जाता है भजन से। तो आइए इस राह के साथ ही अपने दिन की मंगलमयी शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता गौरी नंदन की स्तुति के साथ।

जब ईश्वर भक्ति की राह में हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे विश्वास की ये जो डोर है ना, वो कभी कभी ढीली पड़ने लगती है। लेकिन तभी सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस डोर को और कसके थाम लेने की और भक्ति की इस राह पर लगातार आगे बढ़ते रहने की।

0: नमस्कार दोस्तों।
1: परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों का हित सबसे बड़ा धर्म है, और जब हम अपने कर्मों से या अपने वचनों से किसी को कष्ट देते हैं तो ये सबसे बड़ा अधर्म होता है। तो चैन बहुत

सोच समझ कर करिए। अगर मन की शांति का लक्ष्य साधना है तो आपको अपने अंतःकरण को स्वच्छ करना होगा, ये सबसे पहली शर्त है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

ये सच है कि ईश्वर हर वक्त हमें देख रहा होता है, हमें सुन रहा होता है। लेकिन हाँ, हमारे विश्वास की डोर तब ढीली पड़ने लगती है जब कोई हमारी मनचाही प्रार्थना, जो हम बहुत वक्त से ईश्वर से कर रहे होते हैं, वो पूरी नहीं होती। ऐसे में कई बार वो आपकी इच्छाओं को पूरा तो करते हैं, लेकिन जब ईश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे होते हैं, तब ये यकीन करना होता है कि हमें वो उससे बेहतर राह को समझाने की, उस पर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस पल जरूरत होती है ईश्वर की उस राह को समझने की और उस राह पर आगे बढ़ने की, क्योंकि ईश्वर का चुना हुआ मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो सकता है आपके जीवन के लिए।

वक्त हो गया है 6:36, प्रोग्राम चल रहा है पुष्पांजलि, जहां आज आपके साथ निधि है। और जब बात ईश्वर की आती है, ईश्वर आराधना की आती है, तो अक्सर मन में सवाल ये भी उठता है कि ईश्वर साथ है, ये कैसे जाने, सवाल ये भी तो आता है। अब इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो सामने नहीं आ सकता, लेकिन हाँ अनुभव आप कर सकते हैं। कैसे? जब आप हर परिस्थिति में मन को हारने नहीं देते, असफल होने पर उम्मीद की डोर थामे रखते हैं और अपने प्रयास करते रहते हैं, दूसरों के साथ अलग सा भाव नहीं रखते, सब कुछ बिखर जाने पर भी फिर से सब कुछ समेटने की हिम्मत रखते हैं, तो यकीन मानिए भगवान आपके साथ है। उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर विश्वास से महसूस जरूर किया जा सकता है। और यही विश्वास है जो ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ है, इसीलिए तो आप लगातार हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं।

कहते हैं कि जब मन व्याकुल होता है तो ईश्वर का नाम सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और सत्य भी यही है, हम जब भी परेशान होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। पर जब बात भक्ति की आती है तो भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, सेवा और भाव में भी होनी चाहिए। जिस ईश्वर ने आपको ये धन संपत्ति दी है ना, उसे आप उसी धन को खर्च कर चमकीले आडंबरों से खुश कर लेंगे, ये मात्र भ्रम होता है। और जब कहानी से धन हट जाता है तो बचा क्या, सिर्फ भाव। इसीलिए कहा भी जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।

प्रार्थनाएं या प्रेयर्स परिस्थिति हमारी नहीं बदल सकती, पर आपके निराश मन की स्थिति को जरूर बदल सकती हैं। इसीलिए जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो वो हमारे अंदर साहस, धैर्य और सकारात्मकता का संचार करते हैं और फिर हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ पल उस परब्रह्म के लिए जरूर निकालिए, प्रार्थना जरूर करिए। उम्मीद करती हैं आपका आज का ये दिन अत्यंत ही मंगलकारी रहेगा। इसी उम्मीद के साथ पुष्पांजलि के इस आखिरी भजन के साथ हम आज पुष्पांजलि को यहीं विराम देते हैं।

नमस्कार, सुबह के साथ बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने कल राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर JNS की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और राजस्व अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इस अभियान का लाभ निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपये है। मंत्री ने कहा कि ये परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के तहत 7,145 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 117.7 किलोमीटर लंबे कानपुर कबरई एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान करना उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय है। उन्होंने कहा कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारे का एक प्रमुख हिस्सा है, जो प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी, तेज आर्थिक गतिविधियों और सुगम परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। अमरोहा में जून माह में पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 11,405 चालान किए गए तथा 55 वाहनों के विरुद्ध सीज की कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित वाहन चलाएं, नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपना योगदान दें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे अखबार की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सदाबहार गीत सुन रहे हैं आप, और आज मैं आपके साथ हूं, मैं यानी निधि। और खोने पाने की बात के साथ आज इस शो की शुरुआत बस आपको इतना याद दिलाने के लिए कि जीवन में हम सब कुछ पा नहीं सकते, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि नाउम्मीदी की रात के बाद उम्मीदों से भरी सुबह का साथ जरूर होता है, ये भी एक शाश्वत सत्य है। तो सुबह की इस खूबसूरत शुरुआत के साथ हो चुकी है सदाबहार गीतों की शुरुआत, और ये वो गीत हैं जो हर उम्र हर दौर में गुनगुनाए जाते हैं
1: आंगन में मेरे।
0: और कभी कभी ये हमें हमारे जीवन की राह भी दिखा देते हैं, हमारी उलझन को भी सुलझा देते हैं, जैसे ये खूबसूरत सा गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये ट्रैक था जो आपने सुना, फिल्म जीने की राह। और देखिए, मैंने कहा था ना, ये वो गाने हैं ना जो हर दौर में और हर उम्र के व्यक्ति को पसंद आ सकते हैं। जानते हैं क्यों? इसकी बस एक छोटी सी वजह है कि ये गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं वो बात कह जाती हैं जो बड़ी बड़ी स्पीचेस या भाषण नहीं कह सकते, या बड़े बड़े लेसन्स हमें नहीं समझा सकते। और जब बात आती है कोशिशों के रंग की, तो कोशिशों का रंग जब गहरा होता है ना, तो हमारी लाइफ भी सदाबहार खुशियों से महक उठती है, जैसे कि ये गीत है जिनको लिखने वालों ने, अपने सुरों और धुनों से सजाने वालों की कोशिशों का ही तो ये नतीजा है कि आज भी ये गीत और ये गाने, ये नगमे इतने ज़्यादा रेलेवेंट हैं और पसंद किए जाते हैं। वक्त हो गया है 7:10, प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गीत, जहां आज मैं हूं निधि आपके साथ।

हर खूबसूरत सुबह में यही जादू होता है। जब भी आप सुबह को देखें ना, तो हर तरफ आपको सिर्फ कोई ना कोई उम्मीद की रोशनी नजर आ ही जाती है। और जब उम्मीद की रोशनी के साथ इतने खूबसूरत गानों का साथ हो, तो आपकी सुबह बेहतरीन तो हो ही जाती है।

और जब बेहतरीन सुबह की बात की जाए या फिर खूबसूरत ज़िंदगी की बात की जाए, तो हम सभी अपनी लाइफ में ना बहुत सारी अनगिनत कोशिशें करते हैं, अनगिनत काम करते हैं अपनी लाइफ, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की। पर ये भूल जाती हैं कि अगर दिल साफ नहीं तो आपकी सारी कोशिशें बेकार होती हैं। क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ अच्छे दिल वालों से ही होती है ना। अगर हमारे आसपास अच्छे दिल वाले लोग, अच्छी सोच वाले, सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं ना, तो ये दुनिया अपने आप ही प्यारी नजर आने लगती है। सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। मुश्किल कोई भी हो, वो बड़ी आसानी से सुलझ जाती है। और कुछ ऐसा ही हमारा अगला ट्रैक भी है, जहां अनजान साहब के लिखे बोल हैं जो याद दिलाते हैं कि जब दिल अच्छा हो तो कुछ भी मैटर नहीं करता।

जी हाँ, और जब साफ दिल वालों का साथ आपको मिल जाता है तो दिन महीने साल क्या, पूरी उम्र हर पड़ाव जन्नत की तरह उनके साथ गुजर जाता है। क्योंकि भाई मौका कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वो हमेशा ही आपको संभाल लेते हैं।

जी हाँ, देखते देखते ही पता चलता है कौन कितना सही है और कौन से रिश्ते आपके बड़े मजबूत होने वाले हैं। अब भाई सच्चे दिल वालों की जब बात होती है तो सच्चे दिल वाले इतनी आसानी से मिल जाएं तो लाइफ कुछ ज़्यादा सॉर्टेड नहीं हो जाएगी, है ना? कोई हार्ट ब्रेक नहीं, कोई धोखा नहीं, तो हम खालिस लोगों को पहचानेंगे कैसे, उनकी वैल्यू करना कैसे सीखेंगे? इसलिए रिश्तों में कभी कभी अगर आपको धोखा भी मिल जाए तो ज़्यादा घबराइए मत, वो धोखा आपको सही लोगों की पहचान करा देता है। वो धोखा आपको सिखा देता है कि किन रिश्तों को आपको ताउम्र तक संभाल कर रखना है, क्योंकि उनका साथ ही आपके हर पल को खास बनाता है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: और जब बात वादों की आती है तो ये करने जितने आसान होते ना, उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल होता है। अक्सर हम खुद पर विश्वास करवाने के लिए अपने अपनों से बड़े खूबसूरत शब्दों का सहारा लेकर वादे कर तो देते हैं, पर वक्त की कसौटी पर जब उन वादों को परखा जाता है तो आपकी उस रिश्ते की गहराई का ना असल रंग नजर आता है। तो वादे जरा संभल कर कीजिए, और जो कीजिए तो फिर उन्हें निभाने की हमेशा कोशिश कीजिए, फिर चाहे लोग कुछ कहें या जमाना कुछ कहे।

जी वादे कर लिए जाते हैं पर निभाना उतना ही मुश्किल होता है, वैसे ही जैसे हमारी कुछ कोशिशें नाकाम भी होती हैं, कुछ रिश्तों का रंग बेरंग भी हो जाता है वक्त के साथ। वो वादे जो खुशियों के पल में बस यूं ही कर दिए जाते हैं, कभी कभी वो गमों की बारिश आते ही सबसे पहले धुल जाते हैं, और जो जाने पहचाने से चेहरे थे वो अचानक से अजनबी बन जाते हैं। पर यही वो वक्त होता है जो कुछ अजनबी से चेहरे, बिल्कुल अनजान से लोग आपका हौसला बनकर, आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ ही बन जाते हैं।

इस लाइफ में कुछ भी बेवजह नहीं होता, हर चीज के होने की एक वजह होती है। तो जिसका ख्याल कई दिनों से आपके मन में आ रहा है ना, उसकी भी एक वजह है। हो सकता है ये वजह बहुत खूबसूरत हो और ये आपके सपनों की मंजिल भी हो सकती है। तो जरा जागिए और उसे पहचानिए। ये आपका खास वाला रिश्ता भी हो सकता है या फिर आपके सपनों की मंजिल भी हो सकती है। अगर पहचान गए हैं तो उस तरफ कदम बढ़ा जरूर दीजिए, क्योंकि जरा सी देरी आपकी मंजिल को, आपके अपने को दूर कर सकती है।

0: रिलाइज करना।
1: बस इतना ही तो कहना होता है कि हाँ भाई आप हमारे हो गए। सिंपल सी बात है, पर कहने में, स्वीकार करने में और निभाने में बहुत सारी कोशिशों की जरूरत होती है। तो भाई जिससे प्यार है उसे पहले तो बता ही दीजिए कि आपको उनसे प्यार है और फिर उसे निभाइए जरूर। मन की बात मन में तो कतई मत रखिए।

जी नहीं, हम यूं ही आपसे बात नहीं करते हैं, पूरा वादा करते हैं कि हम आपके साथ ही रहने वाले हैं। बल्कि गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक और बड़ी ही खूबसूरत और महकती हुई आवाज के साथ वो जब एंटर हुई स्टूडियो में, तो यकीन मानिए पूरा स्टूडियो महक गया। जी हाँ, और सामने बैठ के मुस्कुरा भी रही है। तो बस ऐसे ही खुले दिल से जब कोई मुस्कुराता है तो आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। और पता है प्यार की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? प्यार का मिल जाना नहीं, वो जो प्यार मिल गया है ना, जीवन भर उसके साथ चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, हर परिस्थिति में उसके साथ रहना। तो बस हम भी आपके साथ रहेंगे। लास्ट ट्रैक सदाबहार गीत का, और निधि अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करेगी, क्योंकि इस गाने के बाद आपको आएंगे, आपके पास आएंगे दिल्ली से समाचार, और उसके बाद हम और वो खूबसूरत सी और महकती हुई आवाज़ आपके साथ होगी। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईजी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की

0: दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी।

0: यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमेरिका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार

0: उपचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 8:16 हो रहे हैं दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM रेनबो और गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी राखी और सुबह से आपको एंटरटेन करती हुई
1: निधि। और ये खूबसूरत सी और महकती हुई सी आवाज राखी जी की थी, जैसे ही एंटर हुई पूरा स्टूडियो महक गया।
0: भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है मतलब मेरा शौक है
1: महकते रहना
0: जी, चहकते रहो महकते रहो। और जो सकारात्मक एनर्जी की जो आप बात कर रही थी ना, कि पॉजिटिविटी की बात की आपने सुबह सुबह से, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर भी रखें और जहाँ भी जाएं वहाँ पर पॉजिटिविटी आपकी बिखेरते रहें।
1: आपके एंटर होती है आपका ऑरा पता चल जाता है, एनर्जी पता चल जाती है। और राखी जी जब एंटर हुई ना, तो उन्होंने आते ही बताया बारिश हो रही है बाहर, बहुत अच्छा मौसम है
0: बहुत अच्छा आज तो भाई सच में भगवान जी ने जैसे ना सबकी सुन ली, क्योंकि बहुत दिन से इतना परेशान थे सब लोग, इतना परेशान थे कि भाई बारिश कब होगी बारिश कब होगी। वैसे भी मानसून थोड़ा डिलेड है और सभी जगह है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन होता है ना जीवन में कठिनाई रहती, जैसे ही एक खुशी का मौका आता है इंसान सारी कठिनाई भूल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: कितना कितना साधारण और सिंपल सा ये इमोशन होता है हैप्पीनेस।
1: और देखिए इतनी गर्मी के बाद जब इतनी सी बारिश आई ना, इतनी सी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे इधर नहीं आई, स्टूडियो पे नहीं आई, लेकिन राखी जी के रास्ते में आई, हमारे घर के रास्ते में भी आई, तो कहीं कहीं तो आई है खुशी की बारिश। और जहां खुशी की बारिश नहीं आई वहां हम गानों की बारिश लाएंगे, खूबसूरत गानों
0: बिल्कुल की बारिश। तो गुड मॉर्निंग लखनऊ की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ, और एक बहुत खूबसूरत गाना आपके रेडियो सेट पर आ रहा है और सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन
1: लखनऊ की।

0: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र।
1: आठ बजकर 22 मिनट पर आइए शेयर करते हैं कि आज का मॉर्निंग मंत्र क्या कहता है। हर दिन की शुरुआत अगर एक सकारात्मक विचार के साथ की जाए तो दिन जो है वो और भी खूबसूरत हो जाता है। आज का सुबह तो वैसे भी खूबसूरत है।
2: हाँ, क्योंकि वो थॉट पूरे दिन आपके साथ रहता है, घूम फिर के आपको याद जरूर आ जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम आते हैं तो बहुत सिंपल सिंपल सा, मतलब कोई बड़े ज्ञान की बात नहीं लेके आते, बहुत सिंपल सी बात लेके आते हैं,
1: याद दिला देते हैं आपको कि ये भी तो पता है आपको।
2: हाँ, वो जो आपकी मेमोरी में पीछे चला गया ना उसे बस रिवाइज कर देते हैं। तो आज का मॉर्निंग मंत्र हमारा कुछ यूं है।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र कहता है कि हमारी समस्याओं का जो समाधान है ना वो केवल हमारे पास ही होता है,
2: दूसरों के पास केवल सुझाव होता है। तो अपनी लाइफ का स्टीयरिंग ना जरा अपने हाथ में ही रखिए और बाकी सबको बैक सीट पे डालिए।
1: बिल्कुल। और एक मैंने एक जगह एक कोट पढ़ा था कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन, तो उसको हमेशा याद रखिए कि हर समस्या एक समाधान के साथ ही आती है।
2: और जिसका समाधान नहीं है समझ लीजिए वो समस्या ही नहीं है।
1: फिर आप बेवजह परेशान हो रहे हैं ये भी जान लीजिए,
2: ये सिर्फ आपकी ओवरथिंकिंग है।
1: एग्जैक्टली।
2: तो इसको सोच कर उस थॉट को उस समस्या को जरा इग्नोर मारिए और फिकर नॉट, लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो अपने साथ सॉल्यूशन लेकर आ रहा है।
1: बिल्कुल।

0: मुद्दा आज का।
1: तो आज के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज के दिन की बात करेंगे हम।
2: बिल्कुल, और आज का दिन बहुत खास है उन सभी लोगों के लिए जो रेडियो से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज ही के दिन क्या हुआ था निधि, आप बताइए जरा।
1: आज ही के दिन 1897 में मार्कोनी, जो कि इतालवी वैज्ञानिक है, उन्होंने लंदन में रेडियो का पेटेंट लिया था। मतलब ये रेडियो की खोज उन्होंने की है, इसका अधिकार अपने आप अपने लिए लिया था।
2: बिल्कुल, और जो रेडियो का सफर है ये एक प्रयोग से शुरू हुआ जो कि मार्कोनी ने किया, और आज की डेट में आधुनिक वर्ल्ड में डिजिटल और इंटरनेट रेडियो तक पहुंच चुका है। तो भारत में, अपने इंडिया में इसकी शुरुआत जो इस सफ़र की हुई थी वो 1920 के दशक की शुरुआत में हुई थी। और कैसे हुई थी?
1: शौकिया तौर पर प्रसारण को शुरू किया गया था, और आज जो देश के कोने कोने में FM के थ्रू जा रहा है, साथ ही साथ पॉडकास्ट के थ्रू भी लोग अपने पसंदीदा गानों को और चैनल्स को सुन सकते हैं।
2: बिल्कुल, और जब बिगिनिंग हुई थी ना रेडियो की इंडिया में, तो रेडियो क्लब्स होते थे और वहाँ पर शौकिया लोग जाते थे और वो क्लब में रेडियो बजता था। अब देखिए, घर घर में रेडियो है, हर हाथ में रेडियो है, क्योंकि आप कि हमारी जो ऐप्स हैं उनके जरिए भी आप सुनते हैं। न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए आप विश्व के किसी भी कोने में हो, आप लखनऊ की गुड मॉर्निंग लखनऊ जो है वो सुन सकते हैं। तो आज हम ये बात करना चाहेंगे, मुद्दा आज का ये रहेगा कि रेडियो की अहमियत, रेडियो की भूमिका आपके जीवन में क्या है।
1: जी, आप रेडियो से कैसे जुड़े हैं, या रेडियो आपकी लाइफ में कैसे तड़का लगा रहा है? वो कौन सी बात है जो आपकी लाइफ में रेडियो से स्पेशल हो जाती है, तो ये आपको बताना है। और आपको बताना कहाँ है, हमें मेल करनी है
2: fmakashwani@gmail.com पर।
1: जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब आप साथ साथ काम करते हैं तो साथ साथ बोल भी लेते हैं, और क्या ही फर्क पड़ता है। 8:28 हुआ है, गुड मॉर्निंग लखनऊ चल रहा है, राखी और नदी आज आपके साथ हैं।
2: तो जल्दी जल्दी मेल्स भेजिए और बताइए जरा कि रेडियो की अहमियत आपके जीवन में क्या है।
1: हमारे लिए तो रेडियो ही काफी है, क्योंकि यहाँ हम आपसे मिलते हैं
2: और सैल्यूट करेक्ट
1: ये सारे गाने सुनते हैं।

0: हमारे लिए आप काफी हैं, और हम चेक कर रहे थे कितनी सारी मेल हमारे पास आ गई
1: हैं। तो सुधन बाबा लिख रहे हैं कि अभी हम बिहार आए हुए हैं, छपरा जिला से सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, रेडियो की यही खूबसूरती होती है कि आप कहाँ हैं इस ये मैटर नहीं करता है, सिग्नल्स आप तक पहुंच जा रहे हैं ये मैटर करता है ना
0: जी, कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम जुड़ गए हैं, हम और आप जुड़ गए हैं। आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त निधि और राखी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम, और ये हमको कहा है वारिस अली जी ने। अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे और नींद ही गवा बैठे हैं।
1: क्या बात,
0: अरे ये क्या बात हो गई भाई, वैसे सुबह हो गई है, अब ज्यादा लेट तक सोना भी नहीं चाहिए।
1: ठीक कह रही हैं आप निधि, बिल्कुल। लिख रहे हैं निधि जी, आज की पुष्पांजलि मुझे बहुत पसंद आई, आपने अच्छे भजन बजाए, पूरा वातावरण भक्तिमय और श्रद्धा से भर गया, और आपने कार्यक्रम सदाबहार गीत में ब्यूटीफुल सॉन्ग्स प्ले किए, गीत सुनकर मजा आ गया।
0: और राखी जी, ये तो हमने मतलब बच्चों के साथ ही हो रहा है, उनकी समर वेकेशन खत्म हुई है, लेकिन देखिए आपके लिए भी किसी ने मेंशन किया, राखी जी आपने बहुत दिनों तक समर वेकेशन बनाई है, प्लीज इतनी लंबी छुट्टी मत लिया करिए। आप हमारे पसंदीदा आरजे में से एक हैं, आप दोनों GML बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: क्या गीत आपने बजाया है, चिंता करके क्या पाएगा, सही बात है, क्या करेंगे, फिकर नॉट, इसीलिए आते ही हमने कह दिया कि बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई, जो आगे होना है वो हो जाएगा, जब होगा तो आप देखेंगे भी और फिर उसको सोचेंगे भी।
1: और निधि कहते हैं ना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो तो मन को और विचारों को शांति मिलती है, मेडिटेशन का पूरा जो है फोकस इसी बात पे होता है कि हम जिस मोमेंट में हैं उस लम्हे को हम जिए। और ज़्यादातर क्या करते हैं ना हम सभी, ये इंसानी फितरत होती है शायद, हम या तो पास्ट की बातें सोचते रहते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, फिक्र उतनी करिए जितनी ज़रूरी है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है कि भाई आपको कोई काम करना है तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी और थोड़ा बहुत फिक्र होती है, मगर उससे ज्यादा की जरूरत है नहीं।
0: यानी आपकी सगी राखी बस इतना कहना चाहती है कि प्लानिंग करना अच्छी बात है, सही प्लानिंग करना अच्छी बात है, बस उस प्लानिंग में ही उलझ के रह जाना ये थोड़ी मुश्किल की बात है।
1: हाँ।
0: तो जरा उलझन को सुलझाइए और इन ब्यूटीफुल से ट्रैक को एंजॉय करते रहिए, साथ ही साथ सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ,
1: धड़कन लखनऊ की।

0: जाती हैं टेक्निकल ग्लिच, कभी कभी कुछ भी छूट जाता है हाथ से.
1: हाँ, और ये कभी कभी ना बीच में कोई चीज रह जाती है. और बीच से याद आया कि आज 2 जुलाई का दिन है ना. 2 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है हाफ वे पॉइंट डे के रूप में, आधे दिन के रूप में मनाया जाता है. क्यों? क्योंकि 365 दिन होते हैं देखिए पूरे, जो एक ग्रेगोरियन का कैलेंडर होता है उसमें. तो आज का दिन जो है ना वो बिल्कुल मध्य बिंदु पर होता है, क्योंकि आज के दोपहर के जब 12 बजेंगे तो 182.5 डेज हम बिता चुके हैं इस वर्ष के, और 182.5 डेज आगे बिताने हैं हमको. तो इसलिए इसको हाफ वे पॉइंट भी कहा जाता है. आज का दिन वाकई बहुत खास है, जुलाई 2nd.
0: साल के बिल्कुल मध्य में आ चुके हैं, तो वो जो गलतियां जो हो चुकी हैं ना उनको अभी करेक्ट करने का पूरा आधा समय आपके हाथ में.
1: बहुत ज्यादा अवसर अगर इंटेंशन अच्छा हो तो अगर करेक्ट करना चाहे तो.

0: और आज के दिन से जो इतिहास के पन्ने अगर पलटे हैं तो किस तरह इतिहास में ये तारीख दर्ज है ये भी आपसे शेयर कर लेते हैं।
1: 2 जुलाई की बात की जाए तो 1698 में आज ही के दिन ब्रिटेन के थॉमस सेबरी ने पहला व्यावसायिक स्टीम इंजन पेटेंट कराया था। पेटेंट के नाम आज का दिन रहा है
0: बिल्कुल। 1916 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी।
1: 1897 में आज के दिन रेडियो पेटेंट हुआ था, ये तो हमने आपको बताया ही था, लेकिन आपको पता है 1949 में वियतनाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ही के दिन मान्यता भी मिली थी।
0: और 2002 में हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य किया गया था आज ही के दिन।
1: वहीं 2004 की बात की जाए तो 2 जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
0: और ये कितने फख्र की बात है कि हमारे भारत की जो इमारतें हैं वो कितनी इमारतें हैं जो विश्व धरोहर के रूप में जिनका प्रचार प्रसार किया गया है, जानी मानी जाती हैं। तो भारत एक बहुत ही सुंदर देश है
1: जी। हाँ।
0: यहाँ का मतलब एक कहते हैं ना कि जो कल्चरली रिच हेरिटेज जिसकी रिच हो, हर तरह से संपन्न और संपूर्ण देश है।
1: हाँ, और ये बहुत प्राउड की बात है। तो जब भी कोई नई चीज एड ऑन होती है वर्ल्ड लेवल पर, जहाँ हमारी पहचान बनती है, वो हम सभी के लिए प्राउड की बात होती है। और वो जो गलतियां हो जाती है हमसे, उसको गलती से मिस्टेक मानकर छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे कि हम अगले ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
0: और मुद्दा वही है कि रेडियो की आपके लाइफ में क्या भूमिका है।
1: FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमें
0: मेल भेज सकते हैं।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: 8:44 हो गए हैं और पूरी झड़ी लगी हुई है ईमेल्स की। सुधांशु जी लिख रहे हैं, राधे राधे सुधांशु।

0: ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहाना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है और टॉपिक पर ये कहना चाहते हैं कि रेडियो सिर्फ हमारे मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये हमें जानकारियां तथा समाचार पत्र पढ़ करके बताया जाता है और चाहे क्रिकेट की कमेंट्री हो और चाहे मनोरंजन, रेडियो के बिना मेरा जीवन तो अधूरा सा लगता है। और उन्होंने एक सवाल भी दाग दिया है सवाल पूछा है कि मेरा एक सवाल है, 100.7 FM रेनबो लखनऊ पर पहली बार क्रिकेट की कमेंट्री कब प्रसारित हुई थी बताइएगा ज़रूर। तो भाई ये तो इसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर हाँ। उसको करके हम वापस आएंगे और जरूर बताएंगे।
1: हमारे पास अगला जो मेल आया है वो आया है अरुण कुमार जी का और मेरा नाम अरुण कुमार है। आप अपनी पत्नी अंजलि और अपनी बेटी अक्षरता और आराध्या के साथ बांगरमऊ उन्नाव से हैं लेकिन वर्तमान में जानकीपुरम में रहते हैं। आपके लिए रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन का एक सच्चा साथी है। सुबह की शुरुआत को नई ऊर्जा, सकारात्मकता और मुस्कान से भर देता है। और रेडियो की सबसे खूबसूरत बात राखी जी पता इनके क्या है कि इसकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती है और इनकी बेटी अक्षिता जब भी अपना नाम रेडियो पर सुनती है तो उसकी खुशी देखने लायक होती है।
0: सो स्वीट,
1: पूरा परिवार मुस्कुरा उठता है
0: जी।
1: साथ ही साथ कुछ पंक्तियां आपने लिखी हैं कि आवाजों का ये प्यारा संसार हर सुबह लाता है खुशियों की बहार, रेडियो से जुड़ते हैं दिलों के तार, यही तो है इसकी सबसे बड़ी पहचान और प्यार। क्या बात है,
0: बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है। सुशील कुमार जी ने तो भाई देखिए एक स्टेप अहेड चले गएंगे और लिखा है गुड मॉर्निंग, आज का सुबह सुबह गर्मी गर्म गर्मा गर्म नाश्ता, सॉरी नाश्ते में कोल्ड ड्रिंक भी दे दिए उन्होंने, नैन्सी मोदनवाल की तरफ से है और रतन प्रताप मोदनवाल नाश्ते में जो गया फोटो देखकर बताइए पूरा। तो ये जो डिजिटल नाश्ता आया है
1: हमने इसे डिजिटली एक्सेप्ट डिजिटल भी कर खा भी लिया और टेस्टी भी बहुत है।
0: तो देखिए दो पेड़े हैं, दो कुल्हड़ हैं, थर्मस में चाय है, पानी है और कोल्ड ड्रिंक है।
1: राखी जी राइट वाला मेरा है, लेफ्ट वाला आपका,
0: आप दोनों खा लीजिए, मैंने मीठा खाना बंद कर रखा है अभी मैं दोनों एक के साथ एक फ्री निधि आपके लिए।
1: यस yes, और मैं फ्री चीज को कभी मना नहीं करती हूँ अगर वो अच्छी और टेस्टी है तो। दिलावर जी थैंक यू सो मच तारीफ के लिए लेकिन वेरी सॉरी हम आपका गाना नहीं प्ले कर सकते क्योंकि ये फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और नवीन मिश्रा लिख रहे हैं मैं लखनऊ से दूर रहकर भी लखनऊ को भूल नहीं सकता क्योंकि FM लखनऊ में सुनता हूँ और अच्छा आपने मुझे अपना फेवरेट बताया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन मिश्रा जी। इसके बाद आते हैं तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से, गुड मॉर्निंग वेलकम आरजे निधि मैम राखी मैम। निधि मैम आपकी वॉइस बहुत दिनों के बाद सुनने को मिली है, खैर आज आई एम इंजॉइंग FM रेनबो।
1: अरे बहुत शुक्रिया, देखिए ये तो बड़ी खुशी की बात होगी, हमारा प्रयास जो है वो सफल हो गया। ब्रजेश जी ने हमें मेल किया है कैसरगंज बहराइच से, गुड मॉर्निंग राखी जी और निधि जी, वेरी गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
1: रेडियो हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव लाया है, इसके लिए तहे दिल से FM रेनबो परिवार को धन्यवाद देता हूँ और साथ में सभी आरजे को बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अरे थैंक यू सो मच आपके मेल्स और आपका प्यार।
0: बिल्कुल, हमारी तरफ से भी बहुत बड़ा सा थैंक यू क्योंकि आप जैसे लिसनर्स हैं तभी रेडियो है। और अंजू जी का जी आया है मेल और आज के मुद्दे पर इन्होंने लिखा है रेडियो गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक न्यूज़, वैसे लखनऊ के पहले आई यूज्ड टू स्टे इन रायपुर छत्तीसगढ़, वहां से रेडियो सुनना स्टार्ट किया। आपके फ्रेंड हो या ना हो आप अकेला तो बिल्कुल नहीं फील करोगे। वहां के जो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस में गेम्स होते थे वो आई यूज टू विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस, मज़ा आता था। एंड फॉर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन विविध भारती वॉज होल सोल, वहाँ जो डॉक्टर्स वहाँ डॉक्टर्स आर द बहुत अच्छे एंड कंप्लीट जानकारी देते थे। अच्छा डॉक्टर्स आते थे और कंप्लीट जानकारी देते थे, बट एक 6-7 साल का ब्रेक के बाद अब यहाँ लखनऊ शिफ्ट होने के बाद वापस रेडियो सुनने को मिला, एक मज़ा और कंटिन्यूएशन था वो टूट गया है जो कि डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो वक्त है सब सेट कर देगा जो अब तक अनट्यून था।
1: जी हाँ, जो
0: गुड एटीट्यूड है
1: जो अब तक अनट्यून था वो ट्यून हो जाएगा। और कृष्ण कुमार जी का हमारे पास कृष्णा गोमती नगर लखनऊ से मेल है, सुप्रभात लखनऊ, प्रातःकाल से संगीत थेरेपी के साथ शुरुआत होता है और रात्रि में सोने से पहले संगीत के साथ शयन करते हैं, भूत भविष्य एवं वर्तमान में अपडेट करता है रेडियो, ये कहना है कृष्णा जी का।
0: क्या बात है। प्रमुख कुमार लुधियाना पंजाब रहने वाले बलरामपुर के हैं, पंजाब से इन्होंने मेल लिखा है, डियर रेडियो सखी राखी मैम और निधि मैम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों। मैम हम अप्रैल महीने के लास्ट तारीख को अपने गांव गए थे जिस दिन

0: गांव पहुंचे, उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुंह की दो हड्डियों के साथ जबड़ा टूट गया था, माय गॉड। लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमें रेडियो सुनना इतना पसंद है कि रेडियो के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। रेडियो सुनने से देश दुनिया में क्या हो रहा है पता चलता रहता है, गाने भी चलते रहते हैं और हम लोगों का नाम भी रेडियो में सुनने को मिल जाता है। और सबसे ख़ास बात, आप लोगों की आवाज़ और बोलने का तरीका बहुत प्यारा लगता है। रेडियो बचपन से सुनते आए हैं हम।
1: जी, रेडियो बचपन से हम सुनते आए हैं और साथ ही साथ देखिए, हम इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि हमें यहाँ काम करने का मौका भी मिल रहा है और आप सबका प्यार भी मिल रहा है। अब मेल बहुत सारी हैं, इसलिए हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, क्योंकि रेडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी तो
0: बहुत ज़रूरी है।
1: जी हाँ। तो ये ट्रैक आपके रेडियो से स्ट्रेट आ रहा है।

0: 8:53 टाइम हो चुका है और लेकिन मेल्स इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि हम सोच रहे हैं कौन
1: जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सुनील कुमार जी के मेल्स से शुरुआत करते हैं। रेडियो का जीवन में महत्व, गुड मॉर्निंग राखी जी, निधि जी, रेडियो को मेरे जीवन में बहुत महत्व है। अब तो टीवी है, हर हाथ में मोबाइल है, पल पल की खबरें पता चलती रहती हैं। बात 1980-81 की है। मैं हाई स्कूल का छात्र था, हिंदी मीडियम का छात्र था, कैसे अच्छी इंग्लिश सीखे उसका माध्यम था रेडियो। पहले हिंदी में समाचार सुनना, फिर उसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, और फिर रात्रि 8:45 पर वीडियो खोलकर बैठ जाता था। देवकी नंदन खत्री की आवाज़ में समाचार सुनने को मिलता था। इसके लिए 250 का फिलिप्स का ट्रांजिस्टर खरीदा था। सन 2000 में वह रेडियो चोरी हो गया। ओ गॉड। लेकिन आप

0: बहुत अच्छी आपने
1: मिली
0: जर्नी
1: है।
0: लिखी है जो, और वाकई ये होता था पहले हम लोगों को भी जब शुरुआत में रेडियो ज्वाइन किया था तो कहा जाता था अगर तलफ्फुज अपना प्रोनंसिएशन सुधारना है तो ख़बरें जो हैं उनको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़िए
1: जी।
0: तब आपको पता चलता है।
1: और इसके साथ ही जावेद अख्तर जी ने हमें मेल किया है, इन्होंने हमें मेल किया है मुबारकपुर आजमगढ़ से। सबसे पहले आप दोनों को तहे दिल से गुड मॉर्निंग। आज के मुद्दे पर कहना चाहते हैं कि रेडियो हमारे जीवन का एक सच्चा दोस्त है और हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम भी करता है। आज के टेक्निकल दौर में रेडियो की सहूलियत हम सबके लिए और भी आसान हो गई है। वो दौर भी हमें याद है जब रेडियो पर बिना का गीत माला अमीन शाहानी पेश किया करते थे जिसे सुनने के लिए हम बेताब रहते थे 1999 में। क्या बात है, क्या याद दिलाई। मैं आकाशवाणी और विदेशी प्रसारण को सुनता हूँ और रेडियो डी एच विल जर्मनी भी सुनता हूँ। ओके, तो ये थे जावेद जी के मेमोरी और उनके थॉट्स रेडियो को लेकर।
0: बिल्कुल, अरुण कुमार कुशवाहा लिख रहे हैं घमोइया हरदोई से कि आप लोग को हमारा प्यार भरा नमस्कार, प्रेरक मॉर्निंग मंत्रा था। वास्तव में हमसे महत्वपूर्ण अपने कार्य के लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। मुद्दा आज का जो है उसके बारे में कहना चाहते हैं कि रेडियो से मैंने सीखा है और कहीं से सीख नहीं सकता। जो रेडियो से मैंने सीखा है वो कहीं और से नहीं सीख सकता। मैं बचपन से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, इसे मैं यूँ कहूँगा। IAS PCS करने वाले से शायद कोई विषय छूट जाए और उसके बाद इनकी मेल छूट गई है, मतलब उसके बाद। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा लिखा कि बहुत सी जानकारियाँ ऐसी मिल जाती हैं रेडियो पर जो आप एक बार सुनते हैं तो भूल नहीं पाते और आपका नॉलेज बेस बढ़ जाता है।
1: जी हाँ, रेडियो पे वक्त का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, इसलिए हम बता दें कि 8:56 हो गए हैं।
0: रेडियो से घड़ी भी मिलाई जाती है ना, ये
1: समय
0: भी एक
1: से महत्वपूर्ण है। हम आवाज से आवाज मिलाते हैं, धुनों से धुनों मिलाते हैं और समय से समय भी मिलाते हैं।
0: बिल्कुल, तो 8:56:26 पर अपनी सखी राखी और निधि को दीजिए इजाजत इस गुड मॉर्निंग लखनऊ के इस हाफ को ओवर करने के लिए। हम नेक्स्ट हाफ में फिर से मिलेंगे आपसे।

नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। लखनऊ से प्रकाशित आज लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए स्कूल चलो अभियान तथा डीजी रोवर अभियान, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपी के लिए एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को मिली मंजूरी और अयोध्या मंदिर में दान प्रकरण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत से जुड़ी खबर पर नवभारत टाइम्स लिखता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा, क्योंकि ये केवल परिवार की नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की भी क्षति है। स्वतंत्र भारत का शीर्षक है, शिक्षा भविष्य निर्माण की आधारशिला है। अमर उजाला ने डीजी रोवर अभियान की शुरुआत से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है, डीजी रोवर तकनीक से होगी सटीक भूमि पैमाइश। उपशीर्षक है, सीएम योगी ने प्रदेशव्यापी अभियान का किया शुभारंभ, 15 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। यूपी में हाईवे को मिली मंजूरी से जुड़ी खबर को नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, कानपुर से महोबा के करबई तक बनेगा 4 लेन का हाईवे। उपशीर्षक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,145 करोड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। अमर उजाला का शीर्षक है, 7,145 करोड़ से बनेगा कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे। उपशीर्षक है, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। कानपुर से कबरई के बीच यात्रा समय 3.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे रह जाएगा। अयोध्या मंदिर में दान प्रकरण से संबंधित खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, गोपाल राव समेत 10 से पूछताछ। इसी के साथ ही अखबारों की अन्य सुर्खियां हैं, वीबी रामजी लागू, काम न मिलने पर मिलेंगे बेरोजगारी भत्ता, भुगतान में देरी पर ब्याज, भारत टैक्सी के सारथियों को 6% ब्याज पर वाहन ऋण, विदेशी नागरिकों से 250 करोड़ की ठगी, 2 प्रोग्राम मैनेजर समेत 119 हिरासत में, मुआवजे के लिए नए नियमों से होगी आय की गणना, प्रदेश में 5 दिनों तक होगी बारिश, वाणिज्यिक सिलेंडर 183 रुपये सस्ता, यूपी में 13,116 पंचायत सचिव भर्ती होंगी और कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 13 को। हिंदुस्तान ने घटती कीमतें शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है कि अमेरिका ईरान युद्ध के तनाव में कमी आने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट शुरू होना स्वाभाविक है। तनाव कम होने से भारत में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में 180 रुपये से अधिक की कमी आई है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: 9:05 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत खैर मकदम इस्तकबाल आप सभी अजीजों का जो रेडियो के उस तरफ मौजूद हैं। और रेडियो के इस तरफ मौजूद हूँ मैं आपकी सखी राखी और मेरे साथ हैं
1: निधि। चहकती हुई आवाज, मैंने खुद की तारीफ की,
0: क्या बात है। वैसे ये बहुत अच्छी आदत होती है कि आप खुद की तारीफ करें, क्योंकि अगर आप खुद की ही तारीफ नहीं कर पाएंगे तो उम्मीद कैसे की जा सकती है कि दूसरे आपकी तारीफ करेंगे, है ना
1: जी।
0: तो सेल्फ लव से ही हर प्रकार के लव की शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है।
1: करीना कपूर ने यूं ही नहीं कहा था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, उसका मतलब है
0: सेम। तो गुड मॉर्निंग, लखनऊ का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है। बहुत सी बातें आपसे हमने की हैं, आपके ईमेल्स शामिल किए हैं। आज का मुद्दा हमने ये रखा था कि रेडियो की आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है रेडियो का। बहुत सुंदर मेल्स हमें मिल रही हैं लगातार, तो वो भी हम पढ़ेंगे और ट्रैफिक की जानकारी आपको देंगे, वेदर अपडेट भी देंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।
1: लेटेस्ट वाली मूवी से है मैं वापस आऊंगा और एकदम एनर्जेटिक गाना है। मूवी जितनी सेंटी वाली है ये गाना उतना ही पेपी वाला।
0: तो भाई एनर्जाइज हो जाइए।

0: में बिल्कुल आंखियां लगाए रखी हैं, कहां पर मेल्स पर लगाए रखी हैं, बहुत सारी मेल्स
1: जी,
0: हो गई हैं।
1: और मुद्दे से रिलेटेड बहुत प्यारी मेल्स आ रही हैं। कृष्ण कुमार जी की मेल आई है, सुप्रभात, लखनऊ प्रातः काल से संगीत थेरेपी के साथ शुरुआत करते हैं ये, और रात्रि में सोने से पहले संगीत के साथ ही शयन करते हैं। भूत भविष्य एवं वर्तमान में अपडेट करता है रेडियो, कृष्ण कुमार गोमती नगर लखनऊ से लिखते हैं।
0: अगला मेल हमारे पास हमारी जो रेगुलर लिसनर है उनका है, गुलफ्सा सिद्दीकी जी। गुड मॉर्निंग निधि मैम, राखी मैम, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडेला से। मेरे लिए रेडियो बहुत जरूरी है, जिस दिन रेडियो नहीं सुनती उस दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ये तो बहुत स्ट्रांग वाला कनेक्शन हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप रेडियो से 2008 से जुड़ी हुई है, सुन रही है, और अब तो रेडियो पर कॉल और कॉल भी और मेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, पहले सिर्फ सुन ही सकते थे, ये एडवांस हुआ है, ये अपडेट हुआ है हमारा रेडियो। रेडियो मेरे लिए खाने का काम करता है, जैसे खाना खा लो पेट भर जाता है, वैसे ही रेडियो सुन लो एनर्जी मिल जाती
1: है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है। तालिब अंसारी जी ने मेल लिखा है राजा कटरा बाराबंकी से। रेडियो, गुड मॉर्निंग, रेडियो का मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रीजन इज वर्क करते करते भी सुनते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। तनाव डिप्रेशन फील हो तो हम FM रेनबो ट्यून करके मूड फ्रेश हो जाता है, और RJ लोगों की बातें मूड फ्रेश और खुशनुमा माहौल बना जाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेडियो सुनने के कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी एक RJ निधि मैम से गुजारिश है, जल्दी

0: जल्दी आया करें प्रोग्राम्स के लिए बस
1: कोशिश निधि
0: जल्दी जल्दी आना
1: जी बिल्कुल कोशिश करेंगे पूरी कोशिश करेंगे और एक बहुत अच्छा ईमेल हमारे पास आया है और बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के भी नागेश कुमार जी का सीतापुर उत्तर प्रदेश से आपने हमें मेल किया है ग्राम एवं पोस्ट उमरी जिला सीतापुर है ये बताना चाहते हैं खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि इनके खेत के सड़क के किनारे 5 नीम के पौधे लगाए इन पौधों को इन्होंने आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM के नाम समर्पित किया है
0: बहुत सुंदर बात है ये तो
1: इनका मानना है कि एक पेड़ लगाना केवल पौधा रोपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा छाया और हरियाली का उपहार देना है आइए हम सभी एक एक पेड़ लगाएं और प्रकृति संरक्षण करें और नागेश जी अब ये रिक्वेस्ट रहेगी ये जो 5 पौधे आपने लगाए हैं ना नीम के FM रेनबो के नाम पर इनकी बिल्कुल ख्याल रखिएगा सूखने
0: इनको भरपूर वृक्ष जब बन जाए ना तो इनकी फोटोज हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा आहिल खान का मेल आया है गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू उर्फी खान फ्रॉम बुलंदशहर रेडियो तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है कभी अकेलापन फील नहीं होने देता जैसे मोहब्बत में तो खुशबू है हमेशा साथ चलती है कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं होता यही बात रेडियो पे भी लागू होती है मोहब्बत में वो खुशबू है जो आपके साथ साथ चलती है ना
1: बिल्कुल रेडियो भी आपके साथ साथ चलता है और चलते चलते हम पहुंच गए हैं अखिलेश दुबे पत्रकार कृष्णा नगर लखनऊ जी के मेल पर आप दोनों को सादर प्रणाम रेडियो समाज का दर्पण है रेडियो स्वस्थ समाज संस्कारवान युवाओं और सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी सराहनीय भूमिका निभाता है हमारा रेडियो हमारी ही आवाज है भारत की शान है युवाओं की पहचान है अनंत शुभकामनाएं बहुत शुभकामनाएं आपको भी क्योंकि देखिए आप और हम दोनों ही रेडियो से जुड़े हुए हैं
0: बिल्कुल बहुत सही बात आपने की और इसके बाद मोहम्मद फरमान जी से ये कहना चाहेंगे कि भाई आपका फरमान यहाँ पर लागू इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पसंदीदा गीत सुनवाने का कार्यक्रम ही नहीं है भाई
1: नहीं है कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते उनका गाना प्ले कोशिश रहती है कि जो गाने हम प्ले कर रहे हैं वो भी आपकी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो जाए
0: बिल्कुल तो 9:11:36 हो रहे हैं दोस्तों गुड मॉर्निंग लखनऊ आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर क्योंकि ये है
1: धड़कन लखनऊ की

0: तो भाई 9:14 हो चुके हैं और टाइम बताने का बार बार मकसद ये होता है कि ये वो टाइम होता है जब घर में हो रही होती हैं तैयारियां, नाश्ता बनना है, चाय किसको मिलनी है, अखबार पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, है ना, दूध आया कि नहीं आया और तमाम चीजें.
1: और एक जो रूटीन चेंज हो गया है वो जो समर वेकेशन खत्म हो गई थी ना, अब उसके बाद स्कूल वापस स्टार्ट हुआ है ना, तो सिर्फ बच्चों का रूटीन नहीं चेंज हुआ है, मम्मियों का भी चेंज हुआ है.
0: मम्मियों का भी चेंज हो गया है और कई बार बच्चों को ड्रॉप करने जाना होता है, तो ये काफी एनर्जेटिक और बिजी टाइम होता है. तो कहीं आप अगर भूल रहे हो टाइम देखना तो हम आपको घड़ी देख देख के बताते रहते हैं. और बताना ये भी चाहते हैं कि भाई आज का जो दिन है 2nd of July, हमने आपको बताया था हाफ वे पॉइंट है ये, क्योंकि 182.5 डेज बीत चुके हैं, 182.5 डेज बीत जाएंगे 12 बजे. और आज के दिन की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है.
1: जादू जादू जादू वाली जो फिल्में हैं ना, ये फिल्मों को इंस्पायर करने वाला भी दिन है आज. वर्ल्ड यूएफओ डे है. अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा यूएफओ क्या है. इन्हें आसान भाषा में कहा जाए तो उड़न तश्तरी कहा जाता है, जिनमें हम मानते हैं कि एलियन बैठ के आते हैं.
0: यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स.
1: तो इसको जो आज पहली बार इसको देखा गया था और 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से ही साइंटिफिक रिसर्च इस ओर चलने लगी. एलियंस होते हैं नहीं होते हैं, क्या वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जा सकते हैं, इन सब के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आज के दिन को सेलिब्रेट किया.
0: बिल्कुल. और ये जो फ्लाइंग सॉसर्स होती है, इसके ऊपर जो एक फिल्म बनी थी ईटी, अगर आपने देखी हो अंग्रेजी की, और फिर ऑफकोर्स जादू जो हमारी हिंदी सिनेमा ने बनाई थी. तो ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एग्जिस्ट करते हैं और उनके इनकाउंटर्स हुए हैं, वहीं कई लोगों का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है. और एक बहुत बड़ा प्रेशर भी सरकारों पर डाला जाता है, स्पेशली यूएस वगैरह में, कि वो ओपन करें सारे डिटेल्स और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी उड़न तश्तरियाँ क्या हैं और किस तरह कहाँ कहाँ साइट की गई हैं.
1: लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन कन्फर्म नहीं हो, फैक्ट्स कन्फर्म नहीं होते, तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन को जारी करना सही नहीं होता, क्योंकि ऐसे में ना कई बार भ्रम फैलाए जाते हैं.
0: बिल्कुल. तो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, भले इन्फॉर्मेशन कम मिले. दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिवस है जो हमारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. हम सभी में किसी ना किसी तरह का डर होता है. बहुत सारे लोगों को फ्रीली बोलने में डर लगता है. तो फ्रीडम फ्रॉम स्पीकिंग फियर डे भी आज मनाया जाता है.
1: आसान भाषा में कहा जाए तो खुलकर अपने मन की बात शेयर कर लेना, इस बात के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है. तो अगर आपके आसपास या आपके दोस्त या आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा इंट्रो

0: करके आप तक पूरा ताज़ा हाल पहुंचाते हैं, उनको समर्पित है आज का ये अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकारिता दिवस।
1: और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वैसे ये हमारे देश में नहीं सेलिब्रेट किया जाता, वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, वो है नेशनल डिस्को डे। जब बात रेडियो की आए और म्यूजिक की बात ना हो, ऐसे कैसे ही हो सकता है, हम कैसे छोड़ सकते हैं बताइए।
0: हाँ, तो कहीं भी नेशनल डिस्को डे मनाया जाएगा, हम उसकी बात जरूर करेंगे,
1: जरूर करेंगे। और इसके अलावा हम गाना भी बजाएंगे, एकदम लेटेस्ट वाला, डिस्को वाला नहीं है लेकिन एकदम लेटेस्ट वाला है, डांस तो आप कर ही सकते हैं इस पे।

0: हम ही दिन चढ़े और हम ही दिन ढले, यानी रेडियो ही रेडियो और रेडियो के साथ अपडेट।
1: और दूसरी जो चीज है दिन ढले और शाम, दिन चढ़े शाम ढले होती है, वो है ट्रैफिक। ठीक है ना, हमें सड़क पे निकलना ही पड़ता है, दिन ढले जाते हैं ऑफिस, शाम ढले चले आते हैं घर। तो विकास सिंह जी हमारे साथ हैं, TI1 लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आपकी विशिष्ट भूमिका है, और आज फिर से आपसे हम लेते हैं ट्रैफिक अपडेट। विकास जी गुड मॉर्निंग।
2: वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है। सिर्फ लखनऊ सीतापुर मार्ग की अगर बात करें तो मड़ियाव ढाल के पास में थोड़ा सा ट्रैफिक है, और अगर लखनऊ हरदोई रोड की बात करें तो दुबग्गा के पास में ये पीक आवर्स का प्रेशर है, और लखनऊ अयोध्या मार्ग की अगर बात करें हम तो हमारा जो पॉलिटेक्निक से कमता वाला है यहाँ थोड़ा सा पीक आवर्स में दबाव रहता है, लेकिन वर्तमान में यातायात यहाँ पर सामान्य है
1: जी।
2: और शाम के समय में अगर बात करें मैम तो शाम को लगभग 5 से 6 बजे हमारा जो विजयपुर अंडरपास है शहीद पथ का, तो ये जो है थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति में रहता है, यहाँ ज्यादा यातायात दबाव रहता है, रैंप का सकरा होना एक प्रमुख कारण है इसका, तो इसकी व्यवस्था की जा रही है। परंतु अगर आप शाम के समय में विजयपुर अंडरपास की तरफ से गुजर रहे हैं तो कृपया इसको अवॉइड करें, आप अन्य मार्गों का प्रयोग करें ताकि आपको भी सुगमता हो और किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े।
1: राइट, तो इसके अलावा कोई डाइवर्जन और किसी तरह

0: कि वो नहीं है आज व्यवधान।
1: नहीं मैम, आज कोई डायवर्जन नहीं है। यदि कहीं किसी को जो है ट्रैफिक में कहीं इमरजेंसी की स्थिति है तो हमेशा की भांति हमारा हेल्पलाइन नंबर सदैव जो है आप
0: जी
1: याद रखें, 94-54-40-51-55। आप इस पे हमें संपर्क करके आप हमसे सुविधा सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी जानकारी देने के लिए। आपका दिन शुभ हो और जितने लोग हैं रोड पर निकले हैं सब सुगमता से चलते रहें और कुशलता से घर पहुंच जाएं, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच।
1: जी धन्यवाद, धन्यवाद मैम।
2: तो ये जानिए आपने ट्रैफिक का हाल। अब अगर आप सज धज कर निकलने वाले हैं बाहर ऑफिस जाने के लिए तो इस चीज़ को, इस अपडेट को ज़रूर याद रखिएगा। साथ ही साथ एक एग्जाम भी आज गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो हाँ उन जगहों पर जहाँ पर सेंटर्स पड़े होंगे डेफिनेटली वहाँ पर रश हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिएगा।
0: बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम लेके हमेशा निकलना चाहिए। सड़क पर जल्दबाजी मत करिए, 5 मिनट जल्दी घर से निकलिए।
2: जी हाँ, घर पर जल्दबाजी कर लीजिए जो कि करते ही नहीं है आप, कभी नहीं करते हैं।
0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि यही है
2: धड़कन लखनऊ की।

0: में इतना ही जाना।
1: हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, सद झज के आते जाते बस नुक्स निकालते रहते हैं, यानी गलतियां निकालते रहते हैं।
2: लेकिन आपको पता है ये बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कहते हैं ना कि जो लोग दूसरों की गलतियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि इसने मतलब अच्छाइयों से ज्यादा बुराइयों पे गौर करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप से संतुष्ट लोग नहीं होते हैं।
1: करेक्ट। और
2: सेल्फ डाउट भी होता है उनको बहुत ज्यादा।
1: हाँ, और देखिए हमारे जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें भी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 पहले कर दिया तो नंबर नहीं काटते। शर्त बस इतनी होती है चाहे आप 10वां सवाल पहले करें या पहला सवाल पहले, जवाब सही होना चाहिए।
2: बिल्कुल सही बात है।
1: फिलहाल हमारे पास जवाब बहुत सारे हैं हमारे आज के मुद्दे पर। बबीता राव जी का मेल आ चुका है जिन्होंने नवाबों के शहर लखनऊ से हमें मेल किया है गोसाईगंज से। मैम जी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने भर भर के हमारी बहुत सारी तारीफ की और उसके बाद शिकायत की है राखी मैम जी से कि आपको सुनने के लिए कान तरस जाते हैं बबीता जी के लिए। इतने दिनों बाद आप आई हैं ये कहना है इनका, तो जल्दी जल्दी आया करिए और हैप्पी हैप्पी हो जाती हैं आप सुन के, तो बहुत अच्छा।
2: बहुत शुक्रिया बबीता इतने प्यार।

0: के लिए। और राम मोहन, अच्छा कुछ और भी लिखा
1: है। हाँ, आज के मुद्दे पर कहना चाहती हैं बबीता जी कि मैम जी मैं सच कहूँ तो मेरे द्वारा रेडियो के बारे में कुछ बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी छोटी सी बात कहना चाहूंगी रेडियो दिल है तो यहाँ के सभी आरजे उसकी धड़कन है जो हम सभी लिसनर्स के दिलों में धड़कते रहते हैं। जैसे जीवन जीने के लिए हमारे शरीर के लिए 5 इंद्रियों का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार आज के समय में हमारे लिए रेडियो जरूरी है। तो बहुत लंबा चौड़ा आपने मेल लिया है, लेकिन थैंक यू सो मच। अब देखिए हमें बहुत सारे लोगों के मेल
0: शामिल करने हैं। देखिए रेडियो साथी नहीं, ये है टाइटल उस कविता का जो राम मोहन गुप्ता जी ने लिखा है, लिख कर भेजी है, और ये इनका मतलब पेटेंट स्टाइल बन चुका है कि लिखते हैं कि भले ही आज उपलब्ध है मनोरंजन के साधन कई, फिर भी रेडियो सा साथी कौन, सच में कोई नहीं।
1: करेक्ट बात।
0: घर दुकान या फिर हो हम किसी सफर पर, FM का साथ सुहाना रहता बनकर हम सफर। गीत संगीत समाचार हर जरूरी सूचना जानकारी, रेडियो पहुंचाता है घर घर गांवों तक ले जिम्मेदारी। शिक्षा ज्ञान ध्यान और समय का भी साथी रेडियो रहते कहते रहकर अपने काम इसकी मधुर आवाज सुनो, करते रहकर अपने काम इसकी मधुर आवाज सुनो। रेडियो पर कर विज्ञापन, जन जन तक होती पहुंच, व्यवसाय वृद्धि संग समृद्धि है लाभ इसका अद्भुत। हमारे ही क्या हर किसी के जीवन का साथी है रेडियो, जुड़कर इसके साथ बन जान कर मस्ती से जियो।
1: बहुत ही खूबसूरत है राम मोहन जी, और आप हमेशा ही हमारे मुद्दे पर कुछ ना कुछ ऐसा पोएटिक जरूर लिख कर देते हैं।
0: और ये बहुत सुंदर पोएम आपने आज भी भेजी है, और इसके बाद शकील अहमद क्या कह रहे हैं।
1: शकील अहमद से पहले हम बताना चाहेंगे रोशनी रावत जी के मेल के बारे में, जिन्होंने बकायदा डेट तक याद रखी है कि आप कब आई थी और उसका जिक्र भी किया है। फिलहाल रोशनी रावत जी का मेल आया है हमारे पास जिला उन्नाव से, और कहना चाहती है कि रेडियो इनके जीवन में बहुत महत्व रखता है। डिजिटल उपकरणों के निरंतर उपयोग से आंखों और मन में थकान हो जाती है, लेकिन रेडियो का उपयोग करके मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो रोशनी जी के लिए रेडियो सुकून है। अब बात करते हैं शकील जी की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू राखी मैम और निधि मैम, क्या
0: गुड मॉर्निंग,
1: इतनी सारी वेरी वेरी के साथ। रायबरेली से आपने मेल किया है, राखी मैम वाज मिसिंग ऑन GML सो बैडली सिंस लॉन्ग टाइम बट टुडे वी आर सो हैप्पी। देखिए कितनी अच्छी कितना इंतजार करते
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच।
1: बचपन से रेडियो पर बहुत सारे सॉन्ग सुनते आए हैं और इनका शौक भी यही रहा है, ये सिलसिला टूटा नहीं है। रेडियो पर क्रिकेट कॉमेंट्री सुनने का मजा ही अलग होता है, विंटर सीजन में तो ब्लैंकेट के अंदर रेडियो रखकर प्रोग्राम सुनते।
0: हाँ जी,
1: बहुत सारे रेडियो चैनल्स का जिक्र आपने किया है जो लगातार आप सुनते आए हैं। शकील जी बहुत शुक्रिया मेल के लिए।
0: और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि विविध भारती भी ये सुनते हैं, विच इज विविध भारती की अपनी एक फैन फॉलोइंग है ना निधि।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: सही नाम पढ़ने की गुजारिश सुनील कुमार। आदरणीय राखी जी, निधि जी आप बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी प्रस्तोता हैं, मेरा अनुरोध है के साथ आग्रह है कि मेल भेजने वाले का नाम लिया करें, किस आईडी से मेल आई है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि किसने मेल भेजी है। हमेशा प्रेषक का नाम लेने का कष्ट करें। सुप्रभात, सुनील प्रांजल विकास नगर लखनऊ। सुनील जी आपकी जानकारी के लिए, हम जब ईमेल कोई भी खोलते हैं तो जिस मेल आईडी से आती है, जिस नाम से वो आती है, उस नाम को पढ़ते हैं, लेकिन अगर अंदर जो कंटेंट होता है उसमें उनका नाम लिखा होता है जो प्रेषक है, तो हम उनका नाम भी पढ़ते हैं। अब ये गलती तो इसको नहीं कह सकते हैं, ये जरूर है कि भाई अगर आप लोग अपनी ईमेल आईडी से भेजें तो ये दो दो नाम वाला
1: कंफ्यूजन
0: चीज नहीं होगी
1: हो,
0: लेकिन उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम आप जितने नाम लिखेंगे हम उतने पढ़ देंगे।
1: अगली मेल हमारे पास नीरज कुमार जी की। हेलो डियर प्यारी राखी मैम और नदी मैम, प्यार भरा नमस्कार। पिंकी आप देखिए नीरज जी की आईडी है, और पिंकी रिंकी गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से आपने हमें मेल किया। हमने दोनों ही नाम शामिल किए हैं और बहुत दिनों बाद आए हैं, इसके बाद तो हम मानते हैं कि हम बहुत दिनों बाद आए हैं। रेडियो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, रेडियो से आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है और आपके घर का सदस्य की तरह बन गया है पिंकी रिंकी जी के, और आप तो रेगुलर हमें कॉल भी करते हैं। रेडियो हमारे घर में ना हो तो हम लोगों की जिंदगी एकदम बोरिंग हो जाती है, ये बजता है तो ऐसा लगता है कि घर में बहुत सारे लोग बैठ कर बातें कर रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मतलब माहौल से
0: माहौल सेट कर देता है रेडियो। तो चलिए माहौल सेट रहना चाहिए, और एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना निधि ने सिलेक्ट किया है, आप सभी के रेडियो सेट पर पहुंच रहा है, इसे एंजॉय कीजिए 100.7 FM पर।

0: की बारिश और बद्रा की बातें हो रही हैं और आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही है कि बादल आते जाते नजर आ रहे हैं, तो दिन भर क्या हाल रहेगा?
1: बिल्कुल, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं मौसम की वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दानिश जी से। गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग।
1: आज तो मौसम ने काफ़ी खुशियां बांटी हैं सुबह सुबह लखनऊ वासियों के लिए, तो आने वाले दिन में और आज का पूरा दिन किस प्रकार से मौसम बिहेव करेगा ज़रा बताएं।
2: मौसम से बात करें तो जैसा कि आज दिन भर बादलों की आवाज आए रहेगा और बीच बीच में कुछ बारिश के स्पेल आएंगे, और कहें तो मौसम इसी तरीके से खुशनुमा आज और कल अच्छी वर्षा होने की संभावना है बीच बीच में। बाकी परसों से धूप छाव रहेगा, लेकिन हाँ छिटपुट वर्षा की संभावना दो तीन दिन और रहेगा। तो कुल मिला के अगले चार पांच दिन मौसम इसी तरह खुशनुमा बना रहेगा और बारिश का जारी रहेगा।
1: तो इसकी वजह से जो आने वाले दिन होंगे उसमें तापमान में गिरावट आएगी ही आएगी, लेकिन क्या उसके बाद गर्मी बढ़ने के चांसेस हैं या गिरावट आ ही जाएगी?
2: जैसे कि देखिए मानसून में क्या होता है कि उतार चढ़ाव वाला सिलसिला बना रहता है, तो फिलहाल अभी चार पांच दिन तक मौसम खुशनुमा रहेगा, बीच में फिर थोड़ी गर्मी पड़ेगी, फिर डाउन होगा। कि उतार चढ़ाव जैसा कि हमारा मानसून का फ्लो जैसा होता है उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है, तो कुल मिला के अभी फिलहाल पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। बाकी उसके बाद जैसे बीच में कुछ सिस्टम थोड़ा मूव होता है तो हो सकता है फिर खुलेगा,
1: जी,
2: फिर
1: जी,
2: उसके बाद बारिश होगा, तो उतार चढ़ाव वाला मौसम बरकरार रहेगा। लेकिन अच्छी बात ये कि आने वाले अगले चार पांच दिन का मौसम खुशनुमा रहेगा
1: जी, और ह्यूमिडिटी ऑफकोर्स मुझे लगता है बढ़ जाएगी। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी खबर दी दानिश जी कि आने वाले चार पांच दिन आप मतलब पिकनिक प्लान कीजिए, कहीं घूमने जाना हो तो जाइए तो ये अच्छा वेदर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दानिश जी, और बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई इन्होंने। और आने वाले चार पांच दिन भाई देखिए बारिश होती रहेगी, कभी होगी कभी नहीं होगी, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, तो मौसम कुल मिलाकर बढ़िया बिहेव करेगा।
0: अच्छा बिहेव तो करेगा, लेकिन भाई जो अगले तीन दिन है वो तो स्कूल वाले रहने वाले हैं, तो फिर कैसे पिकनिक होगी?
1: अब पिकनिक भी अब आजकल देखिए जैसे वो फल और सब्जियां पहले क्या मौसम के हिसाब से बिकते थे, अब हर वेदर में हर सब्जी और हर फल मिल जाता है, तो अब किसी भी दिन आप पिकनिक कर सकते हैं।
0: कोई जिस दिन आपका मन किया कि आज आप अपने दोस्तों के साथ या बच्चों के साथ पिकनिक बाहर जाना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उस दिन आपकी पिकनिक।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह जहां हो प्यार का मौसम अगला ट्रैक आपके रेडियो सेट पे आने वाला है, मौसम तो प्यार का ही है।
1: हाँ, एंजॉय कीजिए आप।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: नाइन फोर्टी फोर टाइम हो चुका है और अब वक्त है

0: दिन आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, इस पूरे समाज के लिए शुभ हो, ऐसी हमारी शुभेच्छा है।
1: अच्छा दिन है, अच्छा मौसम है, खूबसूरत मौसम में अपनी बर्थडे पार्टी जरूर मना लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आज आपकी एनिवर्सरी है तो आपको
0: भूलना नहीं है,
1: शुभकामनाओं के साथ ये भी याद दिला दे रहे हैं कि भूलना नहीं है। और अगर आपको अभी तक याद नहीं आई थी तो अब याद आ गई होगी, अब झट से उठिए और फट से विश कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अपना बर्थडे किन विभूतियों के साथ मनाते हैं ये भी बताते चलें।
1: सबसे पहले अगर हम बात करें तो साहित्य की बात करते हैं। आज है आलोक धनवा जी का बर्थडे, जिन्हें प्रसिद्ध जनकवि कहा जाता है। 1948 में बिहार में आपका जन्म हुआ था। और जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर, ये पंक्तियां हैं उन्हीं की रची हुई। आलोक धनवा आधुनिक हिंदी साहित्य में अपने अग्रणी स्थान रखते हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपने विशेष योगदान दिया है और आपको साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है।
0: इसके अलावा हम अगर बात करें तो एक बॉलीवुड के पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर, जिनकी बहुत ही एक अलग पहचान, अलग आवाज़ थी, मोहम्मद अजीज जी का बर्थडे होता है, होता था 1954 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता के गुमा में। और बॉलीवुड के तो प्लेबैक सिंगर ही रहे, 20,000 से अधिक इन्होंने गाने गाए हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे मोहम्मद रफ़ी साहब से। तो बीच में ये भी कहा जाता था जब 80s और 90s के दशक में जब मोहम्मद अजीज़ काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे कि ये कोई अगर मोहम्मद रफ़ी की जगह ले सकता है तो मोहम्मद अजीज़ ले सकते हैं।
1: जी, इन्हें को उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। तो आज मोहम्मद अजीज़ जी की जन्म जयंती है। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर पवन मल्होत्रा की भी। जब भी मेट में करीना कपूर के चाचा जी का जो रोल निभाया था जिससे लाइमलाइट में,
0: उससे भी पहले ये नुक्कड़ जो एक सीरीज आती थी दूरदर्शन पर उससे बहुत पॉपुलर हुए थे और नुक्कड़ में इनका बेहतरीन अभिनय था। और ये एक ऐसे एक्टर रहे हैं पवन मल्होत्रा जो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए हैं।
1: और इतनी दमदार एक्टिंग रही है कि आप इनका हर किरदार याद कर सकते हैं। जैसे कि राखी जी ने बोला कि दूरदर्शन से बिल्कुल इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उससे भी पहले थिएटर में हमेशा से शौक रहा था, तो पवन जी ने अपने कॉलेज टाइम में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था।
0: और वो जो उन्होंने एक्टिंग की जो बारीकियां सीखी वो अभी तक हमें देखने को मिलती हैं। तो पवन मल्होत्रा जी को भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और आपको वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू इफ इट इज योर बर्थडे टुडे।
1: इसी के साथ आवन जावन की बात की थी हमने बादलों की, इसलिए हमने गाना भी ढूंढ के निकाला है। हम हर मौके हर शब्द पे गाना निकाल लेते
0: ये
1: हैं।
0: इंडिया में ही पॉसिबल है, कोई ओकेजन हो, कोई इमोशन हो और कोई भी सिचुएशन हो, गाना जरूर होता है उसके लिए।
1: आपको डायरेक्ट बात ना कहनी हो, आप सटाक से गाना भेजिए। फटाक से सामने वाला
0: से सामने वाला समझ।
1: ये गाना आ रहा है स्ट्रेट आपके रेडियो सेट पर।

9:45 AM पर हम विश कर रहे हैं आपको, अगर आज आपका अवतरण दिवस है तो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपका

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, 9:51 और जल्दी से हम कुछ और मेल शामिल करने की कोशिश करते हैं। छबीराम जी का मेल आया है हमारे पास, जिला फरुखाबाद यूपी से। आपका नियमित श्रोता हूँ और रेनबो मेरे दिल की धड़कन है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, छोटी सी बात आपने लिखी लेकिन बड़ा अच्छा लगा
4: जी। सोनू परवाना, अरिजीत सेठ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, इन्होंने भी छोटी सी सूक्ष्म में ही सब कुछ कह डाला है।
3: महेंद्र दीपन जी, नमस्ते निधि मैम और राखी मैम जी, आपने राजस्थान नागौर से हमें मेल किया है। लाइव आपका शो गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहा हूँ और आज का मुद्दा जानकर खुद को रोक नहीं पाया। सच कहूँ तो मेरी सुबह भी रेडियो से होती है और रात भी। रात को बिना रेडियो के मुझे नींद ही नहीं आती। रोज 30 मिनट का टाइमर लगाकर सोता हूँ और गानों को सुनते सुनते कब आंख लग जाती है, कब रेडियो बंद हो जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे बहुत प्यार है और रेडियो की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ गाने सुनते हुए इंसान कभी बोर नहीं होता, हर बार कुछ और कुछ पसंदीदा सुनने को मिलता है।
4: बिल्कुल। आंचल सेठ खालिसपुर से लिखती हैं, आप दोनों आरजेस को नमस्ते, रेडियो हमारे परिवार का हिस्सा है। शादी के बाद हमें एक रेडियो मोनू भैया जी ने गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा कि रहना परिवार से जुड़े रहना, दूर रहकर भी दूरी न महसूस हो, या रेडियो कहीं भी रहना, परिवार से जुड़े रहना, दूर रहकर भी दूरी न महसूस हो, ये रेडियो की देन है। भैया ने सबको रेडियो से जोड़ दिया है और आज मुझे गर्व है कि मैं रेडियो से जुड़ी हुई हूँ।
3: जसप्रीत विश्वकर्मा जी का मेल आया है, रेडियो आपके जीवन में सूचना, मनोरंजन और जुड़ाव का एक बेहद खूबसूरत और भरोसेमंद माध्यम है। ये न केवल देश दुनिया की खबरों से अपडेट रखता है बल्कि संगीत और कहानियों से भी जोड़ता है। बहुत सही बात कही आपने।
4: और देखिए, राजकमल यादव बरैया से इन्होंने भेजा है, बाराबंकी सूरतगंज से मेल। आज का मुद्दा बहुत अच्छा है। मैम जी, रेडियो के बारे में बताना ही मुश्किल है, 25 साल से सुन रहे हैं, जीवन साथी जैसा महसूस कर रहे हैं, घर के साथ खेत पर भी सुनते हैं और क्या बताएं। हमारे साथ हमारी वाइफ संगीता यादव, सावन कुमार, शालिनी भी सुन रहे हैं, धन्यवाद।
3: और तालिब अंसारी जी, आपने हमें कुछ देर पहले भी मिल गया था और रिक्वेस्ट किए कि क्या हम 12 बजे तक रुक सकते हैं। अगर हम 12 बजे तक रुकेंगे तो राखी जी से आप बातें कैसे करेंगे? राखी जी आपके साथ बिल्कुल 12 बजे तक रुकेंगे।
4: आप संदेश इनका दे दीजिएगा, हम पहुंचा देंगे। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, सुबह की धूप में बस तेरा नाम आए, हर किरण में बस तेरा ही पैगाम आए, तेरी मुस्कान से ही होती है सुबह मेरी, हर सुबह नई रोशनी नया ख्वाब लाती है, सपनों को पूरा करने की एक नई राह दिखाती है, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, सदा चमकते सूरज की तरह हर दिन हो अच्छा, गुड मॉर्निंग, शायरी अर्ज किया है। अरे भाई मुद्दे पे आए नहीं, इतनी सारी बातें आपने मोहम्मद आसिफ जी लिख दी लेकिन मुद्दे पर नहीं आए। और बीना बसाक जी का मेल आया है और ये लिखती हैं कि आज के मुद्दे से जुड़ते हुए कहना चाहेंगी कि रेडियो की हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अहमियत है, जैसे मुफ्त मनोरंजन का साधन, देश विदेश से जुड़ी सटीक जानकारियां मिलती हैं, मानसिक तनाव कम होता है, अन्य गैजेट्स की तरह स्क्रीन से दूर रहकर, ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगता है रेडियो का, मुझे भी, मतलब बीना जी, मैं अपनी भी बात कर रही हूं, आप दूर रहकर उपयोग इस गैजेट का कर सकते हैं जिससे हमारी आंखों पर बुरा असर नहीं पड़ता है, नए नए दोस्तों से जुड़ने का मौका भी मिलता है।
3: लखनऊ से आपने मेल किया है और आपने रेडियो में एक और चीज ऐड की है कि रेडियो में प्रसारित होने वाले समाचार पर भरोसा रखते हैं, सब काम करते हुए भी आप रेडियो को

0: सुनते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. आई साइड बिल्कुल वीक नहीं होती, ये भी सही बात है. और राखी जी, अब क्योंकि वक्त मेरे जाने का होने वाला है, तो जैसे राखी जी ने बोला कि रेडियो की बेस्ट चीज उन्हें क्या लगती है वो आपसे शेयर की, आपको पता है मुझे बेस्ट चीज रेडियो की क्या लगती है? रेडियो बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह है, उस पर जो भी गाना चल रहा है हमें उसे इंजॉय करना होता है. ठीक उसी तरह आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसके साथ आप एडजस्ट कर लेते हो, तो ये रेडियो हमें सिखाता है.
1: बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही निधि आपने. और आपका जाना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सुबह से आप आई हुई हैं और जाहिर है कि अब आपके जाने का टाइम है, लेकिन एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा. तो सुनते रहिएगा 100.7 FM रेनबो, क्योंकि यही है
0: धड़कन लखनऊ की.
2: कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, एट हरदोई रोड, दुबग्गा.

नमस्कार, पूर्वान के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने कल राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर जीएनएस

इसकी शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और राजस्व अधिकारियों से कहा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इस अभियान का लाभ निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षा पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कड़ी चौकसी के बीच UPTET 2026 परीक्षा सुचारू रूप से जारी है। जौनपुर में 23 केंद्रों पर 3 दिनों तक 56,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। फरुखाबाद में 19 केंद्रों पर 31,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 2 से 4 जुलाई तक गोरखपुर लखनऊ के बीच अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। ट्रेनों की स्थिति की जानकारी NTES ऐप, रेलवे हेल्पलाइन 139 तथा नजदीकी स्टेशन से प्राप्त की जा सकती है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुर्विज्ञान के लिए गठित किए गए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBEMS ने नीट PG 2026 परीक्षा की तारीखों और ऑनलाइन आवेदनों की घोषणा कर दी है। नीट PG 2026 परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। उम्मीदवार 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने और अन्य सूचना बुलेटिन के लिए उम्मीदवार NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natbord.edu.in पर भी जा सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: 10:03 आपकी सकीरा की एक बार फिर आपके साथ है सुपर हिट प्रोग्राम्स लेकर 100.7 FM रेनबो पर। बैक टू बैक सुनिए सिलसिला गानों का, खूबसूरत हसीन बेहतरीन गाने इस खूबसूरत मौसम को चार चांद लगाते हुए आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। एंजॉय करते रहिए।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

10:33 हो रहे हैं दोस्तों, और अब सुपर हिट सॉन्ग्स को वाइंड अप करने का टाइम हो गया है। अगला कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे लेकर फिर से एक बार हाजिर होगी आपकी सकीरा की। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि यही है धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार। पूर्वान के 11 बजे हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी।

0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग ओ कार्यक्रम के तहत 7,145 करोड़ से अधिक की लागत से 117.7 किलोमीटर लंबे कानपुर कबरई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान करना उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना भोपाल कानपुर आर्थिक गलियारे का एक प्रमुख हिस्सा है जो प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी, तेज आर्थिक गतिविधियों और सुगम परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कड़ी चौकसी के बीच यूपीटीईटी 2026 परीक्षा सुचारू रूप से जारी है। जौनपुर में 23 केंद्रों पर 3 दिनों में 56,000 से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। फर्रुखाबाद में 19 केंद्रों पर 31,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 2 से 4 जुलाई तक गोरखपुर लखनऊ के बीच अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। ट्रेनों की स्थिति की जानकारी NTES ऐप, रेलवे हेल्पलाइन 139 तथा नजदीकी स्टेशन पर प्राप्त की जा सकती है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुर्विज्ञान के लिए गठित किए गए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBEMS ने नीट PG 2026 परीक्षा की तारीखों और ऑनलाइन आवेदनों की घोषणा कर दी है। नीट PG 2026 परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। उम्मीदवार 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने और अन्य सूचना बुलेटिन के लिए उम्मीदवार NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जा सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: इन आँखों के मस्ती मस्ताने हजारों हैं।
4: मैं हूँ मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
5: ग्यारह बजकर चार मिनट हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो रहा है संदेश आपके गीत हमारे, ये आपका अपना कार्यक्रम है क्योंकि इसमें आपके ईमेल्स और फोन कॉल्स दोनों ही हम शामिल करते हैं, साथ ही साथ प्ले करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स, एंटरटेनिंग सॉन्ग्स, और आप अपने दिल की बात कहते हैं किसी संदेश के जरिए आप पहुँचते हैं बाकी श्रोताओं तक। और आकाशवाणी के स्टूडियो में इस समय मौजूद हूँ मैं, आपकी सखी राखी, और संगीत आपके गीत आपके इस कार्यक्रम में आप जो ईमेल्स भेजेंगे उसे भेजना है आपको fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, एज इन fmakashvanilucknow@gmail.com, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे दो टेलीफोन नंबर्स हैं जो हैं 223-8852 और 223-8845। इन पर आप कॉल करके हमें हमसे जुड़ सकते हैं। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, आप इसे एंजॉय कीजिए।

0: तो 11:09 हो गए और संदेश आपके गीत हमारे में आपके ईमेल्स भी आने लगे और फ़ोन कॉल्स भी आने लगे हैं. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए फ़ोन लाइन पे कौन है. हेलो.
1: हेलो प्यारी मैम कुशियो का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार.
0: जी नमस्ते. कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए.
1: जी मैं शिव इंदिरा नगर लखनऊ से बोल रहा हूँ मैम.
0: जी शिव बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप सबको.
1: जी मैम मैं संदेश मैम सभी को अपने दोस्तों को मैं ये देना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर मैं कल डॉक्टर दिवस मनाया गया तो मैम कल तो मेरा फोन नहीं लग पाया लेकिन आज डॉक्टर सभी डॉक्टर्स को मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं वो हम सबको डॉक्टर्स को शंकर भगवान का एक रूप मानकर उनसे विश्वास करके उनकी दवा इलाज करनी चाहिए क्योंकि एक भगवान शिव का एक वैद्य रूप भी जो है जो वैजनाथ नाम से जाना जाता है.
0: जी
1: भगवान ने ये मतलब वैद्य
0: जी हम समझ रहे हैं
1: वैद्यनाथ करके मतलब दिखाया है कि मतलब जो है आराम से सब लोग विश्वास करके दवा करें और डॉक्टर्स को भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ.
0: बिल्कुल. और ये जो ये वो होता है ना विश्वास वाली जो बात होती है ना ये एक टू वे प्रोसेस है. मतलब उनकी भी जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की भी कि वो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अपनी जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है डॉक्टरी की उसके साथ मतलब जो वो एक शपथ लेते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी जो विद्या है इसका सदुपयोग करने के लिए तो उस तरह से उन्हें भी करना चाहिए और साथ ही साथ भाई जो डॉक्टर्स बताते हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए. और इसीलिए कहते हैं कि कई लोग अपने मन से दवाई खाते रहते हैं या किसी से पूछ लिया कि तुम्हारा कैसे ठीक हुआ था कोई बीमारी तो हमारी भी ठीक हो जाएगी है ना. तो ये सब नहीं करना चाहिए. शिव जी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए.

0: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जानते हैं कौन है। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं नागेश कुमार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। मेरा गांव उमरी है।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं आप
1: जी? मैम पढ़ाई करते हैं, PhD करते हैं
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो इस समय सीतापुर में है कि लखनऊ में है?
1: नहीं, मैम सीतापुर में, कॉलेज हमारा सीतापुर में है।
0: अच्छा, ओके, तो बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: मैं संदेश ये देना चाहते हैं कि आप जो हैं सभी लोग वो सीड बोल डालें, जो मिट्टी से गोल आकार का मिट्टी का ले लीजिए, उसमें सीड डाल दीजिए, गोल गोल लड्डू भी तैयार कर लीजिए, और बारिश के मौसम में इधर उधर फेंक दीजिए, जिससे अंकुरित होके और पौधे जमेंगे।
0: अरे क्या बढ़िया बात है, आपने, मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारे पौधे लगाए होंगे। कितने लगा चुके हैं आप अब तक?
1: मैम हम जब से मैम कृषि के क्षेत्र में आए हैं लगभग 5 साल से, की प्रोसेस चलती रहती है, हमारे घर पर भी बहुत पेड़ लगे हैं।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि जो बीज होते हैं उनको आप मिट्टी के बीच में डाल के एक ऐसा गोला सा बना लीजिए मिट्टी का, और जब बारिश का मौसम हो तो जहाँ भी आप चाहे ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि कहीं पर ज़मीन है जो खाली है, तो वहाँ पर आप उसे अगर डाल दें, छोड़ दें, तो वो अपने आप भी अंकुरित हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा प्यारा संदेश देने के लिए जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और आइए कुछ ईमेल्स पढ़ लेते हैं। रामेश कुमार जी लिखते हैं, नमस्कार, कहना चाहता हूँ ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने सपनों पर विश्वास रखो, सभी अपने माता पिता का सम्मान करें और सुरक्षित रहें। कोलकाता से ये सुन रहे हैं रमेश कुमार, ग्राम जगन्नाथपुर, पोस्ट लोहरपुरवा, तहसील कैंपियरगंज, ज़िला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा एड्रेस आपने दिया, लेकिन जो संदेश दिया है बहुत ही बढ़िया है कि भाई मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, और उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है, और माता पिता का सम्मान करना कभी ना भूलें। और माता पिता भी से भी अनुरोध है कि बच्चों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना मान करके उनको भी वो एक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं स्पेशली, तो परिपक्व इंसान है, उस तरह से उनसे बातचीत करें। और जब, जैसा अभी पहले भी कहा था मैंने, कि ये ट्रस्ट और जितने भी रिश्ते होते हैं ना, ये टू वे प्रोसेस होता है, जितना आप देते हैं उतना आपको वापस रिसीव होता है। कुलदीप कुमार जी का मेल आया है, ये लिख रहे हैं NTPC गेट नंबर 2 से, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, थैंक यू, डेडिकेटेड टू पप्पू राम नरेश एंड दुबारी। कुलदीप कुमार अग्रहरी जी, शुक्रिया मेल भेजने के लिए, आपने संदेश कुछ लिखा नहीं लेकिन मेल भेजा है, वक्त निकाल के इसके लिए आपका शुक्रिया कर रहे हैं हम। नाजिम उस्मानी जी का मेल आया है, कभी प्यार दिल से निकलता नहीं, सॉन्ग सुनवा दीजिए। नाजिम उस्मानी, महमूदाबाद सीतापुर। देखिए, इस प्रोग्राम का नाम है संदेश आपके, गीत हमारे, तो संदेश आपको भेजना है, गीत हमारे पसंद का सुनिए। एंड कोशिश ये रहती है कि जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, जो सुंदर प्यारे गाने हैं, वो आप तक पहुंचे, जैसे कि ये वाला।

0: और ईमेल्स का और फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा ज़्यादा वेट कर लिया होगा। हेलो,
1: हेलो राखी मैम, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, कैसी हैं आप, क्या नाम है? थोड़ा आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है।
1: मैम हम बहुत अच्छे हैं, और पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ जगदीश कुशीगढ़ जिला रायबरेली से।
0: जी बताइए पिंकी जी, क्या कर रही थी अभी फ़ोन मिलाने से पहले?
1: मैम आपका कार्यक्रम सुन रही थी
0: अच्छा,
1: और आज आप काफ़ी दिनों के बाद आई, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन।
0: थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ बहुत स्लो, धीमे आ रही है, बहुत ही धीमे।
1: जी मैम अभी आ रही है।
0: अब थोड़ी बेटर आ रही है, बताइए। क्या संदेश देना चाहती
1: हैं? है कि आपकी आवाज, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, और आप जब स्माइल करती है ना तो बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू।
1: और मैम मेरा संदेश ये है कि आज के समय में मतलब जो माता पिता के बच्चे होते हैं वो उनकी बात को नहीं समझते और अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। तो मैम कोई भी कदम उठाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता की राय जरूर लें और उनके बारे में जरूर सोचें और अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें।
0: हाँ बहुत अच्छी बात आपने कही, और फिर से मैं एक बार यही कहूँगी कि जो पारिवारिक संबंध होते हैं माता पिता और बच्चों के बीच में या आपस में पार्टनर्स के बीच में,
1: मैम आपके माता पिता हैं तो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। तो आपको अपने माता पिता की मतलब रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए।
0: जी जी जी बिल्कुल सही बात आपने कही। अभी इससे पहले जो कॉलर थे वो जो डॉक्टर्स डे के ऊपर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल शिव जी जो कह रहे थे ना कि पूर्ण विश्वास करना चाहिए, इसी तरह बच्चों भी पूर्ण विश्वास करते। कई बार क्या होते हैं ना कुछ इक्वेशंस,
1: मैम आजकल के समय में जैसे माता पिता कुछ कहते हैं तो बच्चे बोलते हैं हाँ हमें पता है, हम ये सब कर लेंगे, हम ये सब जानते हैं। तो मैम अगर कुछ बोल रहे हैं तो पहले तो उनकी बात को ध्यान से सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर उनकी बात को समझे, फिर अपने जीवन में मतलब अपने माता पिता की बात को

0: उतारने की कोशिश करें,
1: अपने जीवन में उतार लें।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच पिंकी रिंकी हमें कॉल करने के लिए जगदीशपुर से। और आप नियमित श्रोता हैं, सुनते रहिए और इंटरटेन होते रहिए, और इसी तरह हम लोगों को भी कुछ ना कुछ संदेश आप देते रहिए। चलिए अब देखते हैं कि दूसरी लाइन पर कौन है। हेलो हेलो, तो आपके ईमेल्स पढ़ लेते हैं इस बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि किस किसने हमको क्या क्या लिखा है। देखिए ये आया है मेल, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, मेरा संदेश है कि आप सब मोबाइल से दूरी बनाकर रेडियो से जुड़ जाइए तो आपके जीने का ढंग ही बदल जाएगा। मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ। मैं कुछ नाम हैं, कुलदीप जी, उदौली, आकाश जी, मुरारपुर, रिंकी पिंकी जी, गुलफशा जी और सभी लिसनर्स, इनको ये मैसेज डेडिकेट भी करना चाहते हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी के नाम से इन्होंने ये ईमेल हमें भेजा है, बहुत शुक्रिया, अच्छी बातें कही हैं आपने अपनी मेल में। और अरविंद कुमार बुद्ध लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, अरविंद कुमार बुद्ध फ्रॉम विलेज रसूलपुर सुनवाती डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। स्वयं को जानो, यही सभी ज्ञान की शुरुआत है। सुकरात, सोक्रेटिस ने ये कहा था कि भाई आप खुद को जान लीजिए और इसी जानकारी के बाद जो है वो आपकी जो ज्ञान यात्रा है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले खुद से सबल करें, ऐसे जैसे कि जैसे मैं कौन हूँ। अच्छा, सवाल करें, सबसे पहले खुद से सवाल करें जैसे कि मैं कौन हूँ और मैं ऐसा क्यों हूँ। और मैं भाई जाहिर है आप अपने आप से तो बातचीत करते ही नहीं हैं, हर समय हम दूसरों से बात करते हैं। बहुत सुंदर आपने बात कही अरविंद कुमार बुद्ध जी की, बहुत ज़रूरी होता है अपने अंदर झांकना और अपने अंतर्मन को समझना, अपनी अपने बारे में जानना और अपने से प्रश्न पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ या मेरा पर्पज़ क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में जानते हैं और वहाँ से जानकारी का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। राखी मैम, संदेश शायरी के माध्यम से है, पेड़ों से हमें जीवन और मिलती है ताज़ी हवा, आओ मिलकर करें संकल्प और लगाएं एक नया पौधा, धरती माँ का श्रृंगार है ये हरे भरे पेड़, आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे हम खुशियाँ ये ढेर, एक एक पेड़ लगाकर हम इस धरती को स्वर्ग बनाएं, बिन पेड़ों के सांसें थम जाएंगी, आओ आज ही पौधा लगाएं। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है मोहम्मद आसिफ अंसारी, बहुत अच्छा मैसेज है और ये सभी को समझना होगा, जानना होगा कि पेड़ों की जो का जो महत्वपूर्ण किरदार है हमारे जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही कि पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन देता है और हमें जिंदा रहने के लिए, हमारी सांसें चलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप एक पेड़ लगाते हैं कम से कम आप अपनी ऑक्सीजन का तो इंतज़ाम कर लेते हैं, तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। अब एक गाना सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन सा, उसके बाद हम फिर से आएंगे और आपके फ़ोन कॉल्स और आपके ईमेल्स शामिल करेंगे। एक बार फ़ोन नंबर्स रिपीट कर देते हैं, 0522 है लखनऊ का एसटीडी कोड, उसके बाद आपको मिलाना है 2238852 या फिर 2982377, 0522223852, 0522298237, और ईमेल आप भेज सकते हैं हमें fmakashwanilakhnau@gmail.com पर, एज इन FMAKASHVANILUCKNOW@gmail.com। और ये बहुत ही पॉपुलर ट्रैक आपके रेडियो सेट पर आ रहा है मेरी तरफ से।

0: 100.7 एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे। बहुत ही खूबसूरत ईमेल्स आ के इंतज़ार कर रही हैं कि इन्हें पढ़ा जाएगा। उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, बबीता जी हैं, आइए उनसे पहले बात करते हैं। हेलो हेलो जी बबीता जी, थैंक यू आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपको सुन के तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है।
0: थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लिसनर्स की वजह से जो है रेडियो की पॉपुलैरिटी जो है ना?
1: मैं वो तो है, बट ये तो ठीक है, बट जो पॉपुलैरिटी है ना वो हमारे आरजे की वजह से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
1: इतनी जी बेहतरीन वॉइस
0: देखिए आरजेस का तो बबीता जी, देखिए हम लोगों की आवाज आप तक पहुंचती है इसलिए आप आरजेस को जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टेक्निकल स्टाफ वर्क कर रहा होता है, वो सामने कभी नहीं, मतलब उनकी आवाजें आप तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन पूरी प्रोडक्शन टीम होती है तो पूरी

0: बहुत बहुत सारे लोगों का योगदान होता है जब एक कार्यक्रम जो है वो श्रोताओं तक पहुंचता है ना। आप क्या करती हैं बबीता?
1: मैं फिलहाल अभी घर ही पे रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। फिलहाल अभी मैं 2 साल से घर ही पे हूँ।
0: अच्छा।
1: मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं घर का काम वगैरह करती हूँ।
0: अच्छा, और आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप रेडियो के माध्यम से?
1: मैं पहले एड्रेस ले लूँ अगर इजाजत हो तो।
0: जी जी बताइए।
1: मैम मैं बेली कला पोस्ट अठवारा गुस्साईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से बात कर रही
0: हूँ।
1: मेरा संदेश ये
0: जी बबीता,
1: मेरा संदेश ये रहेगा मैम, जैसे कि विकास सर, TSI विकास सर बताते रहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बस मैं बहुत लोगों को देखती हूँ रास्ते में जब क्रॉसिंग बंद होती है या फिर कहीं पुलिस चेकिंग लगी होती है वो तभी हेलमेट लगाते हैं, अदरवाइज वो हेलमेट ना अपने हाथ में रख के चलाते हैं, बाइक हो या स्कूटी हो।
0: उसको वो ब्रेसलेट की तरह पहन लेते हैं। हाँ
1: जी जी, तो मैम ऐसा ना करें क्योंकि जो हमारी सेफ्टी है, जो रूल रेगुलेशन है, वो हमारे हित के लिए ही बनाए गए हैं।
0: वेरी ट्रू।
1: तो मैम और मैम जो मैं अभी जा रही थी, एक हफ्ता हुआ है मैम हमारे चौराहे पे चेकिंग लगी थी। मैम मेरा ये है कि मैं 10-12 साल से स्कूटी चला रही हूँ लेकिन मैं कभी बिना हेलमेट की गाड़ी ही नहीं।
0: बहुत सुंदर बात है बबीता जी। और अक्सर देखने में आता है ना, लोगों को यही चिंता होती है कि मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। भाई जब सर रहेगा तो हेयर स्टाइल तो बना ही लोगे। हम लोगों का ये कहना होता है।
1: जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो हेयर स्टाइल का क्या ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा भाई सबसे पहले है। और क्योंकि वही है ना कि जैसे हमने बताया कि रेडियो में पूरा जैसे आकाशवाणी परिवार इन्वॉल्व होता है तब एक प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचता है, इसी तरह जो परिवार घर में बैठा है वो भी तो इंतजार कर रहा होता है ना, आपके साथ कितने लोग जुड़े होते हैं, सब इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया बबीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है बहुत जल्द फिर से बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: मैं मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई, मैं बहुत खुश हुआ। ये
0: Thank
1: दिन
0: you.
1: और तारीख मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगी। मैं एक लाइन बोल दूं बस?
0: जी बोलिए बोलिए।
1: सभी लिसनर, सभी लोग मेरी प्यारी राखी मैम को सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, बोले तो धड़कन
0: लखनऊ की। थैंक यू, थैंक यू बबीता। और ये थी प्यारी सी बबीता जी, और बहुत अच्छा संदेश भी दिया इन्होंने और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट भी करके गई हैं। जावेद अख्तर जी की ईमेल आई हुई है और ये लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग राखी मैम, संदेश आपके गीत हमारे में स्वागत करते हैं। इस बदलते हुए मौसम में अपना और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें क्योंकि अक्सर बच्चे बारिश और धूप में खेलते हैं और थोड़ी सी भी लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ी बन जाती है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से इन्होंने मेल किया है। शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन का भी इन्होंने नाम लिखकर ईमेल में भेजा है। बिल्कुल सही बात है, ये जब बारिश हो जाती है ना, जब हल्की गर्मी में बारिश हो जाती है तो बैक्टीरियाज और वायरस के पनपने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है, तो इसलिए ज़रूर अच्छा खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए और किसी भी तरह की सर्दी गर्मी के एक्सपोजर से अपने आप को बचा के रखिए। गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आया है। हेलो गुड मॉर्निंग राखी मैम, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से, मेरा संदेश यही है कि जो लड़कियां शादी के बाद अपने मायके में रहती हैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी कि अपनी ससुराल में रहना सीखें। मैंने देखा है कुछ लड़कियाँ क्या करती हैं, जैसे है उनके हस्बैंड कहीं बाहर कमाने जाते हैं, जैसे ही उनके हस्बैंड कहीं बाहर कमाने जाते हैं लड़कियां उसी दिन अपने मायके में चली आती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, अपने ससुराल वालों के साथ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और जब ससुराल वालों को आप ससुराल को अपना परिवार मानेंगी तभी भाई आपको भी वो परिवार का हिस्सा मानेंगे। अगर आप इस तरह पति के जाते ही ससुराल से एग्ज़िट ले लेंगी तो फिर जाहिर है कि वक्त लगता है रिश्ते प्रगाढ़ बनाने में। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है गुलफशा। राखी सुल्तान रजा लिख रहे हैं, राखी मैम 11 बजे मैंने मेल किया था, अभी तक शामिल तो हुआ नहीं है, कुछ मेल छोड़ दिए क्या? रुके मैं ज़रा पीछे जाकर के चेक करती हूँ कि कुछ मेल छूट गए हैं क्या। जी जी जी सुल्तान रजा जी, ये आ गया आपका मेल 11 बजे वाला, काफ़ी फूल वूल भेजे हैं आपने। और मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नज़र आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। कितनी सुंदर बात लिखी है आपने सुल्तान रजा जी, बरेली से लिखते हैं और आपने बहुत प्यारी बात लिखी है। और आपने जो ये बात कही है कि इतनी लंबी छुट्टी ना लिया करें तो इसका ध्यान दिया जाएगा और कोशिश करेंगे कि इतनी लंबी छुट्टी ना हो। सिद्धार्थ गोंदाने जी ने कई नाम लिखकर भेजे हैं।

लेकिन ये फरमाइशी गानों का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए आपके मेल तो शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम पढ़ दिया। फिर झग्गर राम साहू की तरफ से मेल आया है, नागर कोहरा ज़िला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, अध्यक्ष आराध्या साहू, आपने भी फरमाइश लिखकर भेजी है और ये फरमाइशी गानों का कार्यक्रम नहीं है। तो बाकी आपकी जो ईमेल्स हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक गाने का वक्त हो गया है। एक अच्छा सा गाना आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे। फ़िलहाल आपने अगर अभी आज ही सुनना शुरू किया है, जो कि थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है, लेकिन फिर भी, तो हम आपको बता दें कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो है fmakashwanilakhnow@gmail.com और हमारे दो टेलीफोन नंबर्स जिन पर आप हमसे बात कर सकते हैं वो है 0522-223-8852 और 0522-298-2377, यानी 0522-2238-852, 0522-2982-377। और ये गाना सुनिए, कितना प्यारा गाना है।

0: सादगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा,
3: जानो फिर मानो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा,
3: जानो फिर मानो।

0: 11:43 मिनट हो गए हैं और आइए कुछ ईमेल से शुरुआत करते हैं। हर बार हम फोन से शुरुआत कर रहे थे, इस बार ईमेल से शुरुआत करते हैं। तो भाई रामराज जी लिख रहे हैं, श्री गणेशाय नमो। संदेश आपके गीत हमारे जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु, रामचरण, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, मिर्जा, इमरान बेग, सबसे पहले हमारी तरफ आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुँचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के विनम्र धन्यवाद। हमारा संदेश है, सभी लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की सहायता करें, गरीब लोगों की ज़िंदगी सभी के सहारे है। धन्यवाद रामराज जी, आपने बातें तो बहुत अच्छी लिखी हैं। और ये जो बात आपने लिखी ना कि सबकी सब एक दूसरे का सहारा बने, तो सहारे की जगह अगर एक दूसरे के सहयोगी बने तो और भी अच्छा लगेगा ना, किसी को ऊंचा और नीचा नहीं फील होगा, है ना। फोन लाइन पर देखते हैं कौन है। हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: हेलो नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम जिला ग्राम पोस्ट रेडियो के पुराने श्रोता
0: शिवम। ओहो शिवम जी, बड़ा स्टाइल है आपका तो। क्या करते हैं आप?
1: जी, हम ब्लैंड है, किराने की दुकान चला रहे हैं।
0: किराने की दुकान भी चलाते हैं, अच्छा। तो तो अगर आप जैसे आप देख नहीं सकते हैं तो आप किराने की दुकान पे बैठते हैं, तो अगर मान ली तो आपका सहयोग कोई ना कोई करता है या आप अकेले मैनेज कर लेते हैं सब कुछ?
1: जी, हमारे फादर रखते हैं कहीं कहीं सहयोगी के।
0: हाँ हाँ,
1: और वैसे भी थोड़ा बहुत पैसों की पहचान हम कर लेते हैं।
0: अच्छा जी जी, तो संदेश क्या देना चाहेंगे आज आप शिवम?
1: आज दीदी जी संदेश देना चाहेंगे, एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाए जी, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। और
0: जी
1: पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करें ताकि
0: पशुओं को भी सुरक्षित। बिल्कुल, ये आपने बहुत दोनों ही बातें बहुत अच्छी की हैं और दोनों ही बातें ऐसी हैं जो प्रकृति से हमें जोड़ के रखती हैं, है ना। तो ये है कि भाई अगर आप प्रकृति से जुड़ कर रहना चाहते हैं तो आपको वृक्ष भी लगाने, पौधे लगाने चाहिए और वृक्ष बनने तक उनकी देखभाल करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जो हमारे कम्युनिटी एनिमल्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए कुछ दाना पानी का जुगाड़ का इंतज़ाम करके रखें हमेशा। हेलो
2: हेलो
0: जी, कौन बोल रही हैं?
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दें अपना मोहतरमा।
2: सीतापुर मस्जिद के पास है, शमा परवीन।
0: ओहो शमा परवीन, मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ, ऐसा लगता है कि दो खूबसूरत महिलाओं से बात हो रही है, एक शमा एक परवीन।
2: तो मेरा पूरा नाम है शमा
0: परवीन, बहुत प्यारा नाम है। शमा, क्या कहना चाहेंगे आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को, क्या संदेश देंगे? हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। अब अपनी तारीफ करेंगे ज्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
2: लखनऊ का मौसम कैसा है?
0: लखनऊ में सुबह देखिए, जब मैं आई हूँ 8 बजे

0: मतलब 7 बजे पहुंची थी 8 बजे के कार्यक्रम के लिए, उस वक्त तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, तो कुछ इलाकों में बारिश नहीं भी हुई।
1: हो रही है मैम, बहुत अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है मैम। आइए आपको गरम गरम चाय पिलाएंगे, चाय की चुस्कियों के साथ गरम गरम पकौड़े खिलाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने ये जो सुंदर सा निमंत्रण है इसके लिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, कभी मिलेंगे आपसे जरूर शमा।
1: चाय और पकौड़े का हम भी मजा ले रहे हैं, बरसात का भी मजा ले रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप खूब एंजॉय कीजिए।
1: और नहीं आती है, हम आपका इंतजार करते हैं, क्योंकि पहली बार लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो ना लास्ट टाइम तक मैम
0: जी,
1: क्योंकि हमारे
0: आपकी आवाज थोड़ी
1: बीच बीच में हुई तो बात, लेकिन पहली बार हमारा एफएम रेनबो पे फोन लगा था और आपसे बात हुई थी।
0: हाँ, मुझे याद है,
1: भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्यार से बात आप लोग करती हैं मैम, ऐसा लगता है हमारी और आपकी बचपन की दोस्ती है।
0: हाँ वो तो है ही ना, क्योंकि रेडियो तो आपको याद से थोड़ी सुन रही होंगी।
1: वो तो बात सही, आज से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक साल होने वाला है तब से सुन रहे हैं। और पर बात करके तो ऐसा लगता है कि हमारी और सभी आरजे की इतनी अच्छी दोस्ती बचपन की दोस्ती। तो आप लोग बात करते
0: जी
1: हैं।
0: जी आप हैं भी बहुत प्यारी, और अभी कोई अगर संदेश देना चाहती हैं आप हमारे लिसनर्स को, तो वो भी आप बताएं कि क्या संदेश देना चाहती हैं।
1: संदेश हम ये देना चाहते हैं, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, बारिश में ज्यादा नहाए ना, वरना जुकाम भी हो सकता है और सर दर्द बुखार भी हो सकता है, तबीयत खराब हो जाएगी। नहाए पर उतना ना नहाए जितनी तबीयत खराब हो जाए।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा,
1: पानी बहुत
0: नुकसान करता है जी। और बहुत बहुत शुक्रिया शमा परवीन कॉल करने के लिए। बहुत
1: अपने थोड़ा कुछ दोस्तों के नाम ले लें,
0: जल्दी से लीजिए।
1: गुलाब साप्पी, साहब अंसारी, शाजी अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम और मोहम्मद आसिफ भाई, वकील अहमद भाई।
0: ठीक है, तो सब लोग को बुला, अब निमंत्रण चला गया है, ये जितने लोग सुन रहे हैं जिनका जिनका इन्होंने नाम लिया है ये सब पहुंच जाएं, वहां चाय पकौड़े का इंतजाम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं प्रोग्राम, और आपका ये मैसेज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ईमेल दूसरी बार खुल जाती है। महेंद्र देपन जी का आया है मैसेज, रूण ज़िला नागौर राजस्थान से हैं ये, और सबसे पहले नमस्कार करते हैं, और एक बहुत अच्छा सा इन्होंने कार्ड बनाकर भेजा है। आरजे राखी मैम एवं श्रोता मित्रों को, बारिश का मौसम आया है, रफ्तार पर ज़रा काबू पाओ, और एक मोटरसाइकिल बनी है बहुत स्टाइलिश सी, सड़कें हैं गीले मेरे भाई, बाइक हमेशा धीरे चलाओ, अचानक ब्रेक से गाड़ी फिसलती है, सुरक्षित सफ़र का फ़र्ज निभाओ। बहुत सुंदर बात आपने कही, और विशेष यादें प्यारे भाई बहन सुल्तान रज़ा भाई, बाबू भाई अंसारी जी, रोशनी रावत दीदी और बबीता राव दीदी के लिए इन्होंने भेजा है, बहुत सुंदर सा कार्ड बना के। और बहुत सुंदर सा संदेश है कि जब बारिश हो रही हो तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि नेचर के आगे देखिए किसी की नहीं चलती, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है। वारिस अली खान जी लिख रहे हैं, आवाज़ की दुनिया के प्यारे दोस्त राखी को खान परिवार का प्यार भरा सलाम अर्ज है। हमारे देश में राजनीति का ज्ञान देने वाले 5 विश्वविद्यालय हैं, पान की दुकान जहाँ बाल कटवाते हैं वो दुकान, और जो देखिए कुछ चीज़ें आपने ऐसी लिख दी हैं जो हम पढ़ नहीं सकते हैं ना, ट्रेन का जनरल डिब्बा लिखा है इन्होंने, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो आप किसी के साथ भले ही ना चलें, लेकिन उसको उसके साथ चाल ना चलें, ये बात आपने बहुत सुंदर लिखी है। और जहाँ भी लोग एकत्रित होते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, कहीं पार्क में आप घूमने जाएंगे तो देखेंगे कुछ लोग चेयर्स पे बैठ जाते हैं आराम से, या मुंडेर कोई बनी हो उस पे बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पर पूरा देश की राजनीति की चर्चा होती है, और ये सब बताया जाता है कि देश में क्या क्या ख़राब हो रहा है, क्या क्या सुधार किस प्रकार से लाया जा सकता है। सेम होता है आप ट्रेन में, जैसा कि उन्होंने बताया, तो ये चीज़ें तो एक अच्छी फलती फूलती सोसाइटी का बहुत अच्छा सुंदर चरित्र है। एम के राज लखीमपुर खीरी से लिख रहे हैं, नमस्कार आरजे जी, मैं मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरौवा ज़िला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। मज़दूर की आवाज़ बनकर हर दिल में धड़कते हो तुम, आपकी आवाज़ से सुबह खिल जाती है वो भंवरा हो तुम। कार्यक्रम संदेश हमारे गीत आपके के माध्यम से विनती है, हर हफ्ते हर दिन श्रोताओं को उपयोगी जानकारी दी जाए, जैसे ट्रैफिक अपडेट तो आपको मिलती है, मौसम विज्ञान वैज्ञानिक दानिश जी भी आपको मौसम का हाल बताते हैं। तो ये तो विनती आप किससे कर रहे हैं मैं समझ नहीं पाई, लेकिन श्रोताओं को उपयोगी जानकारी लगातार एफएम

रेनबो के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मिलती है, और साथ ही साथ होता है आपका एंटरटेनमेंट, जैसे कि अब ये जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं ये खास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए 100.7 FM रेनबो पर।

0: देखते ही देखते 11:55 हो गए हैं और बस एक कॉल लेने की कोशिश करते हैं कि शायद बात हो जाए, लेकिन ये ईमेल जो है इसको पढ़ लेते हैं पहले। नमस्ते राखी मैम, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा आज संदेश यह है कि किसी के काम को किसी की कॉपी ना करें, बल्कि अपना कुछ अलग करने का जज्बा होना चाहिए। मैं रेडियो दोस्त के नाम शामिल कर लीजिए, महेंद्र दीपन, कुलदीप गुप्ता, फैज़ गौश, मोहम्मद अंसारी। वैसे देखा जाए तो शिल्पी जी आ गई हैं और हमें लुक्स दे रही हैं ये कि इनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है। शत्रुपा लेकर आई हो?
1: जी शत्रुपा लेकर आए।
0: तो इतनी सुंदर क्यों दिख रही हो?
1: अब आप जब आती हैं हाँ, तो जो दूसरा होता है वो आपको देखो उसकी खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है।
0: कंपटीशन कर रही है। 11:56 हो गए तो शिल्पी को हम अब हैंडओवर करते हैं स्टूडियो, और आपने जितने मेल्स भेजे, जितने फोन कॉल्स किए, उस सबके लिए शुक्रिया। अपनी सखी राखी को फिलहाल संदेश आपके गीत हमारे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, फिर होगी जल्द मुलाकात। सुनते रहिए 107.7 FM रेनबो, क्योंकि यही है धड़कन लखनऊ की। और एक बहुत ही सुंदर से प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़ के जाते हैं।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनायो ताकायुची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता करेंगे। ये सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करेगा। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकायुची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकायुची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का औपचारिक रूप से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जनपद से ऑनलाइन सम्मिलित हुए। बीबीजी रामजी गारंटी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। सरकार ने बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पारिश्रमिक की संशोधित दरें भी अधिसूचित की हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 दिन की यह वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। अमरोहा में जून माह में पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 11,405 चालान किए गए और 55 वाहनों के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित वाहन चलाएं, नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपना योगदान दें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
5: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
6: शत्रुपा से माँ जी।
7: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
6: शत्रुपा से।
8: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
6: शत्रुपा से।
9: हमारी होममेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
10: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
11: हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? एंड आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मौसम ने करवट ली है। ये जो हल्की हल्की बारिश हुई ना, इससे कहते हैं जो मौसम होता है उसका मूड पर बहुत असर होता है। एंड आई होप कि आप सबका मूड खूब अच्छा होगा। एंड अच्छे मौसम, अच्छे बारिश की हम उम्मीद कर रहे हैं कि खूब बारिश हो, खूब मज़े हों, और साथ ही अपना आपको ख़ास ध्यान रखना, ये भी आप जानते हैं। और आज का दिन आप जानते हैं क्यों ख़ास होता है, क्योंकि भाई आज हम इंटीरियर की बात करते हैं, घर को सजाने की बात करते हैं। और घर सजा हुआ सुंदर किसे नहीं लगता, सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। शिल्पी आ चुकी है आज आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर, और आज हम खास बातें करेंगे। खास बातें इसलिए क्योंकि मैंने बारिश की बात की, और बारिश इंटरकनेक्ट होती है पेड़ पौधों से, यानी कि बारिश में जब पेड़ों पर पानी की फुहारें पड़ती हैं तो वो और खिलखिलाते और खुश होते नज़र आते, जैसे लगता है उन्हें इसकी कब से ज़रूरत थी। और हम भी इन खिलखिलाते हंसते हुए चेहरों को देख कर, यानी पौधों को देख कर, अपने को बहुत तरोताज़ा फील करते हैं। वेल, तरोताज़ा तो हम तब भी फील करते हैं जब हम खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय करते हैं, और वो आप एंजॉय करते हैं 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। तो सुनते रहिए आज का शत्रुपा मेरे साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: वेल, हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैंने बता दिया। अब हम सब ये जानते हैं कि जो पेड़ होते हैं यानी जो ट्रीज़ हैं, वो हमारे लाइफ का बेस हैं यानी ज़िंदगी का आधार हैं ये पेड़ पौधे, और इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। तो क्यों ना हम अपने घर को इनसे सजाएं। वेल, जब भी हम जाते हैं पेड़ पौधे लेने के लिए तो मन करता हर पौधा खरीद लो, लेकिन जब पौधों से घर की सजावट की बात हो तो शुरुआत आपको छोटे स्तर से करनी चाहिए। कुछ आसानी से उगने वाले पौधे खरीदिए जिनकी बहुत ज़्यादा देखभाल अभी आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। तो कुछ ऐसे पौधे करिए जिन्हें कम खरीद करके और कम देखभाल करके आप अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं। तो वो कौन से पौधे हैं जिन्हें आप खरीदिए और अपने घर को एक डिफरेंट लुक दीजिए, ये सब आज हम जानेंगे। और

आपसे ढेर सारी बातें करेंगे. साथ ही आप भी हमें बताइए कि आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए किस तरह के पौधों का यूज़ करती हैं, किस तरह आपने अपने घरों को पेड़ पौधों से सजाया है, ये आप हमें बताइए. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सुबह का समय होता है और हमें आसपास ग्रीनरी दिखे तो मन बिल्कुल ग्लैड हो जाता है, मन खुश हो जाता है, मन करता है बस इन्हीं के पास बैठे. कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि ये हमसे बातें कर रहे हैं. हम बैठते हैं और हल्की सी हवा चलती, जब ये झूमते हैं, पत्तियाँ हिलती हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं ये हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भी लाइफ होती है, इनमें भी शायद फीलिंग्स होती हैं. तो चलिए, बातों का सिलसिला तो यूं ही रहेगा जारी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए. एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.

जी हाँ, दिल और धड़कन का रिश्ता हो जाता है जब आप पेड़ पौधों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। वेल, अगर हम डिफरेंट लुक चाहते हैं, यानी घर में सजावट का डिफरेंट लुक चाहते हैं, तो अलग अलग तरह के गमलों में ढेर सारे छोटे छोटे पौधे आप लगा लीजिए। रंग और बनाव

पॉट में जितनी वैरायटी होगी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए पत्तीदार और बेलदार पौधे, फूल और घरेलू पौधे और कैक्टस जैसे पौधे लगाइए। पौधों को भी घर में सजावट की तरह आपको यूज़ करना है, यानी डेकोरेटिव आइटम्स की तरह ही इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि ये घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और आपका घर कह उठता है वाह क्या बात है।

दोस्तों, आप से अगर कोई कहे कि बाथरूम में आप कुछ पौधों को लगाइए तो आपको लगेगा ये कैसे भाई। तो हम आपको बताते हैं कि बाथरूम में भी आप पौधे लगा सकते हैं, और उन पौधों को लगाइए जिन्हें अधिक नमी पसंद होती है, जैसे कि फर्न है, ऑर्किड है और पीस लिली है। इन जैसे पौधों को शावर से मिलने वाली जो नमी है उसमें ये खूब पनपते हैं। यही नहीं, आप अपनी डेस्कटॉप या फिर बुक शेल्फ या आपकी डाइनिंग टेबल, इन सब पर एयर प्लांट्स ज़रूर आजमाइए। इन्हें हफ्ते में एक बार वाटर स्प्रे करना पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: नब्बे वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
5: विश्वास और संस्कृति की अनमोल धरोहर
4: आकाशवाणी।
6: अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ के प्रथम समाचार वाचक।
7: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के लिए यज्ञदेव पंडित की हार्दिक बधाई।
8: Tune to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: वैसे दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम क्षेत्रों पर शिल्पी के साथ। 12:31 हो गए हैं, आज 2 जुलाई है और कल 3 जुलाई है। अब आप सोच रहे हैं भाई इसमें क्या खास बात है। बात खास इसलिए है कि कल 3 जुलाई को हम मनाएंगे इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। तो भाई हम सब जानते हैं कि कागज़ या कपड़े का बैग ज़्यादा सही रहता है बनिस्बत इस पे कि आप हर जगह पॉलीथीन का बैग ले जाएं। यानी पॉलीथीन का जितना कम से कम आप यूज़ कीजिए वो बेटर रहेगा, हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी, हमारे लिए भी, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए।

0: भी। और अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती हैं पॉली बैग्स में, और हम उनको यूज़ करके फिर फेंक देते हैं, जिससे कि वो रीयूज़ नहीं हो पाती हैं और ऐसी चीज़ें रिसाइकिल भी नहीं होती हैं। तो क्यों ना इन चीज़ों का अगर कुछ बेहतर इस्तेमाल हो जाए तो कितना अच्छा हो। यानी घर की सजावट में इन फिजूल पड़ी चीज़ों से, जिनका जो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से भी नहीं अच्छे, अगर कुछ बढ़िया से यूज़ हो जाए तो कितना बेहतर रहेगा। तो कुछ टिप्स अगर हमको मिल जाए तो क्या खूब। और इसी बात को जारी रखने के लिए, यानी भाई किस तरह आप अपने वेस्ट आइटम्स को बहुत अच्छा यूज़ करके घर को सजा सकते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ हैं दीप्ति साहू। तो दीप्ति से हम जानेंगे कुछ टिप्स। दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम शतरूपा में।
1: थैंक यू शिल्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें एफएम रेनबो में आमंत्रित करने के लिए। और
0: जी दीप्ति, ये बताइए। जी जी बताइए।
1: जी, अभी जैसा कि हमने सुना, आपने बताया कि पॉलिथीन का इस्तेमाल हम सब्जियां लाने, फल लाने, सब चीजों में करते ही हैं,
0: जी
1: जरूरत होती है हम लोगों को लाने के लिए। लेकिन जब हम उन्हें अपने घर लाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी इतनी सी बढ़ जाती है कि हम उनका मतलब सही इस्तेमाल कर सकें।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि पॉलिथीन को हम इकट्ठा करें, कलरफुल पॉलिथीन आपके पास अगर इकट्ठा हो जाती है
0: जी
1: तो आप उनको साफ कर लें। पहली बात तो जो भी इसमें गंदगी लगी है आप उसको साफ कर लें, साफ
0: जी
1: करके सुखा लें उन्हें,
0: जी जी
1: और उन पॉलिथीन को इकट्ठा करके आप चौकोर कट कर लें। आप एक मार्क बना लीजिए 5 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर, जितना बड़ा आप चाहते हैं। एक्चुअली हम बताने जा रहे हैं आपको कि आप उन पॉलिथीन का इस्तेमाल फ्लावर बनाने में कैसे कर सकते हैं, फूल
0: फ्लावर
1: बनाने
0: बनाने में, यानी उन जो पॉलीथीन आप लाते हैं
1: में।
0: डिफरेंट कलर्स की, उनको आप बहुत सुंदर फ्लावर्स उससे बना सकती हैं।
1: बिल्कुल बना सकती हैं आप, बस थोड़ी सी मेहनत है, इवन थोड़ी सी भी नहीं, बहुत थोड़ी सी मेहनत है।
0: जी
1: आप उन वही सुखा लीजिए, उन्हें साफ कर लीजिए और उन्हें आप स्क्वायर में कट कर लीजिए।
0: ठीक
1: फिर 5-6 स्क्वायर्स को लेकर के आप उनको बीच से एक छोटी से धागे से बांध दीजिए,
0: जी
1: ठीक है। और बांधने के बाद देखिए कि सारी जो पत्तियां हैं आपकी वो बनने लगेंगी।
0: जी
1: अभी क्या करेंगे आप उन पत्तियों को एक पेन से या पेंसिल से लेकर के उन सारी पत्तियों को धीरे धीरे से प्रेशर करके आप जब उठाएंगे ना तो देखते हैं ना, ये जैसे फूल होता है
0: जी
1: हमारा,
0: जी
1: सारी
0: जी
1: पत्तियां खुली होती है, तो वो पूरी पत्तियां वैसे ही खिल जाएंगी और आपका एक कलरफुल फ्लावर तैयार हो जाएगा। तो
0: जी
1: आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बहुत
1: जी
0: खूबसूरत आपने तरीका बताया कि किस तरह ये जो पॉलीथिन होती है डिफरेंट कलर्स की, इनको आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। दीप्ति, आपने अक्सर देखा होगा कि घर पर पानी की बॉटल्स या तरह तरह की बॉटल्स आती हैं प्लास्टिक की, उन्हें हम यूज़ करते हैं और बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि बाहर कचरा तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारे एटमोसफेयर के लिए भी
1: बिल्कुल
0: कितनी हानिकारक है आप जानती हैं। तो आप बताइए कि उन बॉटल्स का क्या बढ़िया यूज़ हो सकता है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि बॉटल्स का आप इतना सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों का सीजन है, आप कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, बाहर पानी पीते हैं, ठंडा पानी चाहिए ही होता है, तो इस तरह आपके पास बहुत सारी बॉटल कलेक्ट हो जाती है।
0: जी
1: तो आपके अगर पास छोटी बॉटल है तो आप उसको आसानी से वॉश करके उसका जो रैपर होता है उसको कट कर लीजिए,
0: जी
1: और उस पर आप एक्रेलिक कलर, फैब्रिक कलर से मनचाही डिजाइन्स बनाइए। हम तो बच्चों को अक्सर कहते हैं कि आप अपने जो लाफिंग इमोजीज होती है, कितनी क्या क्यूट होती है, प्यारी सी
0: बिल्कुल।
1: होती है, आप उनको बनाइए, उस बनाइए बढ़िया से, और उसके अंदर आप पानी फिल कर दीजिए, और जो मनी प्लांट का पौधा होता है
0: जी
1: वो
0: जी
1: पानी में ग्रोथ कट करती है, आराम से उसकी ग्रोथ होती है, तो आप उसको लगाइए उसके अंदर और आपका एक छोटा सा पौधा तैयार हो जाता है। आप जब
0: जी
1: गार्डन
0: हाँ,
1: में रखती है तो
0: और इसे
1: अपने
0: हम
1: रूम में
0: कहीं टांग भी
1: रखती
0: सकते हैं, क्यों दीप्ति? ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं टांग दे, जैसे दो बॉटल्स एक तरह की हमने
1: बिल्कुल
0: इसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल उसमें अभी आते हैं कि आप दो होल्स कर लीजिए अपनी बॉटल में
0: जी
1: इक्वल साइज पे, और उनको एक किसी डोरी से या सूत की जूट की डोरी आती है आप उससे बांध दीजिए और कहीं पर भी हैंग कर लीजिए। कितना प्यारा, मतलब बहुत अच्छा लगता है
0: जी
1: वो।
0: बिल्कुल, मैं तो सुन के बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। और अब ये मैं जानना चाहती हूँ दीप्ति आपसे कि अगर ये जो पेन होते हैं, बच्चे बहुत सारे यूज़ करते हैं, थ्रो करते हैं, और घर पे पेनों का अंबार लग जाता है, पेंसिल्स भी कभी कभी छोटी छोटी पड़ी रहती हैं, उनको भी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं कि क्या करें इन सब चीज़ों का, क्योंकि उनको फेंकते भी नहीं बनता, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि हमें बिल्कुल। तो इनका क्या
1: तो
0: यूज़ किया जा
1: ऐसे में
0: सकता है, थोड़ा सा दीप्ति ये बताइए।
1: हाँ देखिए, ऐसे में आप क्या कीजिए, जो आपके पास बॉटल्स हैं है
0: जी
1: ना, बॉटल्स का क्या करिए कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कट कर दीजिए, जो
0: जी
1: थोड़ा सा स्लोप होता है ना उतना हिस्सा आप कट कर दीजिए।
0: जी
1: उसके बाद आपके पास जो अखबार आता है ना, अखबार को ले लीजिए कुछ स्क्वायर्स में, उनको
0: जी
1: आप रोल करिए, रोल करके उस जो कट आपने किया है बोतल का उसके ऊपर थोड़ा सा फेविकोल लगाइए अप्लाई
0: जी
1: करके, जो आपने रोल करके बनाई है अखबार की चीजें वो उनपे आप लाइन से स्टिक कर दीजिए बारी बारी।
0: जी जी
1: जब
0: जी
1: वो सूख जाए तो उस पर आप मनचाहा कलर कर लीजिए, जो भी आप कलर चाहती हैं आप, अगर
0: जी
1: आप चाहती हैं कि ग्लिटर

0: लगा दें, या आपके पास पुराने बटन पड़े होते हैं
1: हाँ
0: आप उन
1: हाँ हाँ हाँ
0: बटन्स
1: बहुत
0: को
1: सारे
0: लगा
1: बहुत
0: दीजिए,
1: सारे।
0: बहुत सारे बटन्स होते हैं आप उनको लगा दीजिए, या फिर कभी कोई भी डेकोरेटिव सामान होता है एक्स्ट्रा बच जाता है आपके पास रखा होता है आप
1: जी
0: उनको लगा दीजिए, ग्लिटर शीट्स होती हैं उनके फ्लावर बना लीजिए, उनको ठीक कर दीजिए, वो एक आपका एक कटलरी सेट एक पेन स्टैंड ऐसा बन जाता है, आप जो भी आपके एक्स्ट्रा पेन होते हैं पेंसिल्स होती हैं आप उसमें उनको इकट्ठा करके रख सकते हैं,
1: जी
0: इधर
1: जी
0: उधर रखने से अच्छा कि आप उनमें रख लीजिए, तो आपका एक बॉटल से पेन स्टैंड अच्छा सा बन सकता है, फ्लावर वाइज वास बना सकती हैं आप, है ना, एक
1: जी
0: पिगी बैंक बना सकती है उस
1: अरे
0: बॉटल
1: वाह।
0: से, बहुत होता है पिगी बैंक, क्या है कि बच्चे अपना आराम से जो भी कॉइन्स वगैरह होते हैं उसमें इकट्ठा करें, और उसके लिए कुछ खास नहीं करना है, आप मम्मी या पापा की हेल्प लीजिए, आप बच्चों से हम यही कहेंगे कि आप खुद से करिए, बॉटल लीजिए और उसमें इतना बड़ा कट बनाइए कि उसमें आप अपना कॉइन या आपका जो नोट है आप उसमें रख सकें
1: जी
0: आसानी
1: जी
0: से,
1: जी
0: और उस बॉटल को बढ़िया से कलर भी कर लीजिए, आपका पिगी बैंक तैयार हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे आपने हमें टिप्स बताए दीप्ति, कि किस तरह हम इन वेस्ट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, यानी रीयूज़ कर सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और आज आपको बता दूं कि शत्रुपा में हम इंटीरियर की बात करें, यानी घर को हम कैसे सजा सकते हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन बेकार पड़ी चीज़ों को ही कुछ ऐसा यूज़ किया जाए कि जिससे कि वो खूबसूरत भी लगे और हमारा एटमोसफियर को भी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो थैंक यू सो मच दीप्ति, आपने हमसे बात करी और इतनी अच्छी सारी टिप्स हमसे शेयर करी, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक
1: तो भाई ये तो थी दीप्ति जिन्होंने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतने अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करे, एंड आई होप आपको भी ये टिप्स यूज़फुल लगे होंगे और आप भी इन टिप्स को ज़रूर अप्लाई करेंगे। वैसे आप क्रिएटिव बहुत हैं, इनमें आप अपनी क्रिएटिविटी मिक्स कर सकते हैं और अपने घर को और खूबसूरती से सजा सकते हैं, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम बिना गानों के नहीं सजा लगता है ना। तो भाई एक बढ़िया सा गाना आपके लिए, सुनते रहिए प्रोग्राम शत्रुपा 107 FM रेनबो पर आज शिल्पी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: यू आर लिस्निंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
4: अभी 12:45 हो गए, तेजी से बढ़ता समय कोई नहीं रोक पाया है, लेकिन हाँ जो समय हमारे पास है उसमें हम कुछ यूजफुल बातें करते हैं तो वो उस समय की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और हमारे टाइम का बेस्ट यूटिलाइज होता है। वेल दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से आप ये जो प्लास्टिक्स हैं इनको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं सजावट में घर के, या फिर अगर आपकी कुछ और क्रिएटिविटी तो आप बताइए, आप हमें बताइए कि आप किस तरह से इन बेस्ट जो बेकार की चीज़ें घर में पड़े रहते हैं उनका बेस्ट यूज़ करते हैं। आप हमें कहाँ बताएंगे, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमें बताइए कि किस तरह आप अपने घर को डेकोरेट करने में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी भी हम शेयर करना चाहेंगे तमाम लिसनर्स के साथ, 100.7 FM रेनबो के साथ। तो बस यूँ ही सुनते रहिए इस खूबसूरत से म्यूज़िकल सफ़र को, आज शिल्पी के साथ।

वाली वादियों को हसीन रखने का आपका पूरा कर्तव्य है, यानी इस माहौल को, इस देश को, इस धरती को सुंदर आप और हम मिलकर बना सकते हैं, और इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी चाहिए। फिलहाल 12:55 हो गए हैं, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, तो बस शिल्पी इजाज़त ले रही है प्रोग्राम शत्रुपा से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मैं रहूँगी आपके साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी का औपचारिक रूप से राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जनपद से ऑनलाइन सम्मिलित हुए। वीबीजी रामजी गारंटी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों के गारंटीकृत श्रम रोजगार का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। सरकार ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पारिश्रमिक की संशोधित दरें भी अधिसूचित की हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कड़ी चौकसी के बीच यूपीटीईटी 2026 परीक्षा सुचारू रूप से जारी है। आयोग ने परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ये परीक्षा 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। ये 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। लखनऊ, उन्नाव, फरुखाबाद, अमरोहा सहित प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस प्रशासन के अधिकारी परीक्षाओं के कुशल संचालन के लिए परीक्षा केंद्र पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेश में हो रही यूपीटीईटी परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 1,000 बसों का संचालन कर रहा है। निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए नियंत्रण कक्ष से व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। किसी भी समस्या के समाधान हेतु कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8726005808 पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को प्रभावित करने लगा है। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत मिल

भी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। अयोध्या में रौनाही थाना क्षेत्र में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर एक खड़े ट्रक में 4 पहिया वाहन के टकरा जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों का इलाज जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वाहन सवार लखनऊ से सिद्धार्थनगर जा रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा।
2: जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: वायदे के मुताबिक आ चुके हैं शिल्पी एक बार फिर आपके लिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम होटो पे तेरी बात लेकर। होटो पे तेरी बात वो प्रोग्राम जिसमें कि हम आपको कोई टॉपिक देते हैं और आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं, बिंदास खुली, जो भी आपके मन में हो सच सच बताइए। और आज मैं सोच रही थी क्या बात करूं आपसे, बहुत दिमाग लगाया, तब मैंने सोचा अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी अपनों से नाराज़ हो जाते हैं, चाहे दोस्ती हो चाहे घर में कुछ लोग हों, और नाराज़गी में कभी कभी ये रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं, यानी कि हम नाराज़ होकर बात ही नहीं करते और सामने वाला सोचता वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, या वो भी नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ। तो क्या आप जब किसी से नाराज़ होते हैं तो ऐसे ही तनातनी रहती है और आप लोगों की बातचीत कम्प्लीटली बंद हो जाती है, यानी छोटी सी बात एक तरह से आप लोग का रिश्ता ख़त्म कर देती है, तो या फिर आप खुद पहल करते हैं और बातचीत करते हैं और उस मसले को वहीं सुलझा देते हैं और ज़िंदगी में खूबसूरती से आगे बढ़ते हैं। तो आपका दिल क्या कहता है ये आप हमें बताइए। आपको मालूम है कहाँ भेजना है आपको हमें मेल, fmakashvanilakhnu@gmail.com पर, और इंजॉय कीजिए म्यूजिकल सफर कुछ अपनी खूबसूरत, हमारी खूबसूरत बातों के साथ। आप लोग के मन में जो भी है वो बिल्कुल हमें खुल के बताइएगा। फिलहाल आप ये गाना एंजॉय कीजिए और उसके बाद होंगी इलाकाई खबरें और उसके बाद जारी रहेगा होठों पे तेरी बात का ये खूबसूरत सा सफर शिल्पी के साथ।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: और अब से कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें, तो बस सुनते रहिए 100.7 FM Rainbow.
2: पानी लखनऊ है. इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी. देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले से मुल्क गिर विकसित भारत रोजगार और रोजी रोटी मिशन देही VBG रामजी का बाज़ाब्ता आगाज़ किया. रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज ज़िले से ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए. VBG रामजी गारंटी एक्ट 2025 कल से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है. इस एक्ट के तहत अहल दही कुनबों को अब 125 दिन की ज़मानत शुदा उजरत मुलाजमत का कानूनी हक मिलेगा. हुकूमत ने VBG रामजी एक्ट 2025 के तहत तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए मुआवजे की नज़रसानी शुदा शरहों का भी नोटिफिकेशन जारी किया है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकज़ी काबीना ने कल उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराह नंबर 34 के तकरीबन 118 किलोमीटर तवील एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को मंजूरी दे दी. काबीना के फैसले पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत 7,145 करोड़ रुपये होगी. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये अहम प्रोजेक्ट PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को बग़ैर किसी रुकावट के राबता फराहम करेगा. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा. तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर

इलाकाई खबरों के बाद उगर फिर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में। शिल्पी आपके साथ है और मेरे साथ हैं आपके मेल। सबने पूछा था आपसे कि जब आप गुस्सा हो जाते हैं किसी से भी, कोई अपना हो, आपका कोई दोस्त हो, या फिर घर में कोई हो, रिश्तेदारी में कोई हो, तो क्या आप उससे बोलचाल बंद कर देते हैं, फिर कभी बोलचाल नहीं करते, यानी शुरुआत नहीं करते? आपको लगता है मैं क्यों करूं और मेरी गलती नहीं है, और ऐसा होते होते लंबे समय तक जब बोलचाल बंद रहती है तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वो रिश्ते जो कभी बहुत ही लोग मिसाल देते थे कि भाई इनकी दोस्ती देखो या इनका आना जाना कितना है, लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, अब आप एक दूसरे से बात भी नहीं करते। आप क्या करते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपके दिल को लग जाती है? हमने आपसे जानना चाहता और मेरे पास मेल आगे गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आ गया। गुड आफ्टरनून शिल्पी मैम। सो गुड आफ्टरनून गुलफशा, लिख रही हैं

संडीला से, लेकिन मैं रिश्ते तो खत्म नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है। चलिए गुलफ़्शा, आज पता चला कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो भैया जो भी आप कहें वो बिल्कुल सराखों पर रखने वाली बात है वरना पता चला कल को आप हमें मेल करना बंद कर दीजिए गुस्से के मारे लिख रही हैं, और कोई भी बात मैं भूलती नहीं हूँ, मैं एक बार किसी से बोलना बंद करती हूँ तो मैं उससे पहले कभी भी नहीं बोलती हूँ, यानी पहल ये नहीं करती हैं, और अगर वो बोलता है तो बोल भी देती हूँ। वैसे मैम मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, सबसे हंस कर बात करती हूँ, तो बहुत कम लोग होते होंगे जो आपसे नाराज़ होते होंगे, और भाई गुलफ़्शा को नाराज़ मत कीजिए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रामपुर से चंदर तुरेहा लिख रहे हैं, कोई नाराज़ होता है तो हम उसको चाय बना देते हैं। वाह वाह क्या बात है। हाँ कहते हैं चाय ऐसी चीज़ होती है जो कभी कभी टूटे रिश्तों को भी जोड़ देती है, ऐसा मैंने भी सुना है। सुल्तान रज़ा साहब आ गए हैं और इन्होंने सब जानते हैं कि कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हमें मेल किया है। सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। और सुल्तान रज़ा जी अगर आप कुछ लिखा है उन्होंने, कभी तो हंस लो इन दांतों से खिल कर, बुढ़ापे में दुख ही देंगी ये हिल कर। यानी ये कह रहे हैं हंसने की बात, कि खुश रहिए मुस्कुराते रहिए। मेरे ख्याल से आपका मैसेज यही है कि बहुत ज़्यादा ग्रजेस, बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक सो। हाँ सुल्तान। सुधाकर जाधव जी लिख रहे हैं, प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में, कि हमको जब भी गुस्सा आता है तो हम अपने प्रोग्राम सुनते हैं रेनबो के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जो समाचार भी सुनते हैं वैसे गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, और टीवी के ऊपर के रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और गुस्सा कहीं दूर चला जाता है। यानी आपकी किसी से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी गुस्सा हो कुछ हो, आप बढ़िया आके गाने सुनते हैं, बढ़िया आके प्रोग्राम सुनते हैं, और जो भी बात होती है उसको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये है हमारे सुधाकर, राजीव जाधव, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश प्रणाली, सरवत, सानवी, हर्षदा, ये सब ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें मेल कर रहे हैं। अहमद नवाब जी का भी मेल आ गया है, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून आपने लिखा है, और आपने जो चीज़ें हमने मतलब इससे पहले प्रोग्राम में पूछी थी उससे रिलेटेड है, कोई इस प्रोग्राम से रिलेटेड बात हो तो ज़रूर बताइए आप हमें। और भी मेल्स आ रहे हैं। बबीता राव जी बेली कला गुसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से लिख रही हैं, मैम हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ओह थैंक यू सो मच, वॉइस और सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच बबीता जी। और गुड आफ्टरनून लिखा है तो गुड आफ्टरनून आपको भी, और लिखूँ कि सच कहूँ मैम तो बहुत कम ही लोगों से मैं गुस्सा होती हूँ। मैं सोचती हूँ यार छोटी सी तो ज़िंदगी है, क्या किसी से नाराज़ होना, क्या किसी को हर्ट करना, क्योंकि सब अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए मैं लोगों से, दोस्तों से, किसी से भी बहुत कम नाराज़ होती हूँ, और अगर होती हूँ तो बस एक दिन के लिए, कोई नहीं बोलता तो मैं खुद बोल लेती हूँ। और बबीता जी आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब खुद बोल देते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा होता है कि बबीता बात कर ले तो अच्छा है, तो हम लोग का जो रिश्ता है वो यूं ही मेंटेन रहेगा। और जैसे आपने लिखा है कुछ ही पलों की ज़िंदगी है, कुछ ही दिनों की ज़िंदगी है, तो फिर हम इसमें रूठना मनाना ऐसा क्यों करें। और हाँ अगर किसी से रूठ भी जाते हैं तो बस जैसे बबीता ने लिखा कि एक दिन के लिए रूठते हैं फिर कोई बात नहीं, बात आई गई हो जानी चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो, और अगर कोई बड़ी बात हो तो बड़ों के साथ बैठ कर उसको सुलझा लीजिए। फिलहाल सुलझाने का मौका हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आप हमसे बिल्कुल नाराज़ मत होइए क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आपके लिए गाने भी बजाएंगे, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक।

रोशनी रावा जी का मेल आ गया है गांव बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है मैम कैसी हैं आप 12 बजे से जुड़े हैं आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच रोशनी और लिख रही है मुझे तो सिंपल रहना पसंद है ना ज़्यादा किसी से कोई मतलब रहता है और ना ही ज़्यादा किसी से लगाव लेकिन मेरी दोस्त है उसके साथ मेरा सब कुछ चलता रहता है रूठना मनाना तो प्यार की ही एक अदा है और होता भी यही है जहाँ प्यार होता है वहाँ ही हक के साथ लड़ सकते हैं बाकी दुनिया में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है जी लेकिन एक चीज़ इन्होंने और भी लिखी है मुझे गुस्सा नहीं आता लेकिन जब आता है तो थोड़ा सा बात करना कम कर देते हैं हाँ जब गुस्सा आता है तो फिर बात करना कम ही कर देना चाहिए क्योंकि फिर फालतू में बात बहुत ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाती है क्या कहती हैं और हमारे पास मेल आ गया सतीश अनेजा जी का लिखा है कि शिल्पी जी नमस्कार खूबसूरत प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं थैंक यू सो मच दुनियादारी बातों में कभी किसी मित्र से या रिश्तेदार से गुस्सा भी हो जाए तो उसे स्थायी नहीं रखते बहुत जल्दी कोई ऐसी खुशनुमा बात कर देते हैं जिससे दोनों तरफ से गुस्सा भाग जाता है और उसके बाद प्यार और गहरा हो जाता है वैसे पहले नमकीन खा लें तो मीठा और ज़्यादा अच्छा लगता है और यही बात गुस्से और प्यार का एहसास होता है क्या बात है रामराज जी का मैसेज आ गया है होठों पे तेरी बात में जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु वासिल सच्चा रामचरण पप्पू पासी मनीष नीरज मधु मिर्जा इमरान बेग सबसे पहले नमस्कार

कर दिया है और लिखा है, हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हमारी गलती रहती है तो मैं खुद बोलता हूँ, और अगर गलती नहीं है तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। अब आप ये बताइए कितने सारे लोगों के नाम है, ये किसकी राय है? कोई एक हमें बताता कि ये उसकी राय है। एनीवेज, आपने हमसे बातें शेयर करी, अपनी राय शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों के मेल आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा गाना प्ले कर देते हैं और उसके बाद आपके मेल्स को शामिल करेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम होटो पे तेरी बात 100.7 FM रेडबो पर, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी भाई, 1:29, 44 सेकंड हो गए। जावेद अख्तर साहब का मेल आ गया, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, कार्यक्रम होटो पे तेरी बात बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और लिख रहे हैं जब मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं नजरअंदाज करके वहां से हट जाता हूं और कुछ गुनगुनाने लगता हूं। मुबारकपुर आजमगढ़ से शमसुल कुमार राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन के साथ जावेद अख्तर साहब का मैसेज है। ये भी चीज़ अच्छी कि उस चीज़ को वहां से इग्नोर करके अगर आप हट जाते हैं तो भी बातें थोड़ी सी सरल हो जाती है। वीरपाल सिंह जी, नमस्ते मैम, मैं किसी से नाराज होता हूँ तो क्या है, रेडियो सुनता हूँ और फिर सब कुछ भूल जाता हूँ, फिर बोलता हूँ, क्या बात है। यानी कि आप रेडियो सुनकर सब भूल जाते हैं उन बातों को जिस पर आपका कोई विवाद होता है और उसके बाद आप रेडियो सुनते हैं मज़े से, क्या बात है वीरपाल सिंह जी। और गीता सेठ जी, रेडियो मेरे आशिकी, रेडियो मेरी शान, आप आरजे जी को नमस्ते, राम राम। और अगर इसमें मैसेज भी आप गीता भेजते तो अच्छा लगता। अमन नवाब जी लिख रही हैं होठों पे तेरी बात में, कैसी हैं आप, और आप और आपकी आवाज़ दोनों बहुत प्यारी हैं अमन, आपकी तरह। अगर किसी पर मैं घर में गुस्सा होती हूँ तो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा रिश्ता उससे कैसा है। अगर रिश्ता ख़ास है, कोई मुझसे उम्र में बड़ा है, और अगर मेरी गलती है तो मैं आगे बढ़कर बोलती हूँ। एक बार की बात है, ये बात मैंने आपसे शेयर की भी थी शिल्पी दी, मुझे पता नहीं कि मैंने कौन सी गलती की थी, क्या हुआ, और मुझे ब्लॉक कर दिया था मेरी आप ही ने। बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही, और मैंने समझ लिया कि उन्हें रिश्ता ख़त्म करना है। और अगर मेरी इकलौती दोस्त से लड़ाई होती है तो वैसे भी डिशुम डिशुम वाली लड़ाई नहीं होती, बस कहाँ सुनी होती है, तो मैं झट से फ़ोन काट देती हूँ और फिर 1-2 दिन सन्नाटा रहता है और फिर उसका फ़ोन आता है। मैं कभी पहले नहीं करती, चलिए आप नहीं करती हैं पहल, दूसरा तो पहल करके वो रिश्तों को बचा लेता। और ये बात जो आप कह रही ना कि एक बार ब्लॉक कर दिया था, ये बात आपने मुझसे शेयर की थी, मुझे आज भी ये बात आपकी याद है। और साथ ही एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है सुलेमा का, और सुलेमा का मैसेज आया बाराबंकी से, ये लिख रही हैं आरजे जी आपको नमस्ते, और जो आपका टॉपिक आज है तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर प्यार है वहां गुस्सा होता है। मैं घर में सबसे गुस्सा होती हूँ, सब मुझसे गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर हम दोनों, मतलब हम सब आपस में बात कर लेते हैं क्योंकि बिना बात के काम चलता ही नहीं है। इवन मेरे घर में मेरे हस्बैंड से मेरी काफ़ी कहा सुनी हो जाती है और वो मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी 3-4 दिन बात नहीं होती लेकिन बच्चों की वजह से बात करनी पड़ती है, और फिर लगता है वो बात गई आई गई हो जाती है और फिर हम लोग सामान्य जीवन जीने लगते हैं। तो जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा है, मैं अपने बच्चों से भी गुस्सा हो जाती हूँ। तो भाई सलीमा, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि भाई ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन हाँ, एक मन में जो गांठ होती है वो बांध के नहीं बैठनी चाहिए। अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसी दिक्कत है जिसे आप लगता है कि आप दोनों नहीं सुलझा सकते, यानी आप दोनों बात की पहल नहीं कर सकते हैं, तो किसी तीसरे को जो आप दोनों का बहुत करीबी हो उसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और फिर बस बढ़िया सी खूबसूरत सी बातें कर लीजिए। फिलहाल एक बढ़िया सा गाना जो आपके मूड को बिल्कुल खुशनुमा और अच्छा बना दे।

जी बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ रहे हैं रूठने और मनाने पर. भाई रूठना तेरा और मेरा मनाना, रूठना तेरा और मेरा मनाना, याद आता है वो अक्सर जमाना. लाख खफा हो हम एक पल में, फिर गले से लगा लेती है एक पुरानी यादों का फसाना. और भी हमारे पास मेल आ गए और ये मेल हमारे पास आया है पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहे हैं. लिख रहे हैं, मेरे अगर किसी से लड़ाई हो जाती तो मैं धीरे से उनसे दूर हो जाता और इसी चक्कर में चार लोगों से दूर हो गया हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद मेल पढ़ने के लिए. यह आपने चीज़ बताई, बहुत लोगों से दूर हो गया है, लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया, अगर ये भी आप मेल में लिखते कि कुछ आपके रिश्ते सुधरे, आपने तो सारे बिगाड़ लिए भाई पिंकू सोनी जी. लेकिन हाँ, जैसे मैं कहती हूँ, ईमानदारी से मेल कीजिए, तो वो आपने किया जो आपको ठीक लगा, जो आपके साथ हुआ वो आपने बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच. मोनू सेठ जी हमें मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत गाने बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा. थैंक यू सो मच मोनू, आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम. और देखिए हमारे पास मेल आ गए हैं गाने सुनने के, तो भाई अभी गाने का प्रोग्राम थोड़ा सा बाकी है. और ये हमारे पास मेल आ गया मोहम्मद फैज़ साहब का, रामपुर कटरा फुलवारी बाज़ार ज़िला बाराबंकी से मेल कर रहे हैं. शिल्पी दीदी आपको प्यार भरा गुड आफ्टरनून और प्यार भरा नमस्कार. तो भाई आपको भी गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार. और आज के टॉपिक से रिलेटेड मुझे कहना है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं एक गिलास पानी पी लेता हूँ, उसके बाद गुस्सा शांत हो जाता है. दीदी कुछ लोग हैं उनको, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सद्दाम भाई, मेरे पिताजी का नाम है मुबारक अली, और मोहम्मद अमजद भाई. पूरा ईमेल प्लीज़ प्लीज़ पढ़िएगा. और आप हमेशा लिखते कि आप अपने बड़े भाई के मोबाइल से मेल कर रहे हैं. मोहम्मद फैज़ साहब, ये आपने अच्छी बात लिखी कि आप एक गिलास पानी पी लेते हैं, क्योंकि उतनी देर में जो भी गुस्सा होता है वो रफा दफ़ा हो जाता है. और आपकी बातों का सिलसिला और आपके मेल्स का सिलसिला यूँ भी जारी रहेगा. और आपको बता दें कि अगर आपके भी गुस्सा आता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, गुस्से में नहीं. आपको बताना है कि आपके जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, यानी गुस्से में रिश्ते ख़राब कर लेते हैं या फिर कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ते हैं, मतलब पुरानी बातों को झाड़ते हैं और सोचते हैं अरे जो हुआ हुआ अब आगे बढ़िए. यूँ रिश्तों में गांठ डालने से क्या फ़ायदा. फिलहाल 1:41 हो गए, इन्जॉय कीजिए ये प्रोग्राम और साथ ही मेल्स का सिलसिला लगातार जारी रखिए.

0: listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: एक बजकर 45 मिनट और 38 सेकेंड हो गए. रेनबो 100.7 एफएम पर प्रोग्राम होटो पे तेरी बात. शिल्पी आपके साथ और शिल्पी के साथ आपकी मेल्स. ये मेल आया नजीम उस्मानी साहब का महमूदाबाद सीतापुर से. लिख रहे हैं, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो उसे 2-3 दिन नहीं बोलते. हम अगर कोई मानता था तो मान भी जाते थे. अब गुस्सा कम आता है. मतलब अब गुस्सा कम हो गया इनका है और पहले होता था 2-3 दिन नहीं बोलते थे, शायद यही कहना चाहते हैं ना. और इसके बाद हमारे पास मेल आया है. किसका ये मेल है? नरेंद्र सुधार जी का, नोहर राजस्थान से. लिखा है, मैं कुछ खास दोस्तों के साथ कभी कभी किसी बात पर गुस्सा हो जाता हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ गुस्से में भी प्यार है. मुझे ये कहकर मना लेते हैं कि गुस्से में तुम तो और हसीन लगते हो और फिर हंसी के ठहाके लगते हैं. चंद पल का गुस्सा ही होता है, उसके बाद वही हंसी मजाक, वही प्यार. यकीनन कई बार गुस्से होने पर अच्छा लगता है क्योंकि दिल में तो प्यार ही होता है. जी बिल्कुल सही बात है, इसमें आपने बिल्कुल भी गलत बात नहीं कही है. और क्या कह रही हैं भाई, ये देखिए पिंकू सोनी का फिर से मेल आ गया है और वो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ किसी को आसानी से मिल जाए तो लोग उसकी कद्र नहीं करते, इसलिए दूर होकर उन्हें उनकी करने का एहसास कराना ज़रूरी होता है. अच्छा जी, मोनू सेठ जी ने लिखा, गाने तो अच्छे बज रहे हैं लेकिन मैं आपको मेल कर देता हूँ जो आज का टॉपिक. उस पर लिखा है कि मैंने लोगों को अब बनाना छोड़ दिया. नाराज़ हो तो हो जाए नाराज, दूरियाँ होती हों तो हो जाए, क्योंकि आप जितना सीधा रहोगे, जितना आप झुक लोगे, उससे अधिक लोग नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे. मुझसे तो लगभग सारे रिश्तेदार नाराज है, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मनी है तो सब हनी है. मोनू जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुस्सा होने से, चाहे आप गुस्सा हो जाइए उनसे लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसलिए भाई थोड़ा सा ये ख़ास बात ध्यान रखिए कि भाई कुछ लोग के साथ आपकी बनती रहे, यानी अच्छे लोग आपके साथ हमेशा होने चाहिए. वो लोग जो आपका भला चाहें, जो लोग आपसे की तरक्की से खुश हों, है ना, वो उन लोगों को हमेशा अपने साथ रखिए. वो नाराज़ हो जाए तो उसे ज़रूर मना लीजिए. कई बार ऐसा होता है किसी का बोलना बहुत ख़राब लगता है, मतलब किसी किसी के जो

वाणी होती है वो थोड़ी कठोर होती है, लेकिन दिल के वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आपको ढूंढना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं। फिलहाल एक गाना बहुत अच्छा जो मेरे दिल के भी करीब है मैं प्ले करने जा रही हूँ, आई होप आप भी इंजॉय करेंगे इस ट्रैक को।

सोनू परवाना जी का मेल आ गया है, लिखा है, दोस्त और रिश्तेदार अगर जरूरत पे साथ ना दे तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना है जरूरी, क्योंकि स्वार्थी, जलन और मतलबी लोग इन्हें है नहीं पसंद। ओहो, तो अब अगला मेल भी आया, क्योंकि जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि 1:51 हो गए। होठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार, सादर प्रणाम, और लिखा है, सदा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, यही कामनाएं हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। रामेश्वर दयाल जी का, रामेश्वर कठेरिया जी का मेल आ गया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा और प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार, और लिखा है कि हम में गुस्सा होता तो हम FM रेनबो सुनने लगते हैं, क्या बात है। दिग्दर्शन कौर जी का आ गया है, वो गाना सुनना चाहते हैं तो बस गानों का प्रोग्राम हाजिर होने जा रहा है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी तो 1:52 हो गए। मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी, गुड आफ्टरनून शिल्पी जी, शिल्पी मैम नमस्कार, तो भैया आपको भी गुड आफ्टरनून तालिब जी, थोड़ा लेट हो गए हैं लेकिन आ ही गए हम इस प्रोग्राम में। मुद्दे पर कहना चाहूँगे, गुस्सा मेरे अंदर बहुत है, बट गुस्सा आ जाए तो हम ही पहले पहल कर देते हैं बोलने बुलवाने की। हाँ, ये बात सही है कि पहल कर दीजिए तो अच्छा है, कि सामने वाले को अगर बोलना हो तो भी पता चल जाएगा, और कई बार आप किसी को मनाइए तो वो और रूठ जाता है, मैंने ये देखा है, जैसे आप किसी को, कोई आपसे रूठ गया है और मानिए आप पहल करने में आगे रहते हैं और आप उसे मनाने के लिए जाते हैं, तो वो ये मान लेता है कि भाई आप ही हमेशा मनाते हैं, तो वो और रूठता है तो वो रूठने का मज़ा और तरह का होता है, रूठने मनाने का, वैसे रूठने मनाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, आज से नहीं।

हमेशा होता आया है और मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब अगर माँ रूठ जाती है, क्योंकि सब रूठ जाए सब ठीक है, लेकिन अगर माँ आपकी रूठ जाती है किसी बात पर तो बहुत बुरा लगता है। नहीं, उसको नहीं रूठना चाहिए, लगता है वो हमेशा बोलती रहे, क्योंकि वो जो है वो ऐसा होता है माँ के आंचल में कि भाई आप सारे गमों को भूल देते हैं, सारे गिले शिकवे एक तरफ और माँ का प्यार दुलार एक तरफ। वैसे हम जो भी हमारे लिसनर्स से मेल किया, सबने अलग अलग विचार रखे, और एक विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी माँ भी मुझसे कहती थी कि जब भी गुस्सा आए तो एक गिलास पानी पी लो, यानी कि तुरंत रिप्लाई ना करो किसी भी चीज़ का। थोड़ा पानी पीने में ये होता है कि आपका थोड़ा सा समय निकल जाता है, और जब आपका समय निकलता है तो आपको लगता है कि हमें कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या अगर सामने वाला भी बोलता है तो उस चीज़ को आप, एक कहते हैं ना कि चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, तो वो चीज़ें आप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुनेश कुमार राज जी का मेल आ गया, गांव भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से। शिल्पी जी शुभ दोपहरिया आपको भी, और लिखा ना घमंड करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, ना घमंड करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, अपना वही रहता है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। और इन्होंने लिखा है, सच कहूँ शिल्पी जी तो मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, पर जब लोग बात पर बड़ी बड़ी हाँकने लगते हैं तो और आपकी कही हुई बात को इग्नोर करने लगते हैं, तब दिल को ठेस पहुँचती और गुस्सा आ जाता है। होता है भाई, ये सब इमोशंस होते हैं ह्यूमन लाइफ के, और हर किसी को गुस्सा आता है, और ये इमोशंस हर किसी में होते हैं, हर इंसान में होते हैं। अगर ये कोई कहता है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ या मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। कभी किसी का गुस्सा बहुत तेज़ होता है और किसी का कम होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात होती है, क्योंकि ये इमोशंस हर किसी में होते हैं। जैसे कि जलसी, लोग कहते हैं हम किसी से जलस नहीं कर फील करते, लेकिन ये सब इमोशंस है, कहीं ना कहीं आते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बस आपको ये देखना है कि वो आपको या किसी दूसरे को बहुत हर्ट ना करें। वारिस अली खान साहब का मेल आ गया है, और ये आखिरी मेल हम पढ़ें क्योंकि 1:55 हो गए हैं। शिल्पी जी आदाब, मेरा मानना है जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। वैसे तो मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है, मगर आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, मैं तोड़फोड़ करने लगता हूँ, उसके बाद उस इंसान से ज़िंदगी भर बात नहीं करता। अगर वो सॉरी बोल देता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मैं ना तो लूज टॉक करता हूँ ना ही सुनना पसंद करता हूँ। तो भाई और सब चीज़ें तो ठीक है वारिस अली खान साहब, लेकिन ये तोड़ फोड़ करने वाली बात से मुझे थोड़ी सी लगता है कि इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल के बाहर हो जाए। फिलहाल हमें तो ये लगता है कि अगर कोई आपसे रूठ जाए तो वो रूठने की वजह बता दे। एक शेर है, रूठने का हक है तुझे वजह बताया कर, रूठने का हक है तुझे वजह बताया कर, खफा होना गलत नहीं है तू खता बताया कर। तो खता बता दीजिए कि क्या है। और प्रवीण जी का चलते चलते मेल आ गया, लिख रहे हैं मुझे बहुत दुख होता है जब कोई गुस्सा हो जाता है और मैं उस गुस्से को पी लेता हूँ। तो चलिए अब जल्दी से गाना प्ले कर देते हैं, और इस प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल जो हमारे सभी लिसनर्स का बहुत फेवरेट है उसे एंजॉय करेंगे। बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। शिल्पी सेज बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार। दोपहर के 2 बजे सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा मामले में अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी। बार एसोसिएशन का कहना है कि दस्तावेजों के आधार पर नामों में बदलाव भी हो सकता है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन से उनका पुराना जुड़ाव रहा है और जनहित में सामने आए तथ्यों को कानून के दायरे में लाना उनका दायित्व है। अधिवक्ता संघ ने दान आभूषणों और अन्य संपत्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 का आज पहला दिन है। प्रथम दिन की पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा में कुल 19,94,661 पंजीकृत परीक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसको देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संत कबीरनगर में उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के आयोजन के दृष्टिगत आगामी 4 जुलाई को होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस अब 6 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बदलाव का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
5: विश्वास और संस्कृति की अनमोल धरोहर आकाशवाणी।
6: अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ के प्रथम समाचार वाचक।
7: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के लिए यज्ञदेव पंडित की हार्दिक बधाई।
8: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
9: बारिश की चंद बूंदे धरती को ठंडा कर देती हैं और मौसम को खुशनुमा कर देती हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें से ये प्रोग्राम, ये हॉटमेल प्रोग्राम, भले उसका नाम हॉटमेल है लेकिन ये भी हमारे तमाम लिसनर्स का बहुत फेवरेट है और उनके दिलों को ठंडक देता है जब इस प्रोग्राम में उनके गाने प्ले होते हैं, उनका नाम लिया जाता है। और ये हॉटमेल प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी अपनी दोस्त शिल्पी 100.7 FM रेनबो पर, जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की। वेल दोस्तों, आपको मेल करना है इस प्रोग्राम में और बहुत सारे मेल्स हमें मिल भी गए हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। आप जहां से भी सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन या यार आपके थ्रू भी जुड़े हैं तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी पसंद के गाने लिख सकते हैं। आप कहां से मेल कर रहे हैं इसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिलहाल गाने तो आपकी पसंद के बजेंगे ही बजेंगे क्योंकि भाई आप ही का प्रोग्राम है, लेकिन सबसे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट आपसे कि भाई एक मेल कीजिए, वो बेटर रहेगा ताकि किसी और के मेल्स स्किप ना हो। सबका हक है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का, जैसे आपका दिल करता है वैसे दूसरों का भी दिल करता है कि भाई उनका नाम पढ़ा जाए। तो फिलहाल एक गाने के साथ धुआंधार शुरुआत और उसके बाद आपकी पसंद के गाने हाजिर रहेंगे आपके लिए।

जी तो मेल्स का सिलसिला लगातार जारी है। दिग्दर्शन कौर, दिग्दर्शन और कविता गौड़ मेरठ कैंट से लिख रहे हैं, कुछ गीतों के नाम दिए कुछ फिल्मों के और कहा इनसे रिलेटेड आप गीत बजा दीजिए। और ये मेल हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दिवांशु खोरवाल, इन्होंने मेल किया है हमें दिल्ली से। और सतीश अनेजा जी का भी मेल आ गया चंडीगढ़ सिटी से, इन्होंने सुनना चाहा है जो गाना, वो हम पूरी कोशिश करेंगे सतीश अनेजा जी आप गाना प्ले करें, क्योंकि आप कई बार रिक्वेस्ट करते हैं और कई बार अधूरी रह जाती है, और हमारे कई लिसनर्स भी ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं। और हम सुनील पाठक जी का मेल ले रहे हैं, और इन्होंने अनारकली बाजार जगराओ से मेल किया है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी, ताज मोहम्मद जी का मेल आ गया है, गुलाम साबिर रही महराजा, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपका मेल हमें मिला है। और ये मेल आया है हमारे पास टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, पिट्टा बजाज, ये चंडीगढ़ से मेल आया है हमारे पास। थैंक यू सो मच आपने हमें मेल किया। नवी हसन जी का भी मेल आ गया है, नवी हसन जी ने हॉटमेल में मेल किया है, लिखा किसी भी गीत में नाम शामिल कर लीजिए। मारहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, ननम यशफ, सोहेल हसन, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान साहब, और एम के राज जी, मुनेश कुमार राज जी, भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खुरी से। मैं ये मैसेज जो रोज़ बराबर भेजता रहूँगा जब तक इनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती है, क्योंकि कह रहे हैं कि एक हफ्ता हो गया खाली मैसेज पढ़ दिया जाता है, गाना नहीं बजाया जाता है, और गुस्ताखी के लिए माफ़ी। तो भाई आपने लिखा है शालिनी मैम को शुभ दोपहर, तो मैं बता दूँ कि आज शिल्पी आपके साथ है, और देखिए पूरी कोशिश की जाती है, और ऐसा नहीं होता है कि गाने प्ले नहीं होते हैं, कभी आपकी पसंद होती है तो कभी किसी और की पसंद प्ले हो जाती है, बस ये होता है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, पलारी छत्तीसगढ़ से। तो चलिए पहले आप ही लोग की पसंद का गाना है, मतलब जो इतने लोग के नाम लिए उन्हीं में से किसी की पसंद का गाना हम प्ले करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि बैक टू बैक दो गाने प्ले होंगे, तो आप ही में से किसी कोई दो श्रोता है जिनकी पसंद हमने सिलेक्ट करी और आपके गाने प्ले होने जा रहे हैं। एंजॉय कीजिए ट्रैक 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टोलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बिट्टू गगनेजा जी का मेल आ गया है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी का, और साथ ही हमारे पास मेल आ गया है सर स्वर्ण सिंह जी का, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोत्रे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह जी का मेल हमारे पास आ गया है, और ये इन्होंने मेल किया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। तुलसी मस्कीन जी लिखा है प्यारे से गीत में मेल पढ़ लीजिए, थैंक्स। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। इसके बाद ये मेल आया गांव फ्रांसिस हिसार से, राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए। इसके बाद मेल सदानंद मधुरकर जी और साथी हैं सुशीला देवी मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, डाबकी रोड अकोला से आपका मेल आया है। सावन से रिलेटेड गाने खूब लोग लिख रहे हैं कि गाने जो है वो बारिश वाले सुनना चाह रहे हैं, और ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, इन सब का मेल आ गया बांडीवाला फाजिल का पंजाब से। इतनी दूर से आप प्रोग्राम से मेल कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीयू स्वर्णकार, यासिन अनजान साहब ने मेल किया है, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, स्मिफ्र नवाज, बेबी चाहत, प्यार भरा आदाब के साथ लिखा है, भैया आपको भी प्यार भरा आदाब। इसके बाद कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्न लोखंडे, रक्षिता लोखंडे, गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से आप सबका मेल आया है। राजेश वर्मा जी का मेल आ गया, राजेश वर्मा जी का मेल हम पढ़ चुके हैं, और ये मेल आया दीपेश जी का, दीपेश जी का मेल आया ग्राउंड पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, और साथ ही इन्होंने बबलेश पवार जी का भी मेल आ गया है, डैनी पवार, मनीष पवार और राम देवरा से, दिनेश चौहान, पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब है वहाँ से आपका मेल आया है, थैंक यू सो मच आप सबको मेल करने के लिए। सुदर्शन शाह जी का मेल आ गया है, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, तो आप सब में किसी की पसंद का ही गाना प्ले करने जा रहे हैं।

क्योंकि बारिश के गानों की बहुत रिक्वेस्ट हो रही है, तो जो गाने आप कह रहे हैं वही गाने हम प्ले करें। आई होप और लोग भी इस दूसरों की पसंद में खुद को भी शामिल कर लीजिए तो बेटर रहेगा। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गीत है और ये फिल्म भाभी का गीत है जो 1957 में फिल्म आई थी।

विठल जाधव जी ने सुईया जाधव और पवन राजे जाधव ऑरेंज सिटी नागपुर से आप हमें मेल कर रहे हैं और गाने की रिक्वेस्ट की और साथ ही नमस्कार लिखा, तो आपको भी नमस्कार। मूसा शेख जी, शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ारा सनावत से, और लिखा है अपनी पसंद का सदाबहार नगमा सुना दीजिए। बाबू अंसारी जी, गुड आफ्टरनून शिल्पी मैम, मुझे गाना सुनवा दीजिए। और गाने के बोल उन्होंने दे दिए हैं, चलिए पूरी कोशिश करते हैं। गाने के डेडिकेट किए हैं, नाम शामिल कर लीजिए, तो कुलदीप गुप्ता, महेंद्र देपन, फैज अंसारी, ओस मोहम्मद अंसारी साहब, आंचल सेठ जी खालिसपुर से हमें भेज रही हैं, नमस्कार कर रही हैं। और साथ ही लिखा है, भरोसा दूसरों पर रखो तो गम दे जाती, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और भरोसा दूसरों पर रखो तो गम मिलता है। खालिसपुर अमेठी से बहुत ही अच्छी बात के साथ मेल किया है। संतोष जी का मेल आ गया, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे जी का मेल आ गया है। और साथ ही हमारे पास गुरमीत सिंह का जी मेल आया है, मीता साउथ दिल्ली से लिखा, खुश नुमा नमस्ते। सुरेश नारंग जी का भी मेल आ गया सहारनपुर से, सोनाली, आशा नारंग, सुरेश नारंग और सबका मेल लिखा है और सहारनपुर से लिखा है, थैंक यू सो मच। और हमारे पास लगातार मेल्स आने का सिलसिला जारी है। तालिब अंसारी साहब का मेल आ गया राजा कटरा बाराबंकी से, शिल्पी मैम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए एक मेल कर रहा हूँ, एक ही गीत की फरमाइश है, आपकी बात मानते हैं, आप भी मेरी बात मानिए और गीत सुनवा दीजिए। अच्छा, क्या बात है। शारून अंसारी जी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकेली जिला बरेली से। मनोज बंसल जी का मेल हांसी हरियाणा से आ गया है। और ये मेल आया है रोजी डिकेस्ट्रो जी का, दीजिए आ गया सहारनपुर से, पर्ले कैस्ट्रो, जॉन डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो सहारनपुर से आपका मेल लिखा है। या तो जो हमारी रिक्वेस्ट शामिल कर लीजिए, या फिर आप अपनी पसंद के गाना जो हो उसमें आप नाम शामिल कर लीजिए। रोशनी चौरसिया जी का मेल आ गया है अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से। और भाई ये मेल आया है बहुत दूरी से, और वो है गुजरात। जी हाँ, गुजरात से आया, राजकोट से, कौशिक, अस्मिता, मम्मी पापा, महेश, बड़वाड़ा परिवार, और लिखते हैं, नमस्कार शिल्पी मैम, केम छो, गुड आफ्टरनून। और इन्होंने भी बारिश का ही गाना मांगा है कि भाई वही सुनवाइए। स्वर्ण सिंह जी, आपका नाम हम पढ़ चुके हैं, गाना भी आपका पसंद का प्ले हो चुका है। महेश बोहरा जी अजमेर राजस्थान से लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं, मेल शामिल हो या ना हो, धड़कन मेल के म्यूजिकल सफर का सुकून भरा आनंद अवश्य और हमेशा आता है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, क्या बात है। राजेश जी का मेल आ गया, राजेश खुबर खेड़े, शिव सागर खुबर खेड़े, इंदिराबाई खुबर खेड़े, शिवजी नगर वडाली देशमुख से, कांडवी बुलढाड़ा से, दीपाली राम धाड़े, सुराज राम छकुलीताई खुबर खड़े, तिलोरी अमरावती से, सुनैना, पवन भोंडे, आप सबका मेल आया, थैंक यू सो मच। बोधराज खुरवाल जी का मेल आ गया है उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, गीतिका खुरवाल और भानु प्रकाश जी। और बोधराज जी दो तीन बार मेल करते हैं, वो सोचते हैं एक बार मिलेगा नहीं। महेंद्र प्रसाद मोदी जी का मेल आ गया है, और ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से हमें मेल किया है। जावेद अख्तर साहब का मेल फिर से आ गया है और लिखा, हॉटमेल में किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, रेशमी नगर मुबारकपुर, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से, और सबके नाम लिखे, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, शमसुल कुमार राही, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी साहब।

पीएस नवालकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तापड़े, आशीष मोहरकर और धन्यवाद। और साथ ही अब हम जल्दी से गाना प्ले कर देते हैं, ये तो नामों का सिलसिला तो यूं ही रहेगा जारी।

2:38 क्या 2:00 ठीक ठीक पूरे 39 मिनट हो गए। 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, ये हॉटमेल प्रोग्राम, और ये हॉटमेल आपका बहुत फेवरेट है मैं जानती हूँ, क्योंकि लगातार आप हमें मेल करते हैं अपनी पसंद के गानों के साथ, और साथ ही आप कहते हैं भाई नाम भी पढ़ दीजिए। अतीक अली साहब का मेल आ गया है सिकलेनिया चौराहा कमलापुर सीतापुर से, और लिख रहे हैं 6 महीने बाद मेल कर रहे हैं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और सभी सुनने वाले भी उम्मीद करते हैं, कह रहे हैं अच्छे होंगे और गाना सुनना चाहते हैं 6 महीने बाद, इन्होंने मेल किया थी कली साहब ने। सुधाकर जाधव जी आपका हम मेल पढ़ चुके हैं, शायद आपसे रह गया सुनने से। सीताराम कांगड़ा जी का मेल आ गया एकता कॉलोनी रोहतक से, बबीता बोट निखिल कांगड़ा तन्वी बोट, और लिखा है आपकी पसंद हमारी पसंद शुक्रिया। विनीत कुमार जी का मेल आ गया है, ये ग्राम अर्थापुर है पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, हॉटमेल प्रस्तुत करने वाली बहन को गुड आफ्टरनून और दोपहरिया का सादर प्रणाम, और प्रोग्राम सुपर हिट है, आपकी स्वीट स्वीट मीठी आवाज़ में अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, एक मेरा गाना है वो आप बजा दीजिए तो अच्छा है। चलिए देखते हैं भाई, पूरी कोशिश करते हैं। मुनेश कुमार जी का मेल आ गया भानपुर गरहरेवा से, आपके मेल हम पढ़ चुके हैं मुनेश जी। सुधाकर जाधव जी ने हमें 3-3, 4-4 मेल कर दिए और हम उनका मेल पढ़ चुके हैं फिर भी। नाजिम जी कर रहे हैं हमें मेल, उन्होंने लिखा है वही बारिश के गाने थोड़ा सा इन्जॉय करना चाह रहे हैं लोग, चलिए कोशिश करते हैं, दिल्ली से सुन रहे हैं। और ये सीताराम कांगड़ा जी का भी मेल हम पढ़ चुके हैं, पुनः मेल आ गया। बाबू अंसारी जी का भी मेल पढ़ा जा चुका है, ये मेल आया है हमारे पास जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से, शंकरलाल जायसवाल, कृष्ण लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल जी का। जगदीश जी का मेल आ गया है, कार्यक्रम लाइव इंजॉय हो रहा है, हमें भी शामिल कीजिए। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी से जगदीश धाकड़ नैमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, थैंक यू सो मच। रश्मि जी का मेल आ गया, और रश्मि जारना राजकोट गुजरात से लिखा है आपका स्वागत करते हैं, शामिल करिएगा, कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। संदीप मक्कड़ जी का मेल आ गया, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, विंगावाला चौक, गोराया, जलंधर, पंजाब से मेल आ गए हैं। और इसके बाद हम मेल पढ़ते हैं, और ये मेल किसके हैं, सुनील पाठक जी का मेल आ गया है, अनारकली बाज़ार जगराव से, इनका मेल भी हम पढ़ चुके हैं। ये कुछ मेल जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं बराबर। शमसुल कमर राही जी, गुंज जुंडवारा से शमसुल कुमार राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान लिखा है आदाब, और ये मेल गुंज जुंडवारा से आ गया है हमारे पास। हीरामणि वर्मा जी का भी मेल आ गया, हीरामणि वर्मा जी का मेल, और इसके बाद ये हमारे पास, ये इन्होंने कहाँ इसके हम बता दें, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। और चलिए अब फरमाइश शामिल हो जाए, क्योंकि 2:41 हो गए हैं।

2:45 हो गए हैं। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू रानू सपना शिवी कॉलोनी और पेंटर बाबू शिवपुरम। लुबना अंसारी जी का मेल आ गया है। प्यारी बहना आरजे जी को नमस्कार आदाब। आप हमेशा हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और खुशियां बांटती रहिए। क्या बात है। शेरवानी स्कूल गुंजडुंडवारा से हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद कैफ साहब, मोहम्मद साहिर साहब का मुझे, मोहम्मद फैज़ साहब हैं ये जो रामपुर ज़िला, रामपुर कटरा ज़िला बाराबंकी से मेल कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं, बहुत बेसब्री से हॉटमेल का इंतज़ार रहता है। एक मेरा भी सॉन्ग चला दीजिए। शिल्पी दीदी प्लीज़, आपने पिछली बार कहा था कि आपने मेरा गाना नहीं प्ले किया, प्लीज़ आज तो कर दीजिए। चलिए भाई, कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट होती है। और ये शमसुल कुमार जी का मेल हम शामिल कर चुके, नहीं करा है। शमसुल कुमार राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, गुंजडुंडवारा से। गुंजडुंडवारा से बहुत सारे मैसेज आ सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कि आज के इस खूबसूरत मौसम की तरह आपकी पेशकश भी सुंदर है। थैंक यू सो मच। और ये विक्रम जी हैं, विक्रम कड़वासरा और योगेश कंगवासरा, ये इन्होंने हमें गाँव कलाना राजस्थान से मेल किया है और मेरे ख्याल से हम पहली बार इनका नाम पढ़ रहे हैं। और ये हैं हमारे साथ, कौन हैं, कमलकांत गुप्ता जी हैं जी, कमलकांत गुप्ता जी समटीला नवापारा से, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता जी, भोजराज खोरवाल जी, आपका मेल पढ़ चुके हैं और आप कंटिन्यूसली बार बार मेल कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जो भी मेल आए हैं वो बाबू अंसारी जी का भी, सुरेश नारंग जी का भी मेल हम शामिल कर चुके हैं। सहारनपुर से आपका मेल आया था और अब जल्दी से हम गाना प्ले कर देते हैं आप लोग में किसी की पसंद का। एंजॉय कीजिए, बहुत ही प्यारा सा गीत है फिल्म आराधना से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

9:53 मिनट 56 सेकेंड हो गए। खेल बाजार पानीपत से नीरज मेहरोत्रा, नीटू लक्ष्म मेहरोत्रा, लाड़ो कोयल मेहरोत्रा, पापा जी नानक चंद मेहरोत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का जी का भी मेल है और लालगिरी जी का भी मेल आ गया है। कार्यक्रम पेश करता आदरणीय को प्यारा नमस्कार, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद। कोई भी सॉन्ग में शामिल कर लीजिए, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी जी। विजय मल्होत्रा जी का मेल आ गया, नमस्कार, आज हम शामिल होंगे ऐसी आशा है। बिल्कुल लीजिए, शामिल हो गए आप। और इन्होंने लिखा है कि विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना शिवी, सलोनी, ईशु बाबा, पिंटर बाबू, रामगंज, खंडवा, मध्य प्रदेश से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। थ्री ब्रदर आसिफ अंसारी तेलंगाना हैदराबाद से किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। कुछ नाम है दोस्तों के, साबिर अंसारी कानपुर से, तालिब रजा कटरा से, नरेंद्र जी, नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार, कृपया नाम ज़रूर शामिल कीजिए, नोहर ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से। हाँ, आप हमें अपनी पसंद का गीत ज़रूर सुनवा दीजिए, नहीं तो नाम शामिल कर लीजिए। शिवम सिंह जी, अंदाज़ मूवी का सॉन्ग बजा दीजिए, मेरा बहुत मैम बहुत बढ़िया मौसम है। जी हाँ, नो डाउट, बहुत बढ़िया मौसम है। आप मुझे बाहर के अपडेट दे रहे हैं, हम तो अंदर बैठे हैं, लेकिन हाँ आज सुबह से मौसम खुशनुमा था। सोनू परवाना जी का भी मेल आ गया है और खालिसपुर अमेठी से, और तेज बहादुर यादव जी, 2:55 हो गए, लग रहा जल्दी सबके नाम पढ़ दूँ ताकि किसी के नाम ना रह जाएँ। गाँव मऊ शिरके, ज़िला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, लेकिन गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे, तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनीत यादव, बेबी वनिका, किसी भी सदाकार गीत में शामिल कर लीजिए। महन देपन जी आ गए हैं, आरजे शिल्पी मैम और एफएम लखनऊ को सादर प्रणाम, सुल्तान रजा भाई, बाबू भाई अंसारी की दोस्ती का अंदाज निराला, रोशनी रावत दीदी और बबीता राव दीदी के स्नेह ने हर पल संभाला, और बहुत बढ़िया आपने लिखा है। लेकिन इस समय हम सबकी पसंद क्या मैं निकाल चुकी हूँ, जिनकी पसंद का गाना बजना है। नवा ज़िला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, क्यारा, ज्योति रानी, गुरमत कौर, जब जब फूल खिले से लिखा है गाना, लेकिन देखिए मजबूरी हमारी इतनी कि अब इस समय समय इतना कम है कि जो गाना हमसे आज का सेलेक्ट हुआ है वही गाना प्ले होगा। एंड बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, गाना कहीं भी कुछ भी इसमें कहेंगे नहीं कि अप डाउन है। फिलहाल 2:56 हो गए हैं, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में मेरा आपका फिर रहेगा साथ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

नमस्कार। दोपहर के 3 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाया ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के भव्य आयोजन की घोषणा की। यह 3 दिवसीय उत्सव 3 से 5 जुलाई 2026 तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष महोत्सव में सात श्रेणियों में 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। यह संपत्ति उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर पंजीकृत है। सचिव ने बताया कि प्राधिकरण ने मालिक को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या उनके पास विधिवत अनुमोदित भवन योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में अमरोहा पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2026 में 5वीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने कहा कि इस उपलब्धि जनपद अमरोहा पुलिस की जन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही का प्रमाण है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
1: विरासत और स्वस्थ मनोरंजन की अनूठी पहचान। आकाशवाणी,
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर

0: हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे, इसी आशा के साथ मैं SR बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
1: जी, हॉट पेल के बाद एक और नए सफ़र पे हम चलने को हो गए हैं, मतलब राज़ी, और वो राज़ी इसलिए हो गए क्योंकि भाई ये जो एंटरटेनमेंट का सफ़र है ये बहुत देर रात तक चलता है, आप जानते हैं। रात 12 बजे तक हम आपको एंटरटेन करते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो वक्त है वो सतरंगी दुनिया का है। बहुत खूबसूरत सी दुनिया, और उस खूबसूरत सी दुनिया का एक रंग चुरा कर हम लाते हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में। दोस्तों, गर्मी बहुत होती है और लोग, हम लोग कहते हैं उफ़ कितनी गर्मी है, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। और गर्मी से बचने के लिए सच कही तो दुनिया के कई देश जद्दोजहद कर रहे हैं। गर्मी क्यों बढ़ी? जब पेड़ पौधे या हरियाली कम हुई तो गर्मी बढ़ी। दरअसल एक पेड़ जितनी ठंडक पैदा करता हो जितनी एक एसी 10 कमरों में 20 घंटों तक चलने पर करता है। और आप देखिए, जो भी रास्ता या जो भी इलाका पेड़ों से घिरा होता है वो दूसरे इलाकों की तुलना में 9 डिग्री ठंडा रहता है। तो ज़रूरत है इन पेड़ पौधों को लगाने की, और ये परफेक्ट टाइम होता है बारिश का मौसम कि पौधा रोपण या वृक्षारोपण किया जाए, और इसीलिए वन सप्ताह भी मनाया जाता है क्योंकि ये पेड़ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको अगर हम काटते जाएंगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो आज हमने कहा कि क्यों ना इन्हीं पेड़ों पर कुछ बात कर ली जाए क्योंकि ये हमारे सच्चे साथी हैं। और आज हमने देखिए शत्रुपा में भी बात करी थी इस बारे में। तो बातें तो हम यूँ करते रहते हैं आपसे बहुत सारी, ढेर सारी, क्योंकि बिना बातों के तो काम चलना नहीं है। तो चलिए एक बढ़िया सा गाना प्ले करते हैं और उसके बाद पेड़ों की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कुछ खास।

पेड़ों की बात हो रही थी और हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध खेल क्रिकेट की। अब आप सोच रहे होंगे पेड़ों की दुनिया में क्रिकेट का क्या योगदान, तो भाई क्रिकेट की दुनिया में पेड़ों का योगदान है, क्योंकि जो क्रिकेट का बैट होता है वो जिससे बनता है वो विलो नाम की लकड़ी का बनता है। और आपको बता दें जिस बैट से हम चौके छक्के पढ़ते देखते हैं या खुद भी कभी चौके और छक्के मारे हैं, तो वो जो लकड़ी का बैट है वो विलो लकड़ी का ही बना होता है। और बेसबॉल के जो बल्ले के लकड़ी के हिकोरी पेड़ के बने होते हैं। तो भाई पेड़ों की दुनिया का महत्व हर जगह है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं।

जी हाँ, पेड़ों की दुनिया की बात करें तो सबसे पुराने पेड़ की बात करें तो वो स्वीडन के दुलाराना प्रांत में है। टिज़ीकेको नाम का ये जो पेड़ है ये करीब 9,500 साल पुराना और इसकी लंबाई करीब 13 फीट है। आपने म्यूजिक की धुन पर इंसानों को नाचते जरूर देखा होगा, लेकिन ऐसे पौधे को नहीं देखा होगा जो गाने की धुन पर नाचता हो। जी हाँ, डांसिंग पौधा जो म्यूजिकल धुन सुनते ही नाचने लगता है, इसलिए इस पौधे को डांसिंग प्लांट भी कहा जाता है।

जी बातें करते करते 3:20 हो गए हैं और इस वक्त मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि पेड़ पौधे भी बातें करते हैं? हाँ, आपको लगता होगा वो कैसे बातें कर सकते हैं? वेल, पेड़ अपनी जड़ों के नीचे जो मौजूद फंगाई हैं उनके नेटवर्क होते हैं, जिसे कि वुड वाइड वेब भी कहते हैं। वुड वाइड वेब यानी WWW भी कहते हैं, उसके जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके थ्रू ये खतरे की चेतावनी देते हैं और बीमार पेड़ों की मदद करते हैं।

जी 3:23 और 50 सेकंड हो गए हैं और अब हम बस चलते चलते आपसे ये कहना चाहते हैं कि पेड़ जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, हमें टेंशन को कम करते हैं, हमें ब्लड प्रेशर को घटाते हैं, शांत और खुश महसूस कराने में मदद करते हैं और साथ ही जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पेड़ों के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते, हमें भरपूर ऑक्सीजन देते हैं पेड़, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ढेर सारी ऑक्सीजन देते हैं, तो इन पेड़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए और ये मौसम जो हमने आपसे कहा बारिश का मौसम परफेक्ट टाइम होता है पेड़ पौधे लगाने का। और जब आप अपना लगाया हुआ पौधा बड़ा होते देखते हैं तो यकीन जानिए बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैंने ये किया है तब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने पेड़ पौधों के पास जब बैठती हूँ लगता है वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो कम्युनिकेशन का वक्त ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसके बाद आप एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनेंगे, तो अभी के लिए मैं आपसे टाटा बाय बाय कह दूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सफ़र, जो लोग हमसे कनेक्ट हुए उनका शुक्रिया और फिर हम आपसे कनेक्ट होंगे जल्द ही, तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और अभी के लिए शिल्पी आपसे कहती है टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: दंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
1: इसे तराशा जाता है। और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में

0: कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं, और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं,
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोता, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।

0: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
1: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
2: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
1: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
0: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हो।
4: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
1: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
1: क्यों दे दो?
4: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
1: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
4: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा?

0: भला वो कैसे? आज्ञा है
1: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहां इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
3: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी पे बैठ कर
4: सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा
3: रहा है।
4: तो करेगा
1: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
5: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
2: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
6: प्यारे राज हंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूं कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड़ और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड़ शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
11: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सौर मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
10: विशेष
8: कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
6: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
8: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
9: जी सर।
8: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
7: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
8: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित

0: रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
1: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्ययान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्ययान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्ययान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
1: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्ययान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: आपने ट्यून किया है 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो। अब से कुछ ही पलों में आपको यहां से सीधे ले चलते हैं दिल्ली और आप सुनेंगे आज का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक। देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 देश नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन SSB के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेके जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसीलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर DIG थे जो अभी IG हैं, और IPS संजय सर थे वो पटना।

0: वॉलंटियर में थे, उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
1: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर, मैं ठीक बता रहा हूँ?
0: जी बिल्कुल ठीक बहुत बता
1: जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
0: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली। इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
1: जी
0: मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे, वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे। तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी
0: इसमें। जी जी जी।
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं, अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया, इस ऑपरेशन के बाद उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
1: बाहर
0: से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बाला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी

0: ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उसमें आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
0: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
0: जी
1: एक, जी जी जी तो बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त,
0: जी
1: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी
0: सर, हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स, कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
0: खात्मा
1: करें।
0: जी लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
0: जी,
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था, गोलियों का बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे,
0: क्या बात
1: नाम
0: सर?
1: का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी
0: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
1: जी एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला, उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे,
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला, तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
0: जी
1: जी
0: और दो बार आपको मिला है,
1: दो बार गैलेंट्री,
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: मित्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा,
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था उसमें,
0: अच्छा,
1: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमारी टीम और सब
0: एसएसबी की जी। टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के,
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि वो कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी, तो
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
0: अच्छा,
1: में ज्वाइन किया जी।
0: जी, तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सोलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा।
1: वहाँ भी NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा।
1: वहाँ फिर NDFE के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में, उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: तो सर आपकी जो जी, एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी, इंडो भूटान। तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
0: अच्छा।
1: असम जल रही थी NDFE का उससे,
0: अच्छा,
1: तो उसमें NDFE पर भी हम लोग काफी काम किए थे, हमारे बटालियन SSC बहुत अच्छा काम किए थी उसमें NDFE का।

0: लीडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था, बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
1: जी,
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने CTC सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की।
0: सलोनाबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग,
0: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन, हाँ, असम में आपने शुरुआत। अच्छा,
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत हुआ जी।
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन

0: प्रमोशन इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबाड़ी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की।
0: सलोनबाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
0: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत। अच्छा,
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत हुआ जी।
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही।
0: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन घुसाई गांव में।
1: बटालियन जी जी। अच्छा, जी जी। फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे।
0: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
1: अच्छा,
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई।
1: अच्छा,
0: असम में आ गई होली में जी।
1: ओके, तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं।
0: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युक्शुंग में मेरी पोस्टिंग हुई है।
1: अच्छा, एक चीज सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग सही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है।
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में। 50, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का। उसके पीछे STF वगैरह भी लगी हुई थी
1: जी।
0: जी हाँ, लेकिन
1: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज को हम याद
1: अच्छा,
0: करते हैं
1: जी। तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
0: जी।
1: जी, तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं
0: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा। टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज से हर बड़े चीज में
1: जी।
0: जी जी जी।
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
0: हाँ, इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज हो जाता है
1: जी। जी,
0: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो अपग्रेडेशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
1: जी,
0: तो
1: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
1: जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑवर बिलेविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोध हैं फ्रॉम ककरोला द्वारका Sector 15 दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम। आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है, तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की

0: नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इंफॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इंफॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीजें,
1: फोर्स से ही मैंने की। जी जी जी
0: जी। आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये
0: जी। अच्छा।
1: कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं।
0: अच्छा।
1: खाना। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है।
0: ओके।
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है, अपने सीनियर पदाधिकारी से नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है।
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज। और
0: अच्छा।
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल।
0: अच्छा।
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
0: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
1: जी,
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके।
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी जी जी, जंगल।
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है।
0: अच्छा।
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे,
1: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम।
0: अच्छा। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है,
0: 1 महीना।
1: जी जी जी जी।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ, लगे रहना है साथ में, हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है।
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
0: अच्छा। यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा जी, भरे जी, रखते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
1: जी जी जी। हाँ, तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा।
1: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो हाँ, कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
0: अच्छा।
1: अचानक सब चीज होता है,
0: पहले से नहीं बताते?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके।
1: हाँ,
0: एक तरह से ड्रिल।
1: हाँ,
0: अच्छा।
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी।

0: एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
1: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा तो पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
0: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है,
1: मोटिवेटेड रखने।
0: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड, फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा टीम के रूप में उनको ढाला जाता है।
1: सर, अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
1: जी,
0: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
1: जी, आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
0: जी जी जी जी,
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
1: अच्छा
0: करना है, जी उसके अच्छा उसके बारे में।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सके, वो भी आपने किया हुआ है,
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना।
1: जी जी,
0: उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जी
1: सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब एंजॉय ही किए।
1: जी सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आप को मैं पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं
0: जी,
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर, आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद है आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दो बार

0: दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर, ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा। उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजीडी चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये है सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर के वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता देंगे क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी

0: सर्विस ये रही है, और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सिटी लाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो, दिल से दिल तक।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एक स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांव के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। लखनऊ के थाना विभूति खंड क्षेत्र में चल रहे इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का आज पर्दाफाश करते हुए साइबर क्राइम सेल एवं स्थानीय पुलिस ने एक साथ 119 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि अभियुक्त तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर फ्रॉड करते थे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंटेक झांसी चैप्टर के बीच आज विरासत संरक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय परिसर में हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन सेंटर तथा संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, शोध, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और जन जागरूकता कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से संचालन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वेरी वॉर्म वेलकम फ्रेंड्स, 5:04 और 8 सेकंड हो चुके हैं और RGL का आपके साथ जुड़ गई है 100.7 FM रेनबो पर। और फिलहाल अभी आपके साथ इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे आप पूरा आधा घंटा, क्योंकि एक और विशेष कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 5:30 पर। लेकिन उससे पहले आज आप टॉप 10 एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन आज इसे टॉप 10 ना कहा जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे चुनिंदा गानों को शामिल करने वाली हूं जो ये 2000 के वैसे तो टॉप 10 लिस्ट में है, लेकिन उन टॉप 10 में से कुछ चुनिंदा 5 गानों को लेकर आई हूं मैं आपके लिए। इन गानों ने उस दौर में कैसा धमाल मचाया, क्या कुछ किया, ये भी बातें शेयर करूंगी आपके साथ। वैसे 2000 जो ईयर था वो बॉलीवुड संगीत के लिए एक ऐतिहासिक साल था। अब आप सोच

रहे होंगे कि ऐतिहासिक क्यों, क्योंकि इस साल ऋतिक रोशन के धमाकेदार डेब्यू से लेकर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक कई ऐसे गाने आए जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। एग्जैक्टली सो अभी जो नंबर 5 पर मैं आपको ट्रैक एंजॉय करने के लिए प्ले करने वाली हूँ, आपको बता दूं कि मिशन कश्मीर का एक खूबसूरत सा गाना है जिसे लोगों ने डांस नंबर के लिए बेहद पसंद किया। कश्मीर लोक संगीत के फ्यूजन के साथ बनाया गया ये ट्रैक अपनी जबरदस्त एनर्जी और प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन के बेहतरीन डांस की वजह से आज भी हर शादी और फंक्शन की शान बना हुआ है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए इस ट्रैक को करते हैं एंजॉय। Stay tuned, 100.7 FM, Rainbow.

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आपको बता दूं भाई कि ये गाना जो है वो अगेन ऋतिक रोशन पर आकर टिका हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप, ऋतिक रोशन जो उस वक्त छाए हुए थे क्योंकि डेब्यू किया था इन्होंने अपनी कुछ फिल्म से, और इसके अलावा ऋतिक रोशन ने जिन जिन फिल्मों में इस साल काम किया वो सुपर डुपर हिट रही और उनके ट्रैक्स भी। तो इस बार नंबर 4 की बात करें तो ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर की ये जो फिल्म थी, इसका गाना अपने अनूठे म्यूजिक के लिए और एक बहुत ही कैची बीट्स के लिए साल 2000 में सबसे बड़े चार्टबस्टर्स में से एक बन चुका था, इसने जगह अपनी बना ली थी। मैं बात कर रही हूं मूवी फिजा की। उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में ये खूबसूरत गाना आइए आपको सुनवाते हैं।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दिल ने ये कहा है,
5: एक खूबसूरत सा गाना जिसने अपने आप को उस वक्त बहुत ज़्यादा पायदान से उछल कर अपने आप को नंबर 3 पर पहुंचा लिया था, यानी कि नंबर 10 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस कदर इस ट्रैक को पसंद करना शुरू किया कि ये ऊंचे पायदानों पर पहुंच चुका था। जी हाँ, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की इस फिल्म का ये गाना टूटे दिलवालों से लेकर हर आशिक की पहली पसंद बन गया था। इससे अलग अलग जो वर्जन है वो आज भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, आज भी सुने जाते हैं। तो आइए उदित नारायण और अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में इस खूबसूरत ट्रैक जो कि है फिल्म धड़कन से एंजॉय करते हैं।

सो फ्रेंड्स, 5:22 हो चुके हैं और नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूं, आपको बता दूं कि शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन स्टारर इस फिल्म का ये रोमांटिक ट्रैक आज भी एक प्यार का प्रतीक यानी सिंबल माना जाता है, क्योंकि जब ये ट्रैक प्ले होता है तो वायलिन की धुन और खूबसूरत बोल आज भी उतने ही नए लगते हैं, है ना। तो चलिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में ये खूबसूरत ट्रैक एंजॉय करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
6: जय दोस्तों, अगेन ऋतिक रोशन जी। हाँ, लेकिन इस बार उनके साथ अमीषा पटेल की। इस डेब्यू फिल्म के सभी गाने ब्लॉकबस्टर थे, लेकिन इसके जो टाइटल ट्रैक की बात है वो कुछ और थी, क्योंकि ऋतिक के डांस स्टेप्स ने पूरे देश में एक अलग ही क्रेज पैदा कर दिया था। तो उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में आइए फिल्म कहो ना प्यार है के इस ट्रैक को नंबर वन पर इंजॉय करते हैं। और फिलहाल इस ट्रैक के साथ आज का टॉप 10 यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि कुछ देर में आपके लिए लेकर आने वाले एक खास कार्यक्रम रोंदेवू।

और आइए, वक्त हो गया है 5:31:22 और आप आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम रोंदेवू की तरफ, जिसमें आज आप सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कात्यायन से प्रवीण कुमार की बातचीत।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं पत्रकारिता की दुनिया, उसकी चुनौतियों और समाज में उसकी भूमिका के बारे में। हम रोज रेडियो, मोबाइल ऐप पर खबरें सुनते हैं, अखबार और न्यूज पोर्टल पर खबरें पढ़ते भी हैं, टीवी पर न्यूज भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी समाचारों को स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन खबर को आप तक पहुंचाने के लिए एक पत्रकार को किन हालातों से गुजरना पड़ता है, ग्राउंड जीरो का सच क्या है, खेल जगत की पत्रकारिता किस तरह से अलग होती है, पत्रकारिता में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इसी तरह के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एक बेहद ही खास मेहमान, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कात्यायन जी। स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद जी।
0: श्रोताओं, आपको बताते चले कि राजेंद्र जी करीब 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जी राजेंद्र जी, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता किस दुनिया में आना कैसे हुआ?
1: शुरुआत में हमको खेल से शौक था, तो उस समय पत्रकारिता उठ भी रही थी, तो मैंने खेल पत्रकारिता को चुना और उस समय मेरा राष्ट्रीय सहारा अखबार भी खुल रहा था
0: जी,
1: तो उसी से शुरुआत कर दी और बस वहीं से पत्रकारिता मेरी शुरू हो गई। और खेल पत्रकारिता में मैं ऐसे समय में प्रवेश किया जिस समय खेल पत्रकारिता कायदे से कहें तो उठ रही थी
0: जी।
1: उससे पहले खेल पत्रकारिता थी तो, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी हमारे समय में पैदा हुई। और हमारे अखबार का इसमें बहुत योगदान रहा, खास करके हमारा पहला अखबार हिंदी का था जिसने पूरे पेज पर खेल का कवरेज दिया और उसके लिए रिपोर्टर्स की टीम लगाई। अन्यथा अन्य अखबारों में पत्रकारिता जो हो रही थी उस समय हिंदी में खास करके, वो एक आध पत्रकार के हिस्से में थी, लेकिन राष्ट्रीय सहारा ने इस फार्मूले को एकदम चेंज कर दिया। हाँ, अंग्रेजी के अखबारों में ऐसा ज़रूर था कि उसमें दो तीन पृष्ठ दिए जाते थे, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी की तो अपनी अहमियत थी, वो उस वर्ग को नहीं पढ़ा पा रहा था या समझा पा रहा था जो कि ग्राउंड जीरो पर था। जैसा कि हमारा पूरी पट्टी ही हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र होने के नाते हमारे यहाँ हिंदी के पाठकों को खेल पर रुचि पैदा हो रही थी। और आप समझ लीजिए 90 के दौर में ही खेलों का एक प्रकार से यहाँ पर जागरण जैसा हुआ, जो बढ़ते बढ़ते आज इसका व्यापक रूप देख रहे हैं। खास करके क्रिकेट को ले लें तो क्रिकेट की दुनिया ने तो एकदम से बदलाव ही कर दिया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी की पत्रकारिता 90 के दशक से ही पूरी तरह से शुरू हुई
0: जी। और इस तरह से आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया, लेकिन खेल पत्रकार कैसे बन गए?
1: मैंने बताया ना कि मुझे खेल से रुचि थी
0: जी,
1: और खेल पत्रकार तो खैर मैं एक्सीडेंटली

0: बन गया। इसकी एक दिलचस्प कहानी ये है, मैं पहले दिल्ली में पोस्टेड था। दिल्ली में मैं हस्तक्षेप डेस्क पे काम करता था, जो कि जनरल सब्जेक्ट्स पर काम करती थी, और उसका बहुत ज़बरदस्त अप्रोच था। उसके पाठक वर्ग का क्लास ही अलग था। मगर 96 में मैं ट्रांसफ़र होकर लखनऊ आया। लखनऊ में आया तो यहाँ पर अखबार हमारा खेल की पत्रकारिता में तो अपने एक पृष्ठ पर कायम था ही। इसके अलावा जब ये विशेष खेल के उत्सव होते थे, जैसे ओलंपिक हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, एशियन गेम्स हुए, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए, क्रिकेट के इवेंट बड़े टूर्नामेंट्स हुए, तो उसमें दो दो तीन तीन पेज तक हमारे यहाँ बनने लगते थे। और सामग्री इतनी ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए आदमियों की आवश्यकता होती थी। उसी समय यहाँ कुछ अखबार और खुल गए हिंदी के, तो उन अखबारों के खुलने से हमारे यहाँ से कुछ लोग डाइवर्ट हो गए, एक्सपोर्ट हो गए, एक प्रकार से कहा जाए, वहाँ चले गए, तो हमारे यहाँ खाली हो गई फील्ड। तो हम जनरल डेस्क पे काम करते थे, तो हमसे वही जो खेल डेस्क पर एक लड़का काम करता था, संपादक जी से कहा कि सर ये खेल पर लिखते भी रहते हैं, इनकी रुचि भी है, इनको जानकारी भी है, इनको खेल डेस्क पे बुला लिया जाए। तो संपादक जी हमसे पूछे कि क्या तुम खेल डेस्क पे काम करोगे, तुमको खेल डेस्क पे कर देते हैं। पहले तो थोड़ा सा हिचका, लेकिन बाद में मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने हाँ कर दी। और उसी के बाद से मैं खेल डेस्क में ऐसा रम गया कि पूरी जिम्मेदारी ही खेल डेस्क की मेरे ऊपर आ गई।
1: जी, और इस तरह से आप एक खेल पत्रकार बन गए। और आज विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि इस दिन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है?
0: इस दिन की शुरुआत तो मानी जाती है 1994 से, जिसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने डिक्लेयर किया था विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में। और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो ये 2 जुलाई 1924 को ही पेरिस ओलंपिक में के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ की स्थापना हुई थी। जिस दिन उस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, उसी दिन को खेल पत्रकार दिवस मान करके 2 जुलाई 1994 को इन्होंने घोषित कर दिया। तब से ये ट्रेंड चल गया
1: जी,
0: खेल पत्रकार दिवस मनाने का।
1: तो इसका सर मनाने का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए मनाया जाता है?
0: मनाने का उद्देश्य कायदे से देखा जाए तो यही होता है कि खेल जैसे तमाम दिवस मनाए जाते हैं, उन दिवस पर कुछ खास प्रोग्राम होते हैं,
1: जी
0: लेकिन ये कि ये होता है कि इसी बहाने अन्य लोगों को भी ये जानकारी हो जाती है कि
1: जी
0: खेल पत्रकार दिवस भी कुछ होता है। तो किसी को ये बताया जाता है कि खेल पत्रकार दिवस है, इंटरेस्ट थोड़ा जगता है, जानकारी मिलती रहे।
1: यानी पिछले कई दशकों से यह सिलसिला जारी है। तो राजेंद्र जी, बाहर से देखने में लगता है कि खेल पत्रकार की लाइफ कितनी कूल होती होगी, जैसे कि मुफ्त में मैच देखने को मिलता होगा, खिलाड़ियों से मिलने का भी मौका मिलता है, जिससे लोग मिलने के लिए ललायित होते हैं। तो पर्दे के पीछे का सच क्या है?
0: देखिए, ये सारी बातें सही हैं, ग्लैमर तो है, आकर्षण भी है, लेकिन खिलाड़ियों से मिलना और लाइव मैच देखना ये दो अलग अनुभव हैं।
1: जी
0: उसके बाद का जो चुनौती होती है वो पत्रकार की असली चुनौती होती है, उसको कलमबद्ध करना, उसको अखबार में परोसना, उसको दुनिया के सामने लाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और ये तभी संभव है जब उस व्यक्ति ने स्पॉट पर बैठ करके चीज़ों को एनालाइज किया है, चीज़ों को सही से देखा है, तभी वो अपने पेशेगत काम को ईमानदारी से कर पाएगा। तो खेल पत्रकार के लिए ये खाली कह देना कि खिलाड़ियों से मिलने की तो बात जहाँ तक है, वहाँ तो शुरुआत से ही वो खिलाड़ियों से मिलता है, उन खिलाड़ियों से भी मिलता है जिन खिलाड़ियों को उसने ऊपर उठाया होता है।
1: जी
0: जो खिलाड़ी उसकी कलम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचते हैं, वो खिलाड़ी भी उसके सामने आते हैं और वो उसको नमस्कार करते हैं उस समय, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं योगदान है उसमें।
1: जी इसके जरिए कहीं ना कहीं खिलाड़ी आभार प्रकट करते हैं पत्रकारों के प्रति। तो क्या आपको कोई ऐसी अपनी खबर याद है जो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में एस्टेब्लिश किया, या आपकी किसी खबर की वजह से किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिला हो, आगे बढ़ने का मौका मिला हो?
0: ऐसे तमाम हैं खिलाड़ी जिनको हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने में काफ़ी मदद की। हॉकी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हो जाते हैं, तो उनके अंदर वो भावना नहीं आती है जो क्रिकेट में एक आईपीएल रणजी खेलने वाले खिलाड़ी के अंदर आ जाती है। तो हॉकी के खिलाड़ियों की पूरी टीम बना दी समझिए हम लोगों ने, लेकिन क्रिकेट में भी जैसे रैना थे, आरपी सिंह थे, ये सब स्पोर्ट्स कॉलेज की देन है लखनऊ के, इन लोगों को हम लोगों ने लोकल क्रिकेट में खेलते हुए देखा है, लोकल क्रिकेट में खेल करके ये ही आगे बढ़े। और ये लोग अपनी फोटो खुद हम

0: लाते थे, वो भी दिन है। अब हम लोग जैसे कभी रैना से यहाँ मुलाकात हुई तो
1: सुरेश
0: उसमें,
1: रैना,
0: हाँ सुरेश रैना से इकाना में ही, अब पीछे पीछे हुजूम चल रहा है उनके। अब वो आए हम ही लोगों से मिलने थे, लेकिन उनको देख करके इधर उधर दाएं बाएं सब तरफ से आदमी चले आ रहे हैं। इवन ये आपके जो स्टाफ लगा होता है वो भी चाहता है कि ये फोटो हमारी हो जाए इनके साथ। इस चक्कर में वो बेचारे दूर से ही नमस्कार करके चले जाते हैं। है, लेकिन हॉकी के साथ ऐसा नहीं, अन्य खेलों के साथ ऐसा नहीं है। उनके खिलाड़ी उसी तरह से मिलते हैं जिस तरह से पहले मिलते, और वो लोग तो बाकायदा पहचानते हैं, बाकायदा बातचीत करते हैं, और उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं रहती।
1: तो यह तो हो गई खेल की बात। पत्रकारिता के अलावा गाने में भी कोई रुचि है?
0: गाने तो सामान्य सी बात है, बगैर गाने के आजकल किसका जीवन चलता है।
1: जी, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह या अल्लाह।

0: श्रोताओं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कात्यायन जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों के बारे में बात कर रहे हैं। खेल सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि भावनाओं का समंदर भी कहा जाता है, उसे सही तरीके से पेश करना वाकई बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में खेल पत्रकारिता कितनी बदली है?
1: खेल पत्रकारिता बहुत बदल गई। खेल पत्रकारों के सामने वास्तव में बहुत बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। अब हम आपको एक तो इन्फॉर्मेशन का दौर इतना तेज है कि एक सूचना आप पढ़ भी नहीं पाते हैं कि दूसरी आ जाती है। इतनी ज़बरदस्त ओवरटेकिंग चल रही है, जैसे सड़क पर आप भीड़ देखते हैं, एक के पीछे एक गाड़ी निकलती सरासर चली जाती है, उसी तरह से सूचनाएँ भी आप पढ़ करके उसको अंदर तक ले भी नहीं जा पाते कि दूसरी सूचना आ जाती है। 90-90 मिनट के गेम चल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में, तो लोग 90 मिनट भी नहीं देखना चाहते, हाईलाइट देखना चाहते हैं। ऐसे दौर में आप सोचिए कि आप कोई चीज लिख करके पढ़ा रहे हैं किसी को, तो पढ़ाना तो एक बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: पढ़ाने के लिए तो आप पहले उसके सामने पहुंचिए। अखबार 50+ वाले ही अखबार के अभी जो रोज सुबह एक बार उनकी आदत बनी हुई है तो खोल करके देखते हैं, तो ऐसे में यह संकट बहुत तगड़ा गया है कि सूचनाओं को पढ़ाना, अखबार को पढ़ाना, आप अपने लिखे हुए चीज को किसी को पढ़ा पाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज की तारीख में।
0: तो संकट तो सर बड़ा है, लेकिन इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है पत्रकारों के द्वारा कि एक सटीक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए?
1: अब देखिए इसमें क्या है, अब हम लोग अखबार में लिखते हैं, फिर अखबार की कटिंग बनाते हैं उसकी, उस कटिंग को व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि इन्होंने लिखा है। ये एक तो ये माध्यम हुआ, तो इस पर भी अखबार टुकड़े टुकड़े में आता है, पूरा का पूरा अखबार नहीं आता। तो चुनौतियां तो इसी तरह की हैं, अब उनमें अपने को जो ढाल ले जाए।
0: इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा का क्या प्रभाव देखते हैं?
1: ये और काहिल बनाए दे रही पत्रकारों को, जो काम आप खुद से जा करके करते थे पहले, लेकिन जब आप जाते हैं, वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, तो अभ्यास करने से अच्छे अच्छे लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आप अभ्यास की आदत ही आपकी नहीं रहेगी, आप लिखने पढ़ने का काम ही नहीं करेंगे, तब तो आपके सामने संकट आ ही जाएगा। AI जिसे कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, जिसको नहीं आता वो भी उसमें डाला, खट खट खट खट खट सामने प्रकट हो गया और उसने उसी को उठा के छाप दिया, ये शॉर्टकट है।
0: कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर जाना होगा, तो और क्या कुछ खास करना होता है अगर खेल जगत की पत्रकारिता करनी हो तो?
1: अब जैसे टर्मिनोलॉजी खेल की बहुत जरूरी होती है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है, इसमें ड्रिबलिंग किसे कहते हैं, उसमें कैचिंग किसे कहते हैं, रन आउट कैसे होता है, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप गए वहाँ खाली मैच देख रहे हैं, आउट हो गया, आपने कहा अरे ये तो आउट हो गया, अब आप उसने कहा LBW हुआ, पकवादा हुआ, अब आप पकवादा सोच रहे हैं क्या है, ये कौन सी बाधा आ गई, तो ये सब जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, आपको समय समय पर पढ़ते रहना है।
0: तो पत्रकारिता की सर बात करें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी भाषा की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या कुछ खास करना चाहिए?
1: भाषा शैली तो बहुत जरूरी है, शब्दों का ही सारा खेल है, जिसके पास शब्द हैं वही अच्छा लिख सकता है, और जो अच्छा लिख सकता है उसी को लोग पढ़ सकते हैं। शैली अच्छी है, उत्तम क्वालिटी की है, तो आपको निश्चित रूप से लोग पढ़ेंगे।
0: तो क्या करना चाहिए कि भाषा बेहतर हो?
1: इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अच्छे अच्छे लेख देखने पड़ेंगे, आपको अच्छे लेखों की संगत करनी पड़ेगी, आपको लेखन में आप एक दो बार गलती करेंगे लेकिन तीसरी बार आपको ये खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा है। आप जब अच्छा लिख करके उसको पढ़ेंगे दो बार तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कमी रह गई कि नहीं रह गई। लेकिन आज संकट क्या है, आज आदमी खुद लिखता है खुद ही नहीं पढ़ता
0: जी।
1: जब खुद नहीं पढ़ेंगे आप तो आप उसकी कमजोरियों को कैसे पकड़ पाएंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा उसको एक दो बार, उसमें कोई त्रुटि है कोई कमी है उसको दूर करिए, उसके बाद उसको प्रेजेंट करिए। अच्छा लेखक देखिए यही है, ये जरूर है कि आप कम से कम बाईलाइन जो लें उसकी क्राफ्टिंग जरूर देख लें, उसको अच्छे से अच्छा तैयार कर लें, यही मैं कहूँगा, तभी आप

0: से पत्रकार कहे जाएंगे।
1: जी, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का एक और गाना सुनवाना चाहेंगे।
0: लता मंगेशकर का ले लीजिए, रंगीला फिल्म से।
1: जी, तो सुनते हैं राजेंद्र जी की पसंद का ये ट्रैक।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कात्यायन जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों की बात कर रहे हैं, तो खेल पत्रकारिता की तो बात हो ही रही है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फेक न्यूज़ का चलन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में निष्पक्षता बनाए रखना, ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखना पत्रकारों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है?
1: देखिए, अब फेक न्यूज़ कहाँ चलती हैं? फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर ही चलती हैं। अखबार आज भी एक प्रामाणिक दस्तावेज है। अखबार में जो छपेगा, मैं उन अखबारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी उद्देश्य से छापे जा रहे हैं, जो रेगुलर अखबार हैं, जो एस्टेब्लिश हैं, उन अखबारों में छपेगा वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसको आप फेक कहेंगे तो आपको चुनौती देनी पड़ेगी। वहाँ पर ये गुंजाइश ना के बराबर है। ये सोशल मीडिया पर ज़रूर फेक न्यूज़ चलते हैं, तो उनके आप देखिए तुरंत ही तमाम लोग उनको कंडेम करने लगते हैं, तमाम लोग उसको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, तमाम लोग बता देते हैं कि फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ का मतलब वही कि जैसे पानी का बुलबुला होता, उठा फूला खट से फूट गया, वही फेक न्यूज़ का है। फेक न्यूज़ को आप थोड़ी देर के लिए बस सनसनीखेज बनाएंगे
0: जी, यानी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आ रही खबरों को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है।
1: क्रॉस चेक तो स्वतः हो जा रही है। अब तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में चले जाइए उसके
0: जी,
1: वहाँ पर आपको 10 आदमी बता देंगे कि ये फर्जी न्यूज है, AI है, जनरेटेड कैसे है।
0: आपकी पत्रकारिता से कई लोगों को फायदा हुआ, कई सारे प्रतिभावान खिलाड़ी आगे आए, लेकिन इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
1: मेरे जीवन में मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे जो संतुष्टि मिलती है जब किसी को, जैसे नहीं एक वृक्ष लगाइए आप, पेड़, उसमें जब फल आते हैं तो उन फलों को खाने के लिए तमाम लोग, जीव जंतु सब उसमें, आदमी सब शामिल होते हैं। तो उस तरह से जब आप देखते हैं कि ये ऊपर नाम कर रहा है अपना, तो आपको आनंद मिलता है। कहीं ना कहीं से आपको ये लगता है कि देख, इस इमारत को बनाने में हमारा भी तनिक योगदान रहा है। तो वही जो संतुष्टि होती है वही हमको भी होती है, और किसी से क्या संतुष्टि होगी।
0: जी बिल्कुल, किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं योगदान होता है आप जैसे पत्रकारों का, जिससे आगे बढ़कर के हमारे नए नए खिलाड़ी उभर रहे हैं। तो राजेंद्र जी, चलते चलते उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ रुझान रखते हैं?
1: देखिए, जो रुझान रखते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो लोग आएँ, इस फील्ड में ज़रूर आएँ, और खेल है तो खेल से जुड़े पत्रकार भी होंगे, लेकिन उन लोगों को संयम से, धैर्य से, ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है ताकि खिलाड़ी का और खेल का भला हो।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और खेल पत्रकारिता के इन अनछुए पहलुओं को साझा करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप सुबह चाय की चुस्की के साथ खेल का पन्ना पढ़ें या TV रेडियो पर कमेंट्री सुने, तो उन पत्रकारों की मेहनत को भी याद कीजिएगा जो खेल को जीवंत हम तक पहुंचाते हैं, खेल के रोमांच, जज्बे और खिलाड़ी के पसीने की कहानी को शब्दों में पिरोकर हम तक पहुंचाने वाले सभी खेल पत्रकारों को विश्व खेल पत्रकार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और पत्रकार से, जानेंगे उनके अनुभव और विचार। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रोंदेवू, जिसमें आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कात्यायन से प्रवीण कुमार की बातचीत।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नवीन परिसर का लोकार्पण करेंगे। लगभग 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से

5.5 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित ये परिसर भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। श्री शर्मा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी ऊर्जा राज्यों में शामिल है और बिजली उत्पादन, आपूर्ति, वितरण सुधार तथा उपभोक्ता सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की पहले दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। आज दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा में कुल 19,94,661 पंजीकृत परीक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन एवं आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा सुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए कृत संकल्पित है। परीक्षा कल और 4 जुलाई को भी आयोजित होगी। श्री राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच के लिए सिलसिले में आज एसआईटी फिर अयोध्या पहुंची। जांच टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है और जांच आगे बढ़ने के साथ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज बांदा में सूखा, एल नीनो का प्रभाव और खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। मंडल के चारों जनपदों से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों से कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को लगाने की अपील की, साथ ही रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के बजाय प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है।

0: मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो, 8700142424।
1: ओ 8700142424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142424 पर।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

सो माय डियर लिसनर्स, अगेन अलका इज विद यू ऑन द 107 एफएम रेनबो पर. आप एंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवध आरजे अलका के साथ. करेंगे बहुत सारी शहर की अपडेट की बातें और शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन इस खूबसूरत गाने को पहले एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून्ड 107 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ.

वैसे अब जो वक्त है यानी कि जुलाई लग चुका है, आज 2 जुलाई हो गया है दोस्तों, और वतन वापसी हो चुकी है। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो छुट्टियों को एंजॉय करने घर से निकले थे वो अपने घर वापस आ चुके हैं, और वतन वापसी के बाद जो है रवानगी स्कूल की हो चुकी है। बहुत सारे लोग अभी भी रूटीन में नहीं आए हैं, लेकिन रूटीन में आना पड़ता है, धीरे धीरे वो जो है आप फॉलो करते हैं तो आप उस पर सेट हो जाते हैं, लेकिन वक्त तो लगता है। लंबे समय के बाद जब आप उस एक रूटीन को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वक्त लगता है। फिलहाल बात करेंगे घूमने फिरने की। मैंने शुरुआत इस बात की इसलिए से क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे जो इन जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, उनके लिए IRCTC जो है वो 7 दिनों का हवाई टूर पैकेज लेके आया है। आपको बता दें भाई कि IRCTC जो है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 6 रात 7 दिन का एक खुशबू गुजरात की के नाम से एक हवाई टूर पैकेज लेकर आया है। इसमें राजकोट, सोमनाथ, पोरबंदर, दीव और द्वारका के कुछ धार्मिक स्थलों पर आपको भ्रमण कराया जाएगा, और बुकिंग अगर आप करवाना चाहते हैं या फिर आप इससे ज्यादा कोई जानकारी चाहते हैं तो IRCTCtourism.com पर जाकर इसकी विस्तृत जानकारी आप इस वेबसाइट पर ले सकते हैं। फिलहाल अभी गानों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और अपडेट का भी। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: लखनऊ की।
1: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट। सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

और आइए अगली अपडेट की तरफ आपको ले चलते हैं। बता दें कि नगर निगम के द्वारा नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए 3 जुलाई को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जो भी शहरवासी हैं वो अपनी शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं और ये कैंप नगर निगम मुख्यालय लालबाग में लगेगा। तो अगर आपकी नगर निगम से संबंधित कोई भी इस तरह की समस्या है, नागरिकों की कोई भी समस्या है, लखनऊ वासियों की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप 3 जुलाई यानी कल के दिन आप ये जो कैंप लगेगा ये लालबाग मुख्यालय नगर निगम मुख्यालय लालबाग में लगेगा। वक्त होगा सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में। तो जो

प्रॉब्लम है, आप वहां जाकर इसका समाधान अधिकारियों के समक्ष पा सकते हैं। वक्त हो गया 6:20, 16 सेकंड, 100.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवध आरजे अलका के साथ।

6:26 और ये देखिए एक एक सेकेंड आगे बढ़ता जाता है और वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए अगली अपडेट आप सभी के साथ शेयर करते हैं। बता दें आपको ये जो जानकारी है वो हमारे सभी उन यात्रियों के लिए है जो कि रोडवेज बस में अक्सर सफर करते हैं या आए दिन उन्हें सफर करना पड़ता है या ये इनके डेली रूटीन का हिस्सा है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या कोई भी परेशानी होती है तो रोडवेज बस में सफर करने के दौरान जो भी यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या करने होने पर जो कंट्रोल रूम नंबर है उस पर आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी शिकायत बस नंबर और डिपो के साथ आप दर्ज करा सकते हैं। नंबर आपको बताते हैं 8726005808। जी हाँ, एक बार फिर से नोट कर ले 8726005808 8726005808। इस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई बार यात्रा के दौरान बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते कभी लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि हम इन समस्याओं का समाधान कर सकें, तो ये हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप इन्फॉर्म करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा।

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: बजकर 32 मिनट और 23 सेकंड 100.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवधार जेल का के साथ।

सो फ्रेंड्स, अगली जो अपडेट है वो आपको बता दें रिजल्ट से जुड़ी हुई है। सेवा चयन आयोग ने उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भर्ती के लिए 29 जून को जो लिखित परीक्षा की जो प्रोविजनल उत्तर कुंजी है उसको वेबसाइट पर जारी कर दिया। इसके अलावा बेशुजिक के पदों के चयन के लिए भी जो 29 जुलाई को लिखित परीक्षा हुई थी उसकी भी प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और जो 7 जुलाई तक अभी उपलब्ध रहेगी, यानी कि 7 जुलाई तक का वक्त है, आप इस उत्तर कुंजी को देख सकते हैं। लेखपाल भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी जो है वो भी जारी कर दी गई है। तो अगर आपने इन परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था तो इस उत्तर कुंजी को आप अभी 7 जुलाई तक का वक्त है, आप इसे देख सकते हैं।

सो फ्रेंड्स, दौर जुलाई का शुरू हो चुका है और बहुत से ऐसे लोग जो कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अभी भी लाइंस में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि काश उन्हें एक मौका और मिल जाए, उनके लिए है ये मौका। जी हाँ, नेशनल कॉलेज में स्नातक के लिए आवेदन जो है उसकी तिथि बढ़ा दी गई है। नेशनल पीजी कॉलेज में स्नातक में आवेदन करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर वो रह गए हैं या उनको लगता है कि उन्हें मौका और मिलना चाहिए था, तो अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है क्योंकि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी जो पत्र है उसके अकॉर्डिंग अब अभ्यर्थी 5 जुलाई तक ₹300 विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ ₹300 विलंब शुल्क देना होगा, लेट फी देनी होगी। आपको मौका दे दिया गया है 5 जुलाई तक का। और बीकॉम में की जो प्रवेश परीक्षा है वो 7 जुलाई को 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। और आवेदन जो है वो आप ₹300 विलंब के शुल्क के साथ आप 5 जुलाई तक कर सकते हैं। बीकॉम की प्रवेश परीक्षा, जी हाँ, बीकॉम में एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 7 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य 1.5 घंटे में होगा। वक्त अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट ट्रैक की तरफ आगे बढ़ा जाए, जिसे आप इंजॉय कर सकें। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सो फ्रेंड्स, वक्त हो गया 6:51 और 58 सेकेंड। तो चलिए आपको बताते हैं अगली अपडेट, जो कि है शिया पीजी कॉलेज में आवेदन से जुड़ी हुई। तो शिया पीजी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, और इसके तहत स्नातक और परास्नातक यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो पाठ्यक्रम है उनमें अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके आवेदन अब जारी है। अब कॉलेज के आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो भी डिसाइड कर दी गई है, निर्धारित कर दी गई, यानी कि 10 जुलाई इस तिथि को रखा गया है। और आपको बता दें कि अभ्यर्थी बिना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए 10 जुलाई तक आवेदन आप कर सकते हैं। पूरी होने के बाद ये जो प्रक्रिया है, इसके पूरी होने के बाद मेरिट जो सूची है वो जारी की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे। तो पहले तो आप आवेदन करें, अगर आप इच्छुक हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो पाठ्यक्रम है उनमें दाखिले के लिए, तो आपको 10 जुलाई तक का वक्त जो है वो इसमें दिया गया है ताकि आप इसमें फॉर्म भर सकें, और देन जो मेरिट सूची है वो जारी की जाएगी और उसके बाद ही आपको फीस जो है वो जमा करनी होगी।

सो फ्रेंड्स, इस ट्रैक के साथ आज के शामी आवत को फिलहाल वाइंड अप करने का टाइम हो गया है, बिकॉज 6:55 और 29 सेकंड हो चुके हैं और 100.7 FM रेनबो पर नेक्स्ट प्रोग्राम भी तो लेकर आना है. नेक्स्ट प्रोग्राम वो जिसका आप कर रहे हैं बहुत बेसब्री से इंतजार. आई नो आपने अपने फोन उठा लिए हैं डायल करने के लिए 2238-752 या 2238-745. सारे नंबर्स को डायल करके आप अपनी पसंद के खूबसूरत गानों को इंजॉय कर सकते हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम हेलो FM में. तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस ट्रैक को इंजॉय कीजिए और वापस आ रहे हैं आपके पास कुछ ही देर में लेकर आपका अपना हेलो FM.

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। वहीं एसआईटी की टीम भी जांच के लिए फिर पहुंच गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांव के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी

प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण में अमरोहा पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2026 में 5वीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। देवरिया स्कूल चलो अभियान के तहत प्रवेशोत्सव रैली एवं प्रभात फेरी नगर में निकाली गई। नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने स्वागत किया। नोएडा में यूपी रेरा की बैठक में 4 जिलों की 10 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में लगभग 1,278 करोड़ रुपए का निवेश होगा। लखनऊ के थाना विभूतिखंड क्षेत्र में चल रहे इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का आज पर्दाफाश करते हुए एक साथ 119 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सो माय डियर लिसनर्स, 7:04 हो चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर. आप इंजॉय करेंगे अब पूरा एक घंटा अपना प्रोग्राम हेलो FM, जिसमें आप डायल करेंगे 2238852 या 2238845 और सुनेंगे अपनी पसंद के खूबसूरत गानों को. तो जल्दी से डायल कीजिए नंबर और मिलाइए फोन, सुनिए अपनी पसंद के ट्रैक्स को.

0: 7:08 हो चुके हैं, पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलराहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर, भोजपुर, विकास खंड सड़वा चंदिकन, बाबा घुसनाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं मैडम।
0: बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस के साथ आपने अपना नाम अपना परिचय दिया। प्रभाकर जी बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में, कैसे हैं आप?
1: हाँ मैडम जी ठीक है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है आपका, हम बहुत दिन से फोन लगा रहे थे, बाबा घुसनाथ धाम का आशीर्वाद मिला कि आज फोन हमारा लग गया।
0: वेरी गुड, तो चलिए एक ना एक दिन देखे प्रयास करते हैं तो ईश्वर सुनता जरूर है हमारी एक ना एक दिन, है ना?
1: हाँ मैडम जी कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनते हैं और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने भी जाते हैं, बाबा घुसनाथ धाम।
0: जी जी जी,
1: तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा भगवान से फोन लग जाए।
0: भगवान ने सुन लिया आपकी, तो जल्दी से बता दीजिए क्या सुनना चाहेंगे आज।
1: मैडम जी फिल्म का नाम है अंदाज और गीत के बोल है आएगा मजा अब बरसात का, क्योंकि बरसात का समय आने वाला है।
0: हाँ लगभग आ ही गया है, तो बताइए किसको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: हाँ मैडम जी हम बड़े भैया मिंटू तिवारी को सुनवाना चाहते हैं, जो फतेहपुर में सुन रहे हैं, भरखना फतेहपुर में।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: और गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ के राजेंद्र कुमार हैं, और रामनगर भोजपुर के मुकेश सिंह हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं सबको मैं सुनवाना चाहते हैं।
0: ओके प्रभाकर जी, बहुत
1: हमारा फोन बहुत परिश्रम करने पे लगा मैडम जी, जल्दी लगता नहीं है फोन।
0: बहुत खुशी की बात है कि आपसे हमारी बात हो पाई और आपकी पसंद का गाना भी आज आप सुनेंगे और सभी को सुनवाएंगे।
1: हाँ मैडम सारे प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं आप लोग।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

0: और वक्त हो गया है अगले कॉलर से बात करने का, तो चलिए करते हैं उनसे बात। कौन है लाइन पर इस वक्त हमारे साथ? हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: ओके, मध्य प्रदेश से आप मोहम्मद हारून बोल रहे हैं। हारून जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका, कैसे हैं बताइए?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आपके मिजाज कैसे हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। तो बताइए, कैसी बारिश हो रही है MP में इस वक्त?
1: बस बारिश तो कुछ मत पूछो, अच्छी हो रही है, अच्छी
0: बहुत अच्छी,
1: कैसे
0: हाँ।
1: चल रही है आज तो?
0: ओके, तो बताइए। और तो
1: कम से कम 2 घंटे, कम से कम 3 घंटे बराबर बारिश हुई,
0: लगातार पानी बरस रहा है। ओके गुड
1: जी, लेकिन बारिश भी कम से कम 2-4 रोज से हो रही है, लेकिन आपके इधर लखनऊ में कैसी बारिश हो रही है?
0: लखनऊ में कुछ एरियाज में पानी गिर रहा है, बट जितनी अभी होनी चाहिए उतनी बारिश लखनऊ में नहीं हो पा रही है, और
1: जी,
0: काफी
1: जी।
0: अभी गर्मी है, गर्मी काफी हद तक है फिलहाल। उम्मीद है, इसी उम्मीद पे हम सब हैं कि बारिश बहुत जल्दी होगी, और मुझे लगता है कि एक बार जो ये सावन की झड़ी लगेगी तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। जो हाल
1: धीरे धीरे तो बारिश हो, सब जगह धीरे धीरे बारिश हो, पानी गिरेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखो, कहूँ कहूँ तो

0: तो बारिश कम से कम 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन रोज से पहले भी बारिश हो रही है, कम कम तो वो नहीं होगी, कम से कम 10-15 दिन की।
1: हाँ बिल्कुल। अरुण जी कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
0: उड़ान का सुनवा देना, वैसे ही बारिश का टाइम है, बादल गरजा बिजली चमकी होने लगी बरसात।
1: ओके, किसको सुनवाना चाहते हैं
0: जी? हैं भगवान सिंह परमार सिंह हैं, रोकेट वर्मा हैं,
1: ओके,
0: परस्तम कुमार हैं, आशुतोष तुरूप राके हैं, जो भागी जो जो लास्ट सुनना है प्रोग्राम के लिए सभी के लिए।
1: ओके, थैंक यू सो मच अरुण जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मानसून ने लोगों को भी

0: भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जीरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 151,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
4: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का कामयाब। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी रामजी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बने।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान, कृषि, विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
5: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोवर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
0: ये समाचार

0: आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गाँव के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: और आइए बढ़ चलते हैं फीफा अपडेट्स की तरफ।
5: Character his side showed.
6: This is not only empty words when we say that we are a family. And I think the team showed the qualities, the capacity to compete, to fight for each other. Yes, I think so proud.
5: The USA will face Belgium next after they scored a last-gasp penalty to beat Senegal 3-2 after extra time. Belgium trailed 2-0 until the 86th minute, but goals from Romelu Lukaku and Yuri Tielemans levelled things up in normal time before Tielemans scored again from the spot in the 125th minute. Here's Belgium goalkeeper Thibaut Courtois.

0: 7:32 और 34 सेकंड हो चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर। एक बार फिर से आप हैं अलका के साथ हेलो FM प्रोग्राम में, और हमारे साथ हमारी कॉलर हैं, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। नाम बताएं अपना।
1: मिंटू तिवारी, ग्राम बाकायदा जिला फातेपुर से बोल रहे हैं।
0: मिंटू जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आज बारिश भी हमारे इधर बढ़िया हो गई है।
0: फतेहपुर में भी खूब बारिश हो रही है।
1: जी जी,
0: बहुत बढ़िया। आज क्या सुनना चाहेंगे मिंटू जी?
1: आज हमको सुनाइए तहलका मूवी का मेरी सपनों के नीचे आ जा।
0: ओके, सारे लोग आज जो है, सारे हमारे कॉलर्स जो है वो बरसात के गाने सुन रहे हैं।
1: जी, ये गाना चाहते नाम ले लें?
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, नाम लीजिए।
1: हमारे बड़े भाई है प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, मुन्ना तिवारी और प्रभाकर तिवारी जी हो गए, प्रकाश पासवान जी हो गए, मुकेश कुमार हो गए सिद्धार्थपुर से, राजेंद्र प्रसाद हो गए कुंडा प्रतापगढ़ से, और प्रेम कुमार सिसोदिया जी, भगवान सिंह परमार जी, राम बाबू शर्मा जी, और जितने लोग सुन रहे हैं FM रेनबो 100.7, उन सभी के लिए खासकर आपको, आपकी टीम को, प्रकाश पासवान जी सुन रहे हैं, उनके लिए भी गाने डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू सो मच मिटू जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: 7:18 हो चुके हैं दोस्तों, और क्यों में हमारे अगले कॉलर लग चुके हैं हमसे बात करने के लिए और अपनी पसंद अपनी फरमाइश के साथ हाजिर हैं। हेलो
1: हेलो मैम, को शिव का बहुत बहुत प्रणाम।
0: जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: जी मैं शिव इंद्रनगर लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैम
0: शिव वेलकम है आपका प्रोग्राम में, कैसे हैं शिव
1: जी? अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं और आकाशवाणी पूरी टीम कैसी है?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं आप शिव
1: जी? मैं नई तृहीन हो गया मैम, घर ही पर रहता हूँ, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और भगवान की कृपा से जो हो सकता है घर पे ही काम करता हूँ।
0: गुड, वेरी गुड। तो शिव बताएं क्या आप सुनना चाहेंगे आज?
1: मैम हिमेश रेशमिया जी की आवाज में सॉन्ग है तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। मैम कुछ लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल
1: मैम, सबसे पहले प्यारी मैम आपको और आकाशवाणी पूरी टीम को
0: थैंक यू,
1: और मैम हमारी ज्योति और प्रेमका जो है हमारी मैम वर्ष, और सुरवीर सिंह जी हैं सीतापुर से, सीमा रावत जी राम से, भैया दीपक जी और शिखा जी, और मैम संतोष मौर्या जी हैं, सुषमा यादव जी हैं, और मैम महेंद्र जी हैं, और सभी दोस्तों को सुनने वाले हरिओम जी को भी।
0: ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई शिव कॉल करने के लिए, और खूबसूरत सा गाना जिन जिन को आपने डेडिकेट किया है उन सभी के लिए और खासतौर पर आपके लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू।

0: सो माय डियर लिसनर्स, लेते हैं अगले कॉलर को लाइन पर और करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। और बताइए मैम कैसी हैं?
0: शमा परवीन, आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे। और आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए मैम।
0: गुड, वेरी गुड। तो बताएं आज क्या सुनना चाहेंगी?
1: आज जो अभी सॉन्ग बताया था वही सुना दीजिए।
0: हाँ बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: जाएगी जा मेरी,
0: आशिकी में तेरी जाएगी जा मेरी।
1: हाँ हाँ,
0: आप शायद हिमेश रेशमिया वाले ट्रैक की बात कर रही हैं।
1: जी जी।
0: ओके ओके, किसको सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको
0: थैंक यू।
1: बाबू अंसारी भाई हैं, मोहम्मद सद्दाम भाई, मोहम्मद फैज भाई, अकबर अंसारी भाई, सिराजुद्दीन भाई, वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, सत्यम कुमार भाई, गुलाब साहब की, शायबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम।
0: Good.
1: और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को,
0: आपके सारे डेडिकेट किए हुए भाई बहन और सभी लोगों को एक प्यारा सा ट्रैक और आपको भी थैंक यू सो मच समा कॉल करने के लिए।
1: बाय।

0: साथ में गैट्स एफएम रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का हेलो एफएम अलका के साथ, और इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स लगातार जुड़े हुए हैं और अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे करते हैं बात, कौन है इस वक्त हमारे साथ लाइन पर। हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से।
0: विनीत सीतापुर से बोल रहे हैं। ओके, बहुत बहुत वेलकम है विनीत जी आपका प्रोग्राम में। बताएं कैसे हैं आप?
1: हमका लगता है हमारा पहली बार फोन लग रहा है।
0: मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मेरी तो फिलहाल पहली बार आपसे बात हो रही है, और कॉल आपका पहली बार लगा है या नहीं ये मुझे नहीं पता।
1: नहीं, लग तो बहुत बार चुका लेकिन काफी दिन बाद लगा, तो लगता
0: अच्छा
1: पहली बार लग।
0: अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा समय हो गया इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहली बार कॉल लग रही है। विनीत जी बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सनम फिल्म का है, हम जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा।
0: गुड, काफी देर के बाद एक सैड सॉन्ग सुनने की फरमाइश आई है, और बताइए किसको सुनवाना चाहते हैं गाना?
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: और हमारे सर जी हैं सर्वेश जायसवाल को डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल। और
1: ओमकार अतरौली सीतापुर से हैं, सुरभि सीतापुर से हैं, क्षमा परवीन अंसारी सीतापुर से हैं, और रिंकी पिंकी राय बरेली से हैं, और सीमा रावत हैं, राम सेवक हैं लखनऊ से।
0: ओके।
1: और नवनीत हरकेश लखनऊ से हैं, संतोष मौर्य हरदोई से हैं, ममता हरदोई से हैं, मोहिनी हरदोई से हैं, और वीरपाल अतरौली पट्टी से हैं।
0: ओके।
1: सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, बहुत बढ़िया। तो इन सभी लोगों के लिए आपने ये जो सॉन्ग चूज किया है इसे प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच विनीत जी कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी।

0: सो माय डियर लिसनर्स, 7:54 हो गए हैं 54 मिनट और 4 सेकेंड, और इस वक्त हमारे आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉलर लाइन पर है। चलिए उनसे करते हैं बात और जानते हैं उनकी पसंद है क्या आज। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: उमरी से।
0: नागेश जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
1: मैम, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से।
0: ओके, सीतापुर से बोल रहे हैं। कैसे हैं नागेश, बताएं।
1: मैम ठीक हैं।
0: गुड, तो बताएं आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: मैम आज गाना सुनेंगे बिजली चली जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है।
0: कोई बारिश के गाने सुन रहा है, कोई बिजली जाने के सुन रहा है, क्या बात है, सब इंटरकनेक्टेड है। बारिश होती तो बिजली चली ही जाती है ना। और बताइए किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: मैं डेडिकेट पहले मैं अपनी भाभी जी को, फिर बड़े भाई को,
0: ओके,
1: और उनकी दोनों सिस्टर को प्रिया और चांदनी, उनके छोटे भाई को राजा जी को।
0: ओके, तो चलिए इस ट्रैक को आपके साथ आज हम भी एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए और फिलहाल हेलो एफएम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वापस मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी से स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो। अलका को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, रात के 8 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसिक मंदित एवं निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए संचालित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए प्रति संवासी अनुदान राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आज दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान, कृषि, विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागबान एवं निर्यात

हिस्सा लेंगे। प्रदेश सरकार ने लगातार सातवें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश की करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र निर्धारण की ऑनलाइन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू की जाएगी। ये जानकारी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सभी चरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे करते हुए 18 सितंबर 2026 को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे पहले आज बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। सहमेजबान अमेरिका ने भी बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

अक्से खुशबू हूं बिखरने से न रोके कोई, अक्से खुशबू हूं बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो फिर मुझको न समेटे कोई। कोई आहट कोई आवाज कोई चाप नहीं, दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं, आए कोई। 8:04:40 इन सुनसान और वीरान राहों को आबाद करने की फिराक में एक बार फिर आ गए हैं हम आपके साथ, आपके पास। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर आबशार में मैं आपका हम सफर अनवारुल हसन, कबूल कीजिए हमारा आदाब।

और जब नजरें मिलाकर नजरें फेर लेते हो तो भी तो कहते हैं कि कयामत तक उस दिल की फिर हैरानी जाती नहीं है, और गजल तो तब भी हो जाती है। गजल तब भी हो जाती है जब तुम अजनबी की तरह मिलते हो मुझसे। अब के भी आकर वो कोई हादसा दे जाएगा, और उसके पास क्या है जो नया दे जाएगा। कत्ल करके खुद तो वो छुप जाएगा जाकर कहीं, और सारे बेगुनाहों का पता दे जाएगा। जिंदगी क्या जिंदगी के साए ना होंगे नसीब, ऐसी मंजिल का हमें वो रास्ता दे जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

सोचते भी रहते हैं करार पाने के लिए कि आखिर वो जो कोई और है वो है कौन, और अगर वो है तो सामने आता क्यों नहीं, और अगर वो है तो चला ही क्यों गया है बेकरार छोड़कर। 8:25 और 23 सेकंड हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं आबशार अनवारुल हसन के साथ। जवाब नहीं आया अभी तक, कौन है वो जो बेकरार करता है। जिंदगी में जब करार नहीं मिलता तो दिल की तड़प और ज्यादा तेज हो जाती है। तुम बिन करार नहीं मिलता तो एक गुजारिश भी है कि बस तुम्हारे करीब रहने का ये सिलसिला जारी रहे, इतनी तो इजाजत दे दो। कदम कदम पर तुम्हारी यादें सजी हैं, हर लफ्ज में तुम्हारा जिक्र छुपा है, लेकिन तुम बिन करार नहीं आता। बस एक इल्तिजा है कि कभी मुस्कुरा कर देख लो, इतने में ही मेरी दुनिया रोशन हो जाएगी। मैं हजार गुना गुजारिश करता हूं पर तुम्हारी एक

नजर से ज्यादा कोई इल्तिजा भी नहीं है, लेकिन पूरी नहीं होती इल्तिजा। बस तुम्हारा नाम लफ्जों में बंधा है और ये लफ्जों का सिलसिला तुमसे ही शुरू होता है और फिर अक्सर तुम पे ही खत्म हो जाता है। तुम बिन करार नहीं मिलता। अगर ये आवाज तुम तक पहुंच जाए तो बस एक ही गुजारिश है कि कभी कहीं तो हमारी भी आवाज सुनी जाए, कभी कहीं तो हमें भी मुड़कर देख लिया जाए।

मुझे पता है कि इस सवाल या बहुत सारे इन सवालों के जवाब अब भी नहीं दोगे तुम। दूर एक शहर में जब कोई भटकता बादल मेरी जलती हुई बस्ती की तरफ जाएगा, कितनी हसरत से उसे देखेंगी प्यासी आंखें और वो वक्त की मानिंद गुजर जाएगा। जाने की सोच में खो जाएगी दिल की दुनिया, जाने किस सोच में खो जाएगी दिल की दुनिया, जाने क्या क्या मुझे बीता हुआ याद आएगा और उस शहर का बेफैज भटकता बादल दर्द की आग को फैला के चला जाएगा।

और ये कहानी शुरू हुई है तो इतनी आसानी से इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी। जब रात के अंधेरे गहराएंगे, जब रात 10 बजे के आसपास हम रजनीगंधा लेकर आपके पास आएंगे तो इस कहानी को बार बार दोहराएंगे। आप चाहें तो बने रहिएगा हमारे साथ। 8:40 हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम जल्दी ही 9 फिर लौट आएंगे पॉप टाइम लेकर। फिलहाल आपशार से इजाजत दीजिए अनवारुल हसन को। बहुत जल्दी मुलाकात होती है, बस थोड़ी ही देर के बाद 9 हम फिर लौटेंगे। शब्बा खैर।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स

0: भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाई जी, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरल पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की

0: जानकारी के लिए प्रणाली अहम जगहों पर क्विक रिस्पांस टीमें बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी।

सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तनवी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी 9:40 भी हो चुके हैं, धीरे धीरे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वक्त पॉप टाइम का है। 100.7 FM रेनबो पर आते आते ही फिसलन हो गई, पानी भी नहीं बरसा और जबान फिसलना शुरू हो गई। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूं और पॉप टाइम सुनेंगे आप, और बहुत सारे आपके मेल भी जो हमको हासिल होंगे हम उन्हें भी पढ़ेंगे। और बता दें आपको कि मेल जो है आपके यहाँ तक पहुँचने शुरू भी हो चुके हैं, बहुत सारे मेल अभी तक हम तक जो है हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। fmakashwani@gmail.com हमारा मेल आईडी है, अगर आपने अभी तक कभी मेल नहीं किया है तो फिर आप अभी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत जगह पूछते भी हैं कि कैसे हम मेल कर सकते हैं, तो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि इतने मेल आते रहते हैं कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले ही मेल आ जाते हैं। फिर भी जो हमारे नए श्रोता हैं, अगर पहली बार हमें सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो को, तो हम आपको बता दें कि FM आकाशवाणी आप लिखेंगे FM AKASHVANI आकाशवाणी LUCKNOW लखनऊ @gmail.com हम तक पहुंच जाएगा मेल और हम ज़रूर शामिल करेंगे आपका मेल, बिल्कुल वैसे ही जैसे सबसे पहला मेल हमें रामराज जी आपका मिला है, तो हम आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमो, आपने लिखा है, वाह वाह क्या

बातें शुरुआत भी यहीं से होती है। टॉप टेन कार्यक्रम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु राम रामचरण प्रजापति पप्पू पासी मनीष धीरज मधु बजरंगी काका सबसे पहले हमारी तरफ से। भाई ये तो बिल्कुल सही बात, सबसे पहले ही आपका मेल है, आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे, आपका कार्यक्रम सुपरहिट है, धन्यवाद। वाह वाह, शुरू होने से पहले ही सुपरहिट हो गया, वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार जी। आपका भी मेल, अच्छा आपके, हाँ बड़ा लंबा सा मेल है, और ये मेल किसने लिखा है जी, हेलो डियर प्यारे प्यारे क्यूट अनवारलो सर जी को प्यार भरा नमस्कार। पिंकी रिंकी उनका मेल है, ये गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर राय बरेली से। वाह क्या बात है, अपने अपने शहर का, अपने अपने जहां भी आप रहते हैं क्या क्या आप उपमा देते हैं, अच्छा लगता है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी श्रोताओं को। सर जी कैसे हैं आप? हम लोग एकदम चकाचक हैं, आपने कहा तो हम बिल्कुल चकाचक हो गए। गज़ल वाला कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हमें, और कार्यक्रम की पहली गज़ल तो बहुत ही पसंद आई, दिल को छू गई, दिल खुश हो गया ये गज़ल सुनकर। भाई वाह, आप खुश रहें भाई, यही तो हम भी चाहते हैं। सर जी बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में आए और आपकी आवाज़ सुनाई दी। सुबह राखी मैम की आवाज़ सुनी तो हमें यकीन हो गया कि आज कार्यक्रम में आप ही आएंगे। तो हम भी अगर उनकी आवाज़ सुन लिया करेंगे तो फिर हम भी समझ लेंगे कि हमें ही आना है, ठीक दोस्तों के नाम शामिल कर लीजिएगा, कुछ नाम आपने लिखे हैं, पूनम दीदी कानपुर, अनु पांडे, गुंजन तिवारी, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, समा परवीन, सुरभि सिंह, ममता दीदी, मोहम्मद फैज़, वकील अहमद तिवारी, अंकल अमीन अंसारी, संजू भाई, विनीत भाई। अब ये लिस्ट कुछ और लंबी होती चली जा रही है, पहले वाले मेल में भी देखिए बड़ी लंबी लिस्ट थी, तो चलिए हमें शामिल कर लिया, मेल शामिल कर लीजिएगा, दिल से निवेदन करते हैं। अरे भाई आप हमें भेजेंगे अगर मेल तो हम ज़रूर शामिल करेंगे, और शुक्रिया कि आपने भेजा। अगला मेल पढ़ देते हैं, ये मेल हमें भेजा है सुधांशु जी ने, राधे राधे लिखते हैं, राधे राधे आपको भी, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, प्रोग्राम आबशार आपको बहुत अच्छा लगा और जितनी गज़लें बजाई गईं जो भी तो वो कह रहे हैं बहुत अच्छी लग गई, और आपने 8 बजे वाली जो न्यूज़ पढ़ी थी उसी, अच्छा कुछ पूछ रहे हैं आप, उसमें आपने पढ़ा था कि दिव्यांग पेंशन बढ़ा दी गई, तो बताइएगा प्लीज़ कि कितनी बढ़ाई गई, 1 महीने में कितनी मिलेगी, सर बताइएगा ज़रूर। देखिए न्यूज़ तो मेरे सामने रखी है, वो बुलेटिन जो मैंने 8 बजे पढ़ा था, और दिव्यांग पेंशन की बात तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि न्यूज़ में सारी खबरें नहीं होती हैं, तो आपको कल के जो समाचार पत्र हैं उनमें ज़्यादा डिटेल से ये जानकारी मिल जाएगी। फिर भी जो हमने बताया था, जो न्यूज़ में पढ़ा गया है, जो पैसे बढ़ाने वाली जो संवासिनी हैं, जो संवासी गृह बने हुए हैं वहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं जो रहते हैं उनके लिए ये एक खबर इसमें थी कि जो अनुदान राशि उन्हें दी जाती है तो प्रति संवासी अनुदान राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किए जाने का निर्णय लिया गया है, और ये मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, और पूरी खबर के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा तो डिटेल में आपको मिल जाएगी और इंटरनेट के माध्यम से ही मिलेगी, और कल आपको समाचार पत्रों से भी मिल जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास जितना समाचार अभी आया था वो हमने आपको बता दिया। प्रोग्राम पॉप टाइम भैया अनवारुल हसन जी के साथ विजयपाल यादव जी ने ये ललहुआ खीरी से हमें मेल किया है। आदरणीय भैया जी सादर नमस्कार, सादर सलाम, चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, आगे बढ़ना है तो हर हाल में चलना होगा, सफलता कभी किसी को विरासत में नहीं मिलती, उसे पाने के लिए खुद को बदलना होगा। आज 12 दिन के बाद आने के लिए भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद, यदि हो सके तो जल्दी जल्दी आया करिए। अब हम क्या कह सकते हैं, अच्छा लगा कि बस आपने ऐसे दिन गिने। आबशार की गज़लें बहुत ही बढ़िया लगी, आप पॉप टाइम सुन रहे हैं, प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, विजयपाल यादव जी, बबलू यादव, राजेश भाई, ग्राम बापो ललहुआ खीरे से, और पीछे पीछे अच्छा नहीं या लगा नहीं बजाएंगे, हमने एक बड़ा अच्छा सा लगा के रखा था आपको, ये बहुत छोटे थे ना हम तब, सबसे पसंद था, और तब भी हम जब पढ़ते थे ना तभी कभी कभी ये गाना बज जाता था तो चोरी से डांस भी कर लिया करते थे। आ गया।

हम तो बजाने लगे यहाँ बैठ के. बहुत सारी बातें याद आ गई इस गाने के साथ. बचपन में सुना था रूना लैला को, ये तो गाना बाद में उन्होंने फिर से गाया है, तो वो मुझे बहुत पसंद आता था. और अब पुरानी बातें याद आ गई, तो गाना जब 10 बजे रजनीकंधा में आएंगे ना, तो वो बचपन के दिन भुला ना देना, आज मिले कल रुला ना देना, वो वाला गाना भी बजाएंगे. चलिए फिलहाल तो आपकी हम मेल पर दिन 9:10 हो चुके हैं. आप पॉप टाइम सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल हसन के साथ, और सुल्तान रजा साहब आपका मेल इंतजार कर रहा है. हेलो मेरे प्यारे अनवारुल सर, अस्सलाम वालेकुम. कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, ज़ीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, आमिर खान, और आप कह रहे हैं कि कैसे हैं आप, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगता है. और लिखते हैं कि सुना है आपको चाय का चस्का बहुत है, तो बताओ इतनी चाय उतनी चाय. अच्छा कई कई कई फ़ोटो भेज रखी है, इतनी चाय उतनी चाय कितनी चाय. हाँ नहीं तो, यहाँ नहीं तो इसी में लिखा, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, है नहीं तो, हम भी कहते हैं वैसे हाँ नहीं तो. चलिए कोई बात नहीं, आपने फ़ोटो में चाय भेज दी है, शुक्रिया इसके लिए. मोहम्मद माज अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से लिख रहे हैं कि अनवारुल सर आप लाजवाब प्रोग्राम करते हैं, कितनी खुशी होती है सुन के हमको ये. चलिए शुक्रिया इसके लिए, आगे बढ़ते हैं. जावेद अख्तर साहब आपका मेल पढ़ देते हैं. गुड इवनिंग, कौन सा मेल पढ़ना है, इनका मेल की कुछ सेटिंग अलग तरीके की है. कई सारे मेल आपके 5 दिन पुराना भी दिख रहा है.

7 घंटे पुराना भी दिख रहा है, 12 घंटे पुराना भी दिख रहा है, और ये वाला है अपने हमारे लिखा जो 14 मिनट पहले आया है। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल हसन भाई, कार्यक्रम आबशार में आपका अंदाज़े बयां इतना हसीन था जिसे सुनकर तबीयत शाद हो गई और आपको अच्छा लगा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लिख रहे हैं कि पॉप टाइम, अच्छा पंकज उदास की खूबसूरत गज़ल थी, नहीं पंकज उदास जी की आज हमने कोई गज़ल नहीं बजाई, वो अशोक खोसला साहब की गाई हुई गज़ल थी, जो पहली गज़ल थी वो अशोक खोसला साहब की आवाज़ में थी। कौन सी गज़ल थी मैं फिर से चलिए क्लियर भी कर दूँ आपको, शायद इसी गज़ल की बात आप कर रहे होंगे, मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई, या अशोक खोसला साहब ने गाई है गज़ल ये। पॉप टाइम कार्यक्रम में आपका जलवा खूब चलता है, और इस गाने एक और गाने एक से एक बल्कि चुनकर लाते हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने ये मेल किया है, साथ में शमशुल कमर राही बेगम रुखसार शमा परवीन अंसारी, ये नाम आपने और लिखे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए और इस तारीफ़ के लिए भी। मोहम्मद आसिफ साहब आपका भी मेल आ गया है, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से प्रोग्राम सुन रहे हैं। अनवारुल हसन जी, आप शायर प्रोग्राम की एक गज़ल हमारे दिल को छू गई, हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर, हाँ हाँ ये तो हमको ही बहुत पसंद है, गुलाम अली साहब की गज़ल है और मुझे बहुत पसंद है, और कह रहे हैं कि आप थोड़ा और जल्दी आया करो। नहीं हम जल्दी आ गए थे, प्रोग्राम 8 बजे सा था, हम 7:15 भी यहाँ आ गए थे। हमारी शायर लिख रहे हैं कि हमारी शायरी सुनो सर जी, तन्हाइयों में अक्सर मुस्कुरा लेते हैं हम, तेरी यादों के सहारे ज़माने को भुला देते हैं हम, तू दूर है तो क्या हुआ, इस दिल की धड़कन में हर पल तेरी ही मौजूदगी का एहसास पा लेते हैं हम। आय हाय क्या बात है, हमने तो अपना दिल पकड़ लिया, दबा लें थोड़ा सा। अच्छा लिखा आपने, शुक्रिया। तालिब अंसारी साहब का मेल है, राजा कटरा बाराबंकी से आपने लिखा है और अर्ज़ किया है, मुलाहिजा फरमाइए अनवारुल सर जी, आपकी दिल की गहराई में डूबा था तभी याद आया कि मुझे तैरना नहीं आता। अरे दिल में पानी कम है, जगह ज़्यादा है हमारी, आप डूबेंगे नहीं, है ना, कई सारे लोग हैं अलग अलग कोनों में बैठे रहते हैं, आप कोई बैठा लेंगे रख लेंगे। आबशार प्रोग्राम आप बहुत अच्छा करते हैं, एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं हम लोग आबशार में। खैर सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, मौसम भी लाजवाब, प्रोग्राम लाजवाब, अनवारुल सर जी लाजवाब, सब ग्रीन ग्रीन यानी हरा भरा, चाय और दाल मोड़ भेजी इन्होंने हमको, कब बहुत अच्छा है, बल्कि कब क्या, इसी को प्याली कहते हैं, जो चाय की प्याली है सही मायने में यही है जो आपने मुझे भेजी है, वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और एक मेल और पढ़ लें जल्दी से, फिर हम जल्दी से एक गाना आप तक पहुंचा दें। यह आवाज़ कैसी हमें सुनाई पड़ रही है, इसमें तो नहीं थी। हाँ रेनबो कैफे पेश करने वालों को हमारा आदाब, करने वालों कहाँ हैं, वाले हैं यहाँ पे, केवल वाला है हमारा आदाब। आपका ही कार्यक्रम मैं रोज़ सुनता हूँ और गाने आपको अच्छे लगते हैं जी, और आप जब भी मेल लिखते हैं इतना ही लिखा रहता है। ग्राम वापोस हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरूर नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम और डीजी प्रधान जी, और आपका शुक्रिया आपने कहा, और हम अब पहुँचा दे रहे हैं एक गाना।

जी बचपन में जब हम पढ़ाई कर रहे थे बहुत छोटे थे और तो जो ट्रक होता ना ट्रक निकलते हैं और ऑटो वगैरह चलती हैं इनमें बहुत सारे शेर शायरी लिखी रहती, इससे पढ़ पढ़ के हम काफ़ी होशियार हो गए। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था एक बार कि इस गाने से मुझे याद आ गया कि पराई अमानत देख कर हैरान ना हो, खुदा तुमको भी देगा परेशान ना हो। तो बस किसको क्या दिया है उसको, उसने ऐसे कर्म किए होंगे तो उसको मिला होगा, हम भी अपने कर्म जरा से अच्छे रखें तो वो हमको भी जरूर देंगे, ये विश्वास भी बना के चलिए। बिल्कुल जितना पक्का यकीन होगा ना बस उतनी ही जल्दी मिल जाएगा वो सामान जो आप चाहते हैं। 9:19:35 हो चुके हैं, बहुत सारे मेल आपके हम तक पहुंच चुके हैं। जैसे भी अयोध्या प्रसाद जी ने हमें लालपुर सीतापुर से मेल करके बताया कि वो लगातार सुन रहे हैं और जैसा कि उनकी आदत है कि जब रास्ते में होते हैं तो हेलमेट के अंदर मोबाइल खोंस लेते हैं। और वो बता रहे हैं कि जैसे आपका ये जो गाना शुरू हुआ था ना मेरा बाबू वाला, तो बड़ा मज़ा आ गया। और इनके साथ जो इनके मित्र हैं राधे लाल जी, तो राधे लाल जी ने बहुत डांस किया है उसमें, भाई वाह क्या बात है। और हरिशंकर जी भी सुन रहे हैं लगातार और इनकी जो टीम है वो इनके आसपास सब बैठी आनंद ले रही है। जय ने मेल किया है हमें, जय राम जी ने, जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु और प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से सुनने के लिए। आपके अंदर बारिश अच्छी खासी हो गई सुना है और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि बारिश अच्छी खासी हो जाएगी। सुबह बहुत थोड़ा सा पानी बरसा था लेकिन उतना नहीं बरस पाया कि रजनीगंधा की शुरुआत बारिश के गानों से हो। गुड इवनिंग सर, जय जौहर, जय जौहर शायद आपने लिखा है। और अजय कुमार पाटिल जी ने ये मेल किया है हमें, अजय पाटिल, सुमन पाटिल, यामिनी पाटिल, मोनिका पाटिल, खिलेश्वर पाटिल, नेहुल पाटिल और ये हमें आपने नवाबगढ़ डिस्ट्रिक्ट बेमतारा छत्तीसगढ़ से ही किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, छत्तीसगढ़ में भी हमारे श्रोता धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये एक मेल हमारे पास आ गया, अस्सलाम वालेकुम हसमुख अनवारुल भाई, भाई वाह एक नया नाम रख दिया इन्होंने, गुलफिशा सिद्दीकी ने संडीला से मेल किया है। आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है और अच्छी है आपने कह दिया है, सर्टिफिकेट भी मिल गया देखिए हमको, शुक्रिया। आपका ईमेल पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, भाई वाह क्या बात है, इसका मतलब हम काफ़ी अच्छा काम करने लगे। पूरे घंटे हम सब हंसते हैं आपको सुनकर। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रोशनी रावत, बबीता राव, निशा अंसारी, ममता गौतम, हम सब मिलकर सुन रहे हैं आपको और बहुत मजा आ रहा है। ये मजा ही लिखा आपने इसलिए हमने मजा ही पढ़ा है, क्योंकि तो मजे का अपना अलग ही मजा है। सुल्तान रजा साहब, आपको तो मेल मैंने पढ़ दिया अभी सर, हमरा मेल अरे मेल शामिल कर लिया आपका हमने, आपने तभी मेल किया होगा, तब तक नहीं शामिल हुआ था शायद, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका मेल हमको मिला है तो नाम तो आपका

उड़ जाएगा, इतना तो यकीन रखिए। रणधीर गुप्ता जी का मेल है हमारे पास, कहाँ से आया है, ओखला संगम विहार दिल्ली से आपने मेल किया है। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, शुभ संध्या अनवारुल जी, आदाब नमस्कार, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं। भाई वाह, सावित्री देवी आपका भी मेल हम तक आया। गुड इवनिंग डियर सर जी, कैसे हैं आप, काफ़ी दिनों बाद आज FM के साथ जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत झकास प्रोग्राम चल रहा है। हम विलेज भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मुझे मालूम है, मतलब याद आ गया आपका मेल देख के कि आप लखनऊ से ही सुनती हैं हमें। स्मिता जी ने भी मेल किया, स्मिता सिंह पहली बार मेल सेंड कर रहे हैं, पता नहीं जगह पाएगा कि नहीं। भाई क्यों नहीं पाएगा, देखिए हमने अभी आपको मेल आईडी बताई थी, चलिए हमारी भी लाज रख ली आपने यानी आपने उसका इस्तेमाल किया, अच्छी बात है। अयोध्या से ये मेल हमारे पास आया है, लिखते हैं थैंक यू अनवारू सर जी और होस्टिंग स्टाइल स्टर्निंग इन प्रोग्राम ऑल्सो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, और आपने मेल किया है, थोड़ी सी मेहनत कर दी है आपने हमारे लिए, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। मोहम्मद साबिर अंसारी साहब का भी मेल आ चुका है कानपुर से। लिखते हैं कि मेरे दोनों भाइयों के नाम जरूर ले लीजिएगा, आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, और लिखते हैं कि प्रोग्राम मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अब ऐसे लल्लन टॉप गाने बजेंगे तो पैर थिरकेंगे ही और लोग डांस भी करेंगे कानपुर से लाइव। भाई वाह क्या बात है, चलिए शुक्रिया। मुझे लगता है मुझे गाना बजा देना चाहिए, क्योंकि गाने कभी कभी कम हो जाते हैं। इसे एक गाना वाला बढ़िया सा निकाला था, कहाँ चला गया ये।

0: You are listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.
1: जी और टाइम हो चुका है 9:28 और 40 सेकंड पॉप टाइम. आप सुन रहे हैं अनवारुल हसन के साथ और आपके बहुत सारे मेल हैं हमारे पास. अशोक कुमार जी का ये मेल है, गुड इवनिंग सर कैसे हैं. और आपने अपना पता लिखा है रायपुर उदारा बितौली लखीमपुर खीरी से प्रोग्राम झक्कास चल रहा है, ये आपने हमें जानकारी दी है. राजकुमार जी का मेल है राजकमल यादव बैरिया. और राजकमल यादव जी ने ग्राम बैरिया से हमें पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से लिखा है कि नमस्ते कैसे हैं सर जी, आज आपका स्वागत मौसम ने भी किया है. आपके आने से कुछ तब्दीली आई है. अच्छा, हमें लग रहा था कि मौसम में तब्दीली आई है तब हम आए हैं, लेकिन आपने बताया कि हमारे आने के बाद तब्दीली आ गई. आप जिस दिन गर्मी होगी उस दिन ज़रूर आना. हमारे साथ हमारी वाइफ संगीता यादव, बेटा सावन कुमार, अंशिका, अर्चना, सुनीता भी सुन रहे हैं और आपको नमस्ते बोल रहे हैं. चलिए बहुत बहुत नमस्कार सभी को और आपके प्यारे से बेटे को मेरी तरफ से प्यार. और आगे मेल पढ़ते हैं. शुक्रिया. सुधांशु जी का भी मेल है. सुधांशु जी, हम आपका मेल तो पढ़ चुके थे और कोई बात नहीं, आपने कुछ व्यक्तिगत बात लिखी है, कोई बात नहीं. और हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे भी दी है, कल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. प्रवीण साहू जी का मेल है. सर जी, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ में रजनीगंधा बहुत अच्छा लगता है. आज आकाशवाणी रायबरेली पर आप प्रोग्राम सुन रहे थे तो आपको वो भी पसंद आए, आपने उसकी भी तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया. प्रवीण जी का ये मेल था. और उसके बाद कृष्णकांत जी का मेल. ये पीछे वाले चुप क्यों होगा? अरे बजाओ भाई इसको. हाँ बजाओ ऐसे, ये अच्छा लगता है, बजता रहता है तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता, डर नहीं लगता है. कृष्णकांत जी का मेल है. डियर आर जी अनवारुल सर जी, नमस्कार. पॉप टाइम प्रोग्राम में कुछ ऐसे गीत सुनने को मिल जाते हैं जिनको बहुत दिनों बाद सुनकर मन खुश हो जाता है. मिले जुले गीत इस प्रोग्राम में जब प्ले होते हैं तो थोड़ा थकान से भी रिलैक्स मिल जाता है. जब कोई अपना मनपसंद आर जी इस प्रोग्राम को होस्ट करता है तो क्या कहना. और आपकी अच्छी प्रस्तुति है अनवारुल जी, ये इन्होंने हमें बताया है. कृष्णकांत जी ने कैसरगंज बहराइच से मेल किया है और खूब अच्छे सारे इमोजी बना के भेजते हैं. ये संगीत के भी, ये हंसी मजाक वाले भी, चश्मा लगाए हुए एक वो कार्टून है, वो इमोजी जो होता है, और रेनबो भी है साथ में. ये चश्मे वाला तो हमें बहुत पसंद है, कभी कभी हमें लगता है कि हम ही हैं. रविकांत जायसवाल जी का मेल है, दिल्ली परिवहन निगम से. अच्छा, यानी वहीं कहीं रहते हैं, वहाँ पर सर्विस करते होंगे आप. DTC से प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं. नाराज़ हो के देख लिया मैंने, लोग छोड़ना पसंद करेंगे पर मनाना नहीं. अरे ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है भाई, मनाते भी हैं भाई, चुपचाप मनाते हैं. अगर शादीशुदा हैं तो वो बताएंगे नहीं आपको, मनाएंगी. लेकिन है ना सर, प्रोग्राम अजय सिंह जी का मेल है ये. और मेरे अजीज़ प्यारे अनवारुल हसन सर जी, ऑल इंडिया RJ में से एक अनवारो सर जी आप हैं. सर प्रोग्राम हमेशा की तरह ज़बरदस्त है सर, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है. आपका इंतज़ार है कल से, जब से. अच्छा अच्छा, आपको सोशल मीडिया से जानकारी मिल गई थी, हम चुपचाप डाल देते हैं वहाँ जानकारी ताकि आपको मिल जाए. सर बहुत अच्छा लगता है जब आप पोस्ट डाल देते हैं. और सर आप बहुत अच्छे हैं. आपसे अच्छे नहीं है देखिए हम, सच है.

कि आपने अपनी फ़ोटो नहीं लगाई है वहाँ, है ना। लेकिन फ़ोटो से ही आदमी अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आदमी कोई फ़ोटो में देखने बड़ा अच्छा लग रहा तो अच्छा ही हो गया, है ना। मन अच्छा होता है तो इंसान अच्छा हो जाता है। और रजनी गंधा स्पेशलिस्ट सर, 12 बजे तक साथ हूँ आपके, मैं अजय कुमार सिंह सीतापुर से, मेल शामिल करने के लिए धन्यवाद। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा साथ दे रहे हैं इसलिए। रोशनी रावत जी, अगला मेल रोशनी रावत जी का है। आय हाय, पहल पॉप टाइम लिख के जो पहला इन्होंने इमोजी बनाया है ना, उसके पूरे दांत निकले हैं, पूरे पूरे 32 क्या, हमें तो लगता 36 हैं इसके।

अगला मेल रोशनी रामत जी का है। आय हाय पहल पॉप टाइम लिख के जो पहला इन्होंने इमोजी बनाया है ना उसके पूरे दांत निकले हैं, पूरे पूरे 32 32 के, हमें तो लगता 36 हैं इसके। ये हंसता हुआ ऐसा बना रखा है, चलिए हमको भी देख के अच्छा लगा। और दूसरा वाला मुस्कुरा रहा है और आपने बुके भेज दिए हमें। नमस्ते रिस्पेक्टेड अनवारुल सर जी, आप कैसे हैं? आप शेयर प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। कल रात 12:03 पर पता चला था कि आप आएंगे आज, हम बहुत खुश हो गए थे। पॉप टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। और मेरा नाम रोशनी रावत है। अरे आपका मेल देख के ही हम जान गए थे, जो कलर आप यूज़ करती हैं ना इतने सारे, वो थोड़ा सा यूनिक ही है आपका स्टाइल। तो उम्मीदों के शहर उन्नाव से, गांव बहमना, तहसील सफीपुर, ज़िला उन्नाव से, पता बता दिया है इन्होंने। अब लड्डू खाने देखिए, हम आएंगे तो इस पते से के आसपास से ज़रूर गुजरेंगे। बहुत समय हो गया, एक बार जाना हुआ था हमारा, हम गए थे उधर। अच्छा आप तो नाव से, हम संदीला गए थे। अब देखिए हमारा दिमाग अब चलने लगा लगता है, अब हमें पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं हम गाना बजाते हैं, उसके बाद हम पानी वानी पी के आते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी टाइम बता देते हैं कि 9:38 हो चुके हैं और आप पॉप टाइम सुन रहे हैं इस वक्त 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल हसन के साथ। और आपके बहुत सारे मेल हैं हमारे पास। एम के राज जी आपका भी मेल हम तक पहुंचा है। मुनेश कुमार राज जी हैं गांव भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से। अनवारुल सर जी शुभ रतिया। भाई वाह क्या बात है, नया आपने एक वर्ड इजाद कर लिया। कार्यक्रम रेनबो पॉप टाइम दो लाइन घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। लिखते हैं कि हम अपने खेत के करीब रहते हैं तो यहाँ मेंढक और वन मुर्गा और अन्य जीव जंतु की आवाज़ की धुन पर रेनबो पॉप टाइम और अच्छा आपको सुनाई पड़ता है रेनबो पॉप टाइम वो कर कर कर जो बोलते रहते हैं ना, तो लिख रहे हैं कि वो भी रेनबो के साथ थिरक रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और एक फरमाइश आपने कर दी भाई, फरमाइशी वाला नहीं, और जो आपने लिखा है ना वो पॉप टाइम में नहीं बज सकता ना, वो पॉप नहीं है, तो इसलिए नहीं तो हम बिल्कुल बजा देते। हम तो शुरुआत ही उसी से करते हैं, धमकदार है ना, समझ गए आप। विनीत कुमार जी का मेल है ओमकार अतरौली सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, संजय अतरौली हरदोई से, वीरपाल पट्टी अतरौली से, रिंकी पिंकी रायबरेली से, मोहिनी हरदोई से, ममता गौतम हरदोई से। भाई वाह इतने लोगों के नाम इन्होंने पहले लिख दिए। फिर आप लिख रहे हैं कि विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सर जी को गुड इवनिंग, शुभरात्रि का सादर प्रणाम, शत शत नमस्कार। आपका हंसना सुपर हिट लगता है, आप हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम सुपर हिट कर रहे हैं। भाई वाह क्या बात है, एक फरमाइश कर दी है साथ में इतनी तारीफ के बाद, और इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं, क्षमा कीजिएगा मुझे। ठीक मोहम्मद अजान आपका मेल आया है। सलाम अलैकुम अनवारुल भाई जान, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। अच्छा आपने जो मेल किया है वो उस आईडी से किया है, और आपका प्रोग्राम में आना बहुत ही अच्छा लगता है, और आपको हम जो है आप चलिए आप विदेश में कहीं पर हैं वहाँ से आप सुन रहे हैं, और हम आपका हर प्रोग्राम सुनते हैं, और मेरे घर कुंडा प्रतापगढ़ में है, मैं पढ़ता है और मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। आप किसको करना चाहते हैं, देखिए वो आपने नीचे है नाम आपके और हमारे दोनों भी, हमें किया है और हमारे दोनों, अच्छा हमें लगा कि आपके और हमारे दोनों बेटों को, तो हमने कहा कि ये कब हो गया तो आपको और हमारे, अच्छा दोनों अपने दोनों बेटों को, मोहम्मद अजान और मोहम्मद अरहान को, और हमारी प्यारी बहनों को रिंकी और पिंकी को रायबरेली से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी दूर से मेल करने के लिए, आप खाड़ी देशों से में सुनते हैं हमको, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम लोगों की आवाज़ और हमारे देश की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है। ज़ीशान खान साहब का मेल है, सलामुअलैकुम अनवारुल भाई, आई एम ज़ीशान खान संडीला, लेकिन इस वक्त सऊदी में आप भी सुन रहे हैं। मुझे ये प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है कि मैं इस टाइम सुन पाता हूँ, और आपकी आवाज़ माशाल्लाह, चलिए आपने तारीफ़ कर दी है। मैं और मेरी वाइफ गुलफिशा सिद्दीकी, मेरी बेटी नूर अक्सा, मेरे बेटे हसन खान, ज़ियान खान, सब सुन रहे हैं। भाई वाह सारे लोग लगे हुए हैं इस वक्त सुनने में। तेज बहादुर यादव जी आपका भी मेल आ गया है। हम सब के प्यारे और दुलारे, भाई वाह अनवार लसन सर जी को मेरा प्रणाम। ये दुलारे में बड़ी हंसी आ गई मुझे। हमारे साथ जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, तो एक मेरे साथ ही मेरे एक मित्र पढ़ाते थे, उनका भी नाम था दुलारे, है ना, तो सब लोग दुलारे बोला करते थे उनको। अब बड़े हो गए होंगे पता नहीं, अब आजकल कहाँ हैं। आपकी एक हंसी के हम दीवाने हैं, हंसते हैं आप तो मुस्कान हमारे चेहरे पर भी आ जाती है सर जी। इस कार्यक्रम में वैसे तो मैं मेल बहुत ही कम कर पाता हूँ, क्योंकि इस समय मैं अपनी दुकान पर थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, पर आज आप आए हैं तो समय निकाल लिया थोड़ा सा मेल करने।

नहीं, थोड़ा सा नहीं, आपने पूरा पूरा मेल किया भाई, थोड़ा सा कहाँ मेल आया, पूरा मेल आया आपका नीचे तक यानी बेहद शुक्रिया धन्यवाद सब लिखा है इसमें। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव और बेबी वनिका, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से हम अभी गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं। चलिए आप सुन रहे हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है और हम शुक्रिया भी आपके अदा करते हैं इसके लिए कि आप हमें सुन रहे हैं, यानी रेनबो को सुन रहे हैं। भैया मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है। अच्छा, बड़ा लंबा मेल लिख दिया आज, क्या लिख दिया है। क्लास सेवेंथ में जब हम स्कूल जाते थे तो छोटा वाला मोबाइल किटकिट सुनने को ले जाते थे, चुपके से सुनते थे। एक दिन छोटा वाला रेडियो बिगड़ गया और उस दिन मैच भारत पाकिस्तान का था। फिर क्या, बड़ा वाला रेडियो उठाया, उसे अपने बस्ते में लिया, स्कूल गए, चुपके चुपके सुन रहे थे आनंद के साथ, मजे के साथ। किसी ने शिकायत कर दी मास्टर साहब से, वो अचानक क्लास में आ गए। मास्टर साहब, खड़े हो जाओ, इनको कहा होगा, तुम मार खानी पड़ी, मुर्गा बनना पड़ा। अच्छा, मुझे लगा कि मुर्गा ले गए थे खाने के लिए, लेकिन रेडियो ने मास्टर साहब को भी अपनी ओर खींच लिया क्योंकि कमेंट्री चलती रही और हम मुर्गा बने रहे। अच्छा, ले मास्टर साहब ने इन्हें मुर्गा बना दिया और खुद जो है इनके रेडियो से सुनते रहे और इन्हीं के ऊपर रख दिया होगा रेडियो मुर्गा बना के, तो टेबल बन गए होंगे ये। उस दिन कमेंट्री सभी मास्टर साहब ने सुनी और कमेंट्री का आनंद लिया और आज भी मुझे मास्टर साहब जी रेडियो मैन के नाम से पुकारते हैं। अब इतनी दीवानगी रेडियो के प्रति थी और है, तो इसको बनाए भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, है ना, कि आप हमसे जुड़े हैं। दिलीप राजमाही जी ने लिखा है कि सुनील सर जी कार्यक्रम में कब आएंगे, और सर जी भोजपुरी सॉन्ग बजा दिया करो कार्यक्रम में, अच्छा लगता है। अब हमने खुल के पढ़ ही दिया, एक दो लोगों ने और कहा कि ये पॉप टाइम इस प्रोग्राम का नाम है। हमने पिछले हफ्ते भी, यानी जब भी हम आए थे इससे पहले, तो मैंने बताया था कि मंगलवार और शनिवार दो दिन आप सुनते हैं जो प्रोग्राम रेनबो कैफ़े, तो रेनबो कैफ़े में तो अलग अलग जो हमारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उन सबको हम शामिल करते हैं, उनसे जुड़े हुए। ये फ़र्क बता रहा हूँ, अंतर बता रहा हूँ। गानों के बीच का भी अंतर होता है कि कब गाना कौन सा हम बजा पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ ही बजा देंगे, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, सब कुछ एक व्यवस्था के तहत चलता है। और इस प्रोग्राम में क्योंकि इसका नाम पॉप टाइम है, तो जो भी आप सुन रहे हैं वो पॉप है ना, तो भोजपुरी उसमें नहीं आता है, इसलिए भोजपुरी इसमें हम नहीं बजा सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्लियर भी कर दिया है आपको, और कब कौन आएगा ये तो भाई अचानक से आते हैं लोग, तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आता है, और हमें तो सचमुच नहीं पता कि वो कब आएंगे। वैसे हो सकता है ड्यूटी चार्ट हो गया है मेरे पास, उसमें नाम लिखा होगा उनका कि वो कब हैं। गुड इवनिंग अनवारू सर जी, गाँव वीर किठाई दरियाबाद, मोहब्बतों के शहर बाराबंकी से। श्यामू चौहान, राजकरण, हरिओम, सुनील, आकाश, संदीप और सभी दोस्त, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। हम तमिलनाडु से सुन रहे हैं। मित्र और शत्रु को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु कभी यकीन नहीं करेगा और मित्र कभी शक नहीं करेगा। आपने ऐसी बात लिख दी कि अब हम बिल्कुल शक नहीं करेंगे कि आप तमिलनाडु से सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम कोई आप पर शक करेंगे तो हम आपके शत्रु की श्रेणी में आ जाएंगे, इसलिए हम आपके मित्र हैं। आपने जो लिखा है, आपकी बातें, आपके विचार सराखों पर, चलिए शुक्रिया। आपने हमें मेल किया है वहाँ से भी, मजाक की बात अपनी अलग है, आपने मेल किया। जितेंद्र नामदेव जी का भी मेल आ गया है। बबलू नामदेव भी साथ में हैं, जू नामदेव, खनक नामदेव, आरुही नामदेव, सौम्या, ग्राम पोस्ट खनौधी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से। सर जी, इन्होंने हमको लिखा है, गाने दमदार बजाए जा रहे हैं जो दिमाग को एकदम फ्रेश कर दिया है, और हमारे यहाँ ज़ोरदार बारिश हो रही है और गानों के साथ और मज़ा आ गया। अरे वाह, क्या खबर दी आपने, हमारे यहाँ ही बारिश कभी भी हो सकती है। आसमान में बादल छा रहे हैं बार बार, उमस बहुत तेज़ हो रही है और बिल्कुल पूरा माहौल बना हुआ है, तो हो सकता है कि रात ही चालू हो जाए। ब्रिजेश सिंह दीपू टहुआ कैसरगंज बहराइच से, नमस्ते मेरे फेवरेट हंसमुख अनवारुल सर जी, जब आप कार्यक्रम होस्ट करते हैं सर डबल एनर्जी के साथ मज़ा मिलता है और यही एनर्जी 24 घंटों तक चलती है, सोते नहीं है क्या, एनर्जी बनी रहेगी तो सो ही ना पाएंगे, है ना, एनर्जी में थोड़ा सा सांस भी तेज चलने लगती है ऐसे, तो 24 घंटे तक चलती है। बीच बीच में जो हंसी वाली बात करते हैं, बाद में एक एक बात याद आती रहती है और चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, यही तो हम चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम सफल हैं, हम भी जाके सो जाते हैं थोड़ी देर में। रेडियो सेट पर सुन रहा हूँ सुबह के कार्यक्रम में, आप कब आ रहे हो सर, ये गुड न्यूज़ दे दीजिएगा, जैसे ही हमें मिलेगी हम आपको देंगे। और रेडियो सेट पर अगर आप सुन रहे हैं तो मैं एक जानकारी आपको दे दूँ कि 10:30 बजे के बाद से रेडियो सेट पर आप हमें नहीं सुन पाएंगे, यानी रेनबो को तो आप सुन पाएंगे, लेकिन जो भी आप प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उस 10:30 बजते ही

हम आपको कुछ खास सुनाने जा रहे हैं जो आईसीसी वुमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में। तो उसमें जो मैच खेला जा रहा है टी20 में, आज सेमीफाइनल में, दूसरा सेमीफाइनल है आज, और उसका आंखों देखा हाल आप 10:30 बजे से रेडियो सेट पर सुनेंगे। लेकिन अगर आप न्यूज़ ऑन एयर AIR जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से सुनते हैं तो फिर आपको, या DTH के माध्यम से, तो आपको हमारा प्रोग्राम यानी गाने जो हम बजाएंगे यहाँ से, जो बात करेंगे रजनीगंधा में, वो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन बाकी लोगों को प्रोग्राम नहीं मिल पाएगा रेडियो में, क्योंकि रेडियो पे ये सारी चीज़ें जाएंगी। हम अपना काम यथावत करते रहेंगे। तो क्योंकि आपने बताया कि आप कहाँ सुन रहे हैं, तो आपको मैंने एक जानकारी दे दी। एक बार हम फिर ये जानकारी आपको 10:30 बजे से पहले देंगे। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से। सर कैसे हैं आप? प्रोग्राम बहुत हनहनवा लग रहा है, जबरदस्त सुपर हिट। और वैसे आज हमारे यहाँ बारिश तो हुई है, मतलब थोड़ी सी बरसा है, आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। मौसम वहाँ का कहीं, वहाँ के कुछ और कुछ रेडियो दोस्तों के नाम ले लीजिएगा, कुछ ऐसा मिल गया कि मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आई, इसलिए मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, माफ़ कीजिएगा। कुलदीप गुप्ता जी का नाम इन्होंने लिखा है, महेंद्र दीपन जी का नाम लिखा है, फैज़ अंसारी जी का नाम और गौस मोहम्मद अंसारी का नाम। और साथ में इन्होंने एक जो फाइल जिफ वाली हमें भेजी है जिसमें एक डांस चल रहा है, और ये हमेशा ये डांस वाला भेज देते हैं ना, तो हमें अंदर भी जोश आ जाता है। तो पैर में मेरी लग गई चोट, हमारे डांस देख के हमने एकदम से पैर जो है फैला के ऐसे कर दिया। आई आवाज़ आपको? बबीता राव जी आपको भी जल्दी से पढ़ देते हैं, फिर हम जल्दी से गाना बजाते हैं। गुड इवनिंग माई डियर रिस्पेक्टेड अनवारू सर जी, एड्रेस बेली कला गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से। और सर जी, हमें आपका आबशार प्रोग्राम और पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये तो हम भी कहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपका प्रोग्राम सिस विनीता भाई, भाई रजनीश, रोशनी रावत जी, महेंद्र भाई, नीलू दी, गुलफिशा दी, साहिबा, साजिया, सब लोग सुन रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। सर जी, आपकी हंसी और मस्ती भरी बातें प्रोग्राम में चार चांद लगा देती हैं, कतई जहर, लाजवाब गजब प्रस्तुति। भाई वाह, जहर भी है। थैंक यू सो मच डियर सर जी फॉर इंक्लूडिंग माई ईमेल। चलिए, आपने लिखा है, इसके लिए हम शुक्रिया कहते हैं आपको। और एक गाना बजा देते हैं जल्दी से, कौन सा निकाल के रखा था हमने, हाँ ये

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। वाराणसी में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की तरफ से कार्यालय परिसर चौका घाट में एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में लगभग 10 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने रोजगार मेला में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि 4 जुलाई को प्रातः 11:30 बजे अपना बायोडाटा लेकर कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। मॉनसून को लेकर संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज बाराबंकी में रामनगर तहसील अंतर्गत सूरतगंज विकास खंड के तेवराई पुरवा गांव पहुंचकर बाढ़ संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील प्रशासन, सिंचाई विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए प्रदेश व्यापी विशेष अभियान मिशन सेफ फ्यूचर के तहत जनपद चंदौली में अवैध, बिना फिटनेस और बिना परमिट संचालित होने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ सीधी कार्रवाई शुरू की गई। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता तक रद्द करने की चेतावनी भी दी गई। निरीक्षण के दौरान वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों जैसे अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, GPS, CCTV कैमरा और इमरजेंसी विंडो की जांच की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

आपको हमसे मोहब्बत है तो हम मानते हैं, आपको हमसे मोहब्बत है तो हम मानते हैं, हमको इस शहर में कुछ लोग अभी जानते हैं। जहन में उगे हुए हैं बहुत से ख्याल, आंखों में टिमटिमाते हुए जुगनुओं की तरह जगमगाहट बिखेर भी रहे हैं और इसी से रोशन हो जाती है रात, गायब हो जाते हैं अंधेरे। आप सबका इस्तकबाल, स्वागत करते हैं हम रजनीगंधा की इस खूबसूरत महफिल में। बहुत सारे ख्वाब संजोएंगे मिलकर, कुछ गमों का दौर भी होगा और साथ रहेंगे तो सजेंगे मोहब्बत के बहुत सारे अफसाने भी। 10:05 हो चुके हैं, रजनीगंधा में आज आपके साथ आपका दोस्त अनवारुल हसन। स्वागत है सफर में, नमस्कार।

खुशबू की तरह चीज़ें बिखर जाती हैं, पहुंच जाती हैं वहां तक भी जहां आप चाहते हैं कि शायद चीज़ें ना पहुंचे। क्योंकि मैं दरिया हूं, मुझे मंजिल पता है, समंदर में उतर जाना है मुझको, अब इतना काम कर जाना है मुझको, मैं खुशबू हूं, बिखर जाना है मुझको। और वो खूबसूरत चीजें जो बहुत छुपाकर, सजाकर, सवार कर रखते हैं हम, उनका एक अलग मुकाम होता है। क्योंकि जज्बात का इजहार करने में जब अल्फाज कम पड़ते हैं तो आप उन तस्वीरों को निहारते हैं, और उसी में कुछ एक जो गाना मैं आगे आप तक पहुंचाने जा रहा हूं वो अपनी बात खुद भी कह देगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि हजार पर्दे में छुप छुप के बैठने वाले, हजार पर्दे में छुप छुप के बैठने वाले, तुझे ख्याल के पर्दे में ला के देख लिया।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तानें। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

पुकार तो तुम्हारी ही है, या तो खुद चले आओ या हमें बुला लो। खुद चले आओ या बुला भेजो, रात अकेले बसर नहीं होती। हम खुदाई में हो गए रुस्वा, मगर उनको खबर नहीं होती। जब से अश्को निराज खोल दिया, चार अपनी नजर नहीं होती। लेकिन इश्क तो बस तुम ही से है, तुम्हारी हर नजर में मेरी दास्तान बसी हुई है, समाई हुई है। तुम्हारी हर मुस्कान पर मेरा पूरा जहान फिदा है। जब तुम खामोश रहती हो, मेरा दिल तन्हा सा गुनगुनाता है, और जब तुम बोलती हो तो हर लफ्ज में एक गर्माहट सी महसूस होती है। मेरे ख्वाबों की तकदीर में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, पूरी किताब है, हर सफे में, हर पेज में तुम्हारी यादें हैं, महक है। मैं मुसाफिर हूं तुम्हारी राहों का, और तुम मेरी मंजिल, तुम मेरा सफर। और इसीलिए कहता हूं कि इश्क तो बस तुम्ही से है, बेइंतहा, बेपरवाह और बेनजीर। 10:20 रजनी कंधा में मोहब्बत के उसी अफसाने को हवा दे रहा है आपका दोस्त अनवारुल हसन।

10:24 हो चुके हैं और आपको एक जानकारी एक सूचना आपको हम दे देते हैं. आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में जो खेला जा रहा है तो उसका सीधा प्रसारण हम अभी आपको सुनवाएंगे. दूसरे सेमीफाइनल का क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन पाएंगे. तो अगर आप रेडियो सेट पर हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको हम दिल्ली ले जाएंगे इस रैली के लिए, इस क्रिकेट के कमेंट्री के लिए. और अगर आप रजनीगंधा सुनते रहना चाहते हैं तो फिर आपको न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमें सुन पाएंगे. मैच की समाप्ति तक आप इसे सुन सकते हैं. 10:25 फिलहाल हो चुके हैं और रजनीगंधा आप सुन रहे हैं अनवारुल हसन के साथ. कभी कभी कोई ख्वाहिश गुमसुम सी झिलमिलाती है, कभी कभी धीरे से कोई सरगम अपनी शुरुआत करती है, अपने दिल की दास्तान सुनाती है बिना शोर किए, चुपचाप खामोशी के साथ जिंदगी के रंग बयान हो जाते हैं. कभी कोई याद दिल के आंगन में महक बिखेर देती है तो उन एहसासों को दबाइए नहीं, उनको नाम दीजिए, उन्हें आवाज दीजिए, उन्हें पुकारिए धीरे से. क्योंकि अगर कुछ अनकह रह जाता है तो वो दिल की दीवारों पर तन्हा रह जाता है. सुर में सुर मिलाइए जैसे चांदनी रात में कोई दुआ करता है. हर अल्फाज हर लफ्ज एक तस्वीर बन जाए और मोहब्बत की एक खूबसूरत सी तस्वीर बयां हो जाए. तो बात कीजिए कभी कभी बहुत धीरे धीरे, इतनी धीरे कि कोई सुन ना पाए.

10:34 रात की एक खूबसूरती यह भी होती है कि बहुत सारी आपको वो बातें भी याद आती हैं जो कभी कभी तकलीफ भी पहुंचाती हैं और वो भी जिन्हें याद करके धीरे से मुस्कुरा देते हैं आप, तो उन बातों को भी याद कीजिए जो मुस्कान फैलाती है, मोहब्बत फैलाती है और मन के बोझ को कम कर देती है, जरूरतों को हल्का कर देती है, सच्चाइयों को अपनाते हैं और छलक जाते हैं वो पैमाने भी जो प्यार से मोहब्बत से लबरेज होते हैं। रूह को सुकून मिलती है क्योंकि दिल की इब्तिदा में ही सच्चा सुकून है। तो इन खूबसूरत पलों को, इन नर्म रोशनियों को महसूस कीजिए और महसूस कीजिए उन पलों को भी जब इतना हल्कापन महसूस करते हैं कि उड़ने को मन करता है।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

झूठ बोलोगी तो मेरा ही सहारा लेकर, जब भी खाओगी मेरे सर की कसम खाओगी, तुम मेरी बात का बस यूं ही बुरा मान गई। अच्छा बतलाओ कि अब कौन से दिन आओगी।

0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांव के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागबान और निर्यातक हिस्सा लेंगे। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

11:06:30 हवाएं खुश्क हो गई हैं, धरती के सीने में पैबस्त है न जाने कौन सा दर्द, जिसकी तपन उमस की तरह फैलकर सारे जहान को झुलसाए देती है। ठंडी हवाएं भी न जाने कहां गुम हो गई हैं। कभी कभी तो दरख्तों के पत्ते भी नहीं हिलते, मगर न जाने कौन सी मजबूरी है और शायद किसी से मिलना जरूरी है, और इसीलिए रजनीगंधा के आंगन में उतर आती है मोहब्बत की मारी हुई एक रात। आज भी ऐसी ही एक रात रजनीगंधा और आपके दर्दमंद दोस्त अनवारुल हसन का साथ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

गुनगुनाए गा जब कोई मेरी गजल, तुमको बेसाख्ता मेरी याद आएगी। जहन माजी के गुंबद में खो जाएगा, मेरी आवाज कानों से टकराएगी। हूक उठेगी दिल में, तड़प जाओगी और फिर तुम अकेले में पछताओगी।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: कहां जा रहे
1: जी जाएंगे तो हम, लेकिन आज कुछ खास होने वाला है और इसलिए जमशेद को छोड़ जाएंगे। वो आपके साथ रहेंगे समाचारों के बाद भी, क्योंकि जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप है उसके माध्यम से आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, और इसलिए अनवारुल हसन को रजनीकंधा से इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 12 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन सेवा आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। चित्रकूट में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बाल विकास परियोजना करवी में 196 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को निशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए गए। बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं का पंजीकरण, टीकाकरण, गृह भ्रमण तथा अन्य विभागीय कार्य अब ऑनलाइन किए जाएंगे। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था और यह सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:17 पर और सूर्यास्त 7:04 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर।
1: धड़कन लखनऊ की।

0: और ऐसा ही नहीं होता,
1: क्योंकि हर शख्स को कहीं ना कहीं अपने महबूब का इंतजार होता है, और वो इंतजार कितना खुशियों भरा होता है, कितना खुशगवार होता है, ये तो बस उसकी एक आमद पर पता चलता है। जैसे मेरी आमद हुई आपके साथ, क्योंकि मैं आज हूं आपके लिए 100.7 FM रेनबो पर। और ये जो रात का समय है, इसको और खूबसूरत कैसे बनाया जाए, उसके लिए तो आपको हमारे साथ रहना है, क्योंकि अगर अकेले मैं रात में जाऊंगा तो कैसा लगेगा, ये तो बड़ी बेईमानी वाली बात हो जाएगी। मुझे आपका साथ चाहिए, और अगर आप हमें साथ मिलाना चाहते हैं या साथ मिलाना चाहते हैं, न्यूज ऑन एयर ऐप पर हमें सुन सकते हैं। तो जल्दी से आइए ऐप पर और बताइए क्या है आज खास। कैसे बताएंगे, हमारे साथ सुनेंगे ना प्रोग्राम, ऐसा ही होता है। जमशेद हूं आपके साथ।

जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। और जब जलवा सामने आता है तो यकीन जानिए होश हवाश सब गुम हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में बस एक वही तो चेहरा था जिसे ख्वाबों ख्यालों में बिठाया हुआ था। उसके बिना तो जैसे कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगता था। बस वो ही तो है

0: कहाँ?
1: और अभी हम फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी बहुत देर रहना है आपके साथ, यानी रेडियो पर आप सुन रहे हैं कमेंट्री क्रिकेट की जो वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है, और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हम हैं आपके साथ, हम मैं जमशेद हूँ और आप हैं हमारे साथ.

0: वे साय तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: अपने विजय बाबू बहुत अच्छे शायर हैं, मैं इन्हीं के गाने तो गा रहा था। विजय बाबू क्या चीज लिख के दिए, अरे जब से गाने लगा वो अपना बिजनेस डबल हो गया है। हाँ जाना नहीं है, मैं सेठ को खलास करके अभी आया।
1: क्या कहा?
0: जमेरो जमेरो। विजय बाबू आज सत्तार भाई आपकी फेशियल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
2: नहीं भाई सत्तार, आजकल जमाने ने इतना मसल डाला हमें कि अब और किसी मालिश की जरूरत नहीं।
0: ले कमाल है बाबूजी, मसले जाने के बाद भी मुस्कुराहट चेहरे पर।

कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि।

सौ दशमलव सात मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसार सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 2:43 हो चुके हैं और हमारी आज की सभा समाप्त होती है। प्रातः 5:55 पर हम आपके स्वामी पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।